0: You're listening to Avineet.
1: हाँ, हम पर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूँ अभी आपके साथ में, और 6 तक आप सुनते रहेंगे क्योंकि ये है जस्ट चिल का कारवा। एक नज़र देख लेते हैं मौसम की ओर। जबकि 3 तारीख में है, ऐसे में मेट सर्विसेज ने फोरकास्ट किया है कि आज का जो दिन है ये मोस्टली क्लाउडी ही रहेगा, लेकिन शाम को शायद ज़्यादा फाइन स्पेल्स आपको मिले इधर उधर। और इसके साथ साथ में जो सनसेट है इज़ फोरकास्टेड एट 5:35 PM। साथ में जो ओवरनाइट मिनिमम टेम्परेचर्स एक बार फिर से सिंगल डिजिट 9 डिग्रीज, काफ़ी ठंड पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर जो नेशनली देखें तो टेम्परेचर और साथ में जो वेदर फोरकास्ट अराउंड द कंट्री किया गया है, ओकलैंड के लिए खासकर थोड़ा सा मिक्स रहेगा, जैसे कि हमने कहा है। हैमिल्टन के लिए सनी डे फोरकास्ट किया गया है, साथ में तोरांगा के लिए भी मिक्स्ड डे, जबकि धूप और छांव साथ में ही रहेगी। रोतोरुआ का भी इसी तरह से, साथ में नेपिया, मास्टर्टन, सभी यहाँ पर, सभी जगह पर इसी तरह से वेदर रहेगा। साउथ आइलैंड के लिए अगर जो देखी तो जगह जगह पर मुझे सनी ब्राइट डे नज़र आ रहे हैं। ये सभी कुछ वेदर पर आपके लिए पहुंचा रहे थे ताकि अभी से ही आप कुछ प्लान कर रहे थे तो इसमें आपको थोड़ी सी आसानी मिल सकती है।

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited-time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world-famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
6: Love that chicken from Popeyes.
7: Winter आ रहा है, so now is the time to get your home ready. घर को warm रखना हो, leaks fix करने हो, या छोटे बड़े काम निपटाने हो, indoor या outside, Mitre 10 Mega Westgate and Henderson has everything you need. Expert advice, great value, all in one visit. Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
8: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
9: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
10: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
9: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और ऐसे में आपको बता दे, शायद लोगों को आज सुबह सुबह पूरी रुआ में झटका लगा होगा जबकि यहां पर एक एर्थक्वेक महसूस किया गया अराउंड क्वार्टर पास थ्री दिस मॉर्निंग, जो कि 10 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ पूरी रुआ था एंड इट वाज रजिस्टर्ड एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर्स, और इसका जो एपिसेंटर था ये निया माना आइलैंड था, और ऐसा रिपोर्ट दिए जा रहे हैं कि कुछ 2000 लोगों को इस झटका का महसूस हुआ, और ये सब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की सेस्मोलॉजी वेबसाइट जियोनेट पर अवेलेबल है। इसके साथ में जो सेकंड झटका था ये करीब रिक्टर स्केल पर 5.2 के आसपास के था, और ये सुबह क्वार्टर पास 9 के करीब 25 किलोमीटर वेस्ट ऑफ थे अरारोवा ईस्ट केप के पास में एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 32 किलोमीटर्स महसूस किया गया है, जिसको लगभग 800 लोगों ने महसूस किया है अकॉर्डिंग टू द जियोनेट वेबसाइट। तो अगर जो आप भी पोरिरुआ में हैं और आपने इस झटके को महसूस किया तो हाँ, ये एर्थक्वेक का ही था अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर रवि का साथ है जबकि आज है 3 तारीख में ऐसे में आज आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारी ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे और इसके साथ में अगर जो आपकी शादी की सालगिरह है तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लेकिन 5599 इज़ द मैजिक नंबर जहां पर आप अपने अगर जो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन या फिर आपके फैमिली या किसी फ्रेंड का जन्मदिन है तो इसके बारे में आप हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं और यहां से आपके खुशियों में हम शरीक होते रहेंगे शामिल होते रहेंगे आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है कोई नंबर रोमांटिक नंबर आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं और रोवा का जो जादू है ना इसके बारे में आपको क्या बताएं क्योंकि हम यहां से प्रोग्राम कर रहे हैं ओकलैंड से और ब्रिस्बेन में ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में मुकेश अपनी बीवी वाइफ सुजन के साथ में बच्चा रायनल के साथ में प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं यूं ही घर बैठे बैठे और ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं तो आपका खास स्वागत करते हैं मुकेश सुजन और रायनल आपका वेलकम टू द शो ये रोवा का ही जादू है कि दूरियां रहती हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड ही रहते हैं तो रोवा पर एक और एक खास बात यह है कि चेडल जो एक गेम है यहाँ पर आपको $100 इनाम जीतने का मौका है और एक ऐसा गेम जिसके बारे में आपको बताते आ रहे हैं कि कोई एक कीवी वर्ड साथ में सेइंग या फ्रेजेस के बारे में आपको क्लूज दिए जाएंगे आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा क्रैक करना होगा उसे सॉल्व करना होगा और इतना ही करके आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे जहां पर ग्रैंड पूल ऑफ मनी $7,000 में से डेली $100 दिए जा रहे हैं तो अगर जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाइए रोवा पर चेडल जो गेम है इसे ज़रूर खेलिए और इन द मीन टाइम मैं हूँ आपके साथ में अभी 5599 पर आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: council.govt.nz/whereitgoespe. Tamaki Turuki, altogether Auckland.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, hamari koi branch nahi hai.
3: Just chill.
4: Yo,
1: you're listening to Avineet.
5: जी हाँ, अभी का साथ है। और अगर जो आपको एक चीज़ एक नए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में बताए, क्या आपने माइक्रो ड्रामा के बारे में सुना है? आपको याद होगा कि सबसे पहला पहल अगर जो एंटरटेनमेंट की ओर देखे, खासकर इंडिया से जो स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट थी, तो ये सिनेमास के बारे में हुआ करती थी, जहाँ पर लोग समय निकाल कर सिनेमास जाते थे, थिएटर में जाते थे और फिल्मों को देखते थे। तो यहाँ पर 3 से 3.5 घंटों की जो एंटरटेनमेंट थी, ये आप लेते थे। फिर उसके बाद में ये जो एंटरटेनमेंट है, कहीं ना कहीं जो ड्रामा है, ये सोप ओपरस है, ये हमारे टीवी स्क्रीन पर आ गया, टीवी स्क्रीन पर आया है। उसके बाद में उसको भी एंजॉय करने लगे। जो सीरियल्स थे, इसे हम बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में हर शाम को रात को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और जो कोई भी आपका फेवरेट सीरियल है, इसे आप ज़रूर देखते हैं। तो वीकली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर आप उसे फॉलो करते थे। इसके बाद में फिर कहीं ना कहीं हमारे डिवाइसेस पे रील्स हुई, उसको भी आप देखने लगे, फॉलो करने लगे। काफ़ी कई डिफरेंट अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आप रील्स को देखते हैं। लेकिन अभी एक नया एक चलन या ट्रेंड शुरू हुआ, जिसके बारे में आपको बता दें कि बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड, जहां पर एक ड्रामा है जिसे कहते हैं माइक्रो ड्रामा। बड़े ही शिद्दत से इसे बनाते हैं और अंडर 2 मिनट्स का एक एपिसोड रहता है, जिसे आप अपने फ़ोन के डिवाइसेस पर देख सकते हैं। यानी कि एक पूरी की पूरी कहानी होती है और एक एक एपिसोड इज़ अंडर 2 मिनट्स, एंड दिस इज़ टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी, ये चाइना साथ में साउथ कोरिया में हुई थी और अब ये आहिस्ते आहिस्ते इंडिया की तरफ पहुँच गई है। चाइना में जब ये माइक्रो ड्रामास शुरू हुई थी, तो इनको बुलाया जाता था डुआन जू, ये इनका ट्रेडिशनल नाम था, या फिर चाइना में इसे डुआनजू कहा जाता था। अब यह माइक्रो ड्रामास कोरिया से होकर, साउथ कोरिया से होकर, यूएस से होकर अब इंडिया में भी काफ़ी नाम कर रही हैं। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा बूम हो रहा है इसका कि करंटली इट्स वर्थ अराउंड $300 मिलियन, यानी कि 220 मिलियन पाउंड्स के करीब इसका मार्केट है। और इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो माइक्रो ड्रामास है, ये 2030 तक, बाय द ईयर 2030, 4.5 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो क्या आपने इस माइक्रो ड्रामा को कभी देखा है, जो 2 मिनट से कम की जो एपिसोड्स होती है? और माइक्रो ड्रामा जो होती है, इनमें कई काफ़ी ऐसे ऐसे सीरीज़ है शायद, जिसे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, जिनमें शामिल है मैजिकल मीरा, एंड इट इज़ बिकम सो बिग कि जियो स्टार भी अब माइक्रो ड्रामा प्रोड्यूस करने वाली है। तो ये सभी कुछ बड़े बड़े जो नाम हैं एंटरटेनमेंट में, ये अब माइक्रो ड्रामा की ओर बढ़ रही है। रेड चिलीज का भी नाम आया है साथ में, यश राज फिल्म्स, जो ट्रेडिशनली एक ऐसे एंटरटेनमेंट हाउसेस थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो बड़े पर्दे के लिए ज़्यादातर के एंटरटेनमेंट या फिर फिल्मों को बनाया करते थे, अब इनका नाम जोड़ा जा रहा है माइक्रो ड्रामा के साथ में। ज़रा सोचिए, एक एपिसोड विच इज़ लेस देन 2 मिनट्स, और आप इसे अपने डिवाइस पर देख सकते हैं। और इसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि ये कैसे इसका ट्रेंड शुरू हुआ, कि आपको दिन में जैसे ही कुछ डाउन टाइम मिले, आप तुरंत अपने फ़ोन पर जाकर इन यू कैन ईजली वॉच अ माइक्रो ड्रामा विच इज़ जस्ट लेस देन 2 मिनट्स। तो इतना ही कम समय में आप अपने फ़ोन पर इस सीरीज़ को, एपिसोड को देख सकते हैं। क्या आपने अभी तक कोई माइक्रो ड्रामा को फॉलो किया है? इसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं? शायद ऑलरेडी न्यूजीलैंड में आप माइक्रो ड्रामा को देख रहे हो, तो हमारे पास में ज़रूर लिखिएगा 5599 पर ऐसे ऐसे नामों को जो आप फॉलो करते हैं, जो एपिसोड्स को आप फॉलो करते हैं, या फिर जो माइक्रो ड्रामा सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं, इनका टाइटल्स ज़रूर भेजिएगा 5599 पर। Which is becoming a booming industry according to the latest reports.

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
2: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rondh kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
1: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment, rating TBC.
3: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: आपके फेवरेट स्टेशन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर मैं हूं आपका साथी अभी 6 तक आपका साथ देता रहूंगा जबकि ये है जस्ट चिल। आप घर पर हैं आराम कर रहे हैं या फिर कुछ कामकाज में बिजी है या फिर बाहर शॉपिंग कर रहे हैं या फिर ग्रोसरीज के लिए आप जा रहे हैं निकल पड़े हैं रास्ते पर है आप सभी को हम याद करते हैं इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। और आपको बता दें हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के बारे में जो वीकडेज ये जो कॉम्पिटिशन है आपके लिए रन होता है हम पर और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहाँ पर आपको रिटर्न एयर टिकट्स मिल सकते हैं टू फीजी। जी हाँ एक ऐसी जगह जहां पर आप सेंट सी साथ में ब्यूटीफुल स्माइल्स का मजा ले सकते हैं एक ही जगह पर। और आपको सिर्फ क्या करना होगा स्पेशल कोड वर्ड्स जो है हम स्पेशल कोड वर्ड्स ये आपको स्पेसिफिक टाइम्स दिए जाते हैं सुबह 8 बजे दिन में 11 बजे और दोपहर 1 बजे साथ में शाम 5 बजे आपको हमारे जो साथी होते हैं स्पेसिफिक टाइम पर हम स्पेशल कोड वर्ड्स देते हैं और उस कोड वर्ड को सुनते ही आपको जाना होता है रोवा ऐप पर जहां पर हम फ्लाई अवे फ्रेंजी का कंपटीशन अपलोडेड है। यहां जाकर आप इन स्पेशल कोड वर्ड्स को विद इन एन आवर एंटर कीजिए और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाता है। अगर जो आप लकी ठहरे तो आपके हाथ में लग जाएगा रिटर्न एयर टिकट्स टू फीजी। इतना ही आसान है तो हम सुनते रहे वीकडेज में जबकि 8 बजे सुबह 11 बजे दिन में 1 बजे दोपहर और साथ में शाम 5 बजे ये स्पेशल कोड वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। जबकि बातें हो रही हैं आइलैंड के बारे में तो हमने सोचा कि आपके साथ में एक और एक कंपटीशन शुरू करते चले जबकि आपके लिए दो पर लेकर आएंगे स्ट्रेट आफ्टर न्यूज़ एपिक बॉलीवुड चैलेंज हमेशा की तरह। इस वीक भी आपके लिए एक गाना लेकर आए लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप हमें ये बताएं ये सुनिए और आप बताइए कि व्हाट डू द लेटर टी एंड एन आइलैंड हैव इन कॉमन। जबकि फिजी आइलैंड्स की बात हो रही थी हम फ्लाईवे फ्रेंसी के तहत तो हमने सोचा चलो आपसे ये भी पूछ लें व्हाट डू लेटर टी एंड एन आइलैंड हैव इन कॉमन। इनमें क्या समानता है क्या कॉमन है क्या सिमिलरिटी है लेटर टी फ्रॉम द अल्फाबेट्स और एक आइलैंड में क्या कॉमन है ये आपको जवाब भेजना है 5599 पर अपने नाम के साथ में। और कोई रिक्वेस्ट भी है ना आपके पास में तो वो भी लिखकर भेज दीजिए हमारे पास में। तो सवाल एक बार फिर से व्हाट डू लेटर टी एंड एन आइलैंड हैव इन कॉमन इतना ही बताना है आपको।

That's right, हम आप ही के लिए बेहतरीन गाने बजाते रहते हैं हम पर, और ऐसे ही आपका साथ देते रहते हैं। कुछ लोगों ने हमारे सवाल को अटेम्प्ट किया है और एक मैसेज आया है प्यारा सा क्वीन की ओर से, वंडरफुल प्रोग्राम, यू रॉकिंग द संडे विद दिस ग्लूमी वेदर। एंड आपने जवाब भी दिया जिस पर थोड़ी देर में गौर करेंगे, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था कि ग्लूमी वेदर है आउटसाइड। तो चलो, आपके एरिया में अगर जो वेदर थोड़ा ग्लूमी है, यहाँ से आपके लिए बिल्कुल रंगीन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं भी थोड़ी देर में जाऊँगा बाहर, देखूँगा कि आज वेदर सिटी में कैसा है, जबकि आप जानते हैं हमारे स्टूडियोज़ में सिर्फ हम चारों ओर सिर्फ कंप्यूटर या स्क्रीन को ही देख पाते हैं। लेकिन जो भी हो, आगे बढ़ते हुए एक बार फिर आपके लिए जो सवाल है इसे दोहरा देते हैं। जबकि एक और एक जवाब आया था जिसके आपके आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपने सिर्फ लिखा है ट्रीज़। तो 3302 आपके लिए एक बार फिर से ये क्लू दे देते हैं, आपके लिए ये सवाल दोहरा देते थे। What do the letter T, T for Tom and an island have in common? यानी कि इन दोनों में क्या सामान्य है, क्या सिमिलरिटीज़ है? लेटर टी फ्रॉम द अल्फाबेट्स और साथ में एक आइलैंड में कॉमन बात क्या है, यही आपको बताना होगा 5599 पर अपने नाम के साथ में। और जबकि आप हमारे पास में टेक्स्ट कर रहे हैं, तो अपने जो रिक्वेस्ट है ये भी उसी समय भेज सकते हैं। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, इसके बाद में जवाब भी आपको बताएंगे।

हाँ, सोनू निगम को आप सुन रहे थे। एक बार रिक्रिएट किया गया इनका गाना है बिजोरिया, और कई गाने होते जो रिक्रिएशन के बाद में काफ़ी अच्छे नहीं लगते सुनने में, लेकिन ये जो गाना है इट बीट्स दी एक्सेप्शन। और जबकि ये गाना ओरिजिनल भी उतना ही खूबसूरत था, साथ में रिक्रिएटेड वर्जन भी उतना ही लाजवाब है। तो जबकि सवाल हमने किया था आपसे कि व्हाट डू लेटर टी एंड एन आइलैंड हैव इन कॉमन, तो 3302 शुक्रिया, आप सही चैनल पर आ गए हैं। जी हाँ, जवाब है कि दे आर बोथ इन द मिडल ऑफ वाटर, यानी कि अगर जो शब्द को आप देखेंगे तो लिटरली लेटर टी इज़ इन द मिडल ऑफ वाटर शब्द, और साथ में आइलैंड जो है ये भी वाटर के बीच ही बीच में है। तो ऐसे में आपने क्वीन आपने अपना जवाब भेजा था, इसके साथ में 2075 आपने अपना नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आपको भी शामिल करते हैं इस गीत पे। अगला जो गीत सुनाने से पहले कुछ और स्पेशल है हमारे पास में, तो चलो कुछ लाइनर सुनाते हैं आपको, उसके बाद में एक स्पेशल आपको सुनवाते हैं कुछ, और उसके बाद में फिर आपको गाना सुनवाएंगे।

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, आप अभी को सुन रहे हैं, लेकिन अगला जो आर्टिस्ट है ये है बाबुल सुप्रियो। और इनको सुनवाने से पहले आपको अपनी तरफ से कुछ स्पेशल बता देते हैं ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम। आप ये ध्यान से सुनिएगा। कुछ रूठे रूठे से जनाब है, हमारे सवालों का ना कोई जवाब है। जिंदगी चार दिन की, इसमें से दो दिन तो आपके गुस्से में खराब है।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये ये सलाम दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

हम पर 1:22 हो रहे हैं, ऐसे में सुपर रग्बी की ओर ध्यान कर लेते हैं, जबकि कल कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं जहां पर ड्रू और हाइलैंडर्स के बीच में फोआर स्टेडियम बा में ये खेल हुआ और यहां पर ड्रुआ की जीत हाइलैंडर्स के खिलाफ 24-14 से हुई। जबकि इस मैच को मैंने देखा तो मुझे देखने में ऐसा लगा कि काफ़ी स्क्रैपी और मैसी गेम था, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ बॉल स्पिल्स ये सभी कुछ इस मैच में था, लेकिन अ विन इज़ अ विन और ड्रुआ केम आउट फाइटिंग 24-14 से। और इसके साथ में एक और एक अन्य मैच में मोआना और साथ में ब्लूज़ के बीच में जो खेल हुआ, इसमें ब्लूज़ की जीत मोआना से 45-19 से हुई। साथ में ब्रम्बिस की हार रेड से 30-21 से हुई। तो इस राउंड के मैचेस के बाद में अगर जो देखे तो जो टेबल है कुछ इस तरह से, हरिकन्स नंबर 1 पर है अभी भी और साथ में क्लोजली फॉलोड बाय ब्लूज एट नंबर 2, चीफ्स एट 3, क्रुसेडर्स एट 4, साथ में रेड्स नंबर 5 पर है एंड देन ब्रम्बिस एट 6, हाइलैंडर्स 7 एंड फिजियन ड्रुआ एट नंबर 8। तो जब कि क्वालिफिकेशन प्रोसेस में टॉप 8 ही क्वालिफाई होती है तो ड्रुआ को होल्ड करना होगा एटलीस्ट फिनिशिंग 8th इस सीजन में, और इसके बाद में वोराटास, फोर्स और मोआना पैसिफिका एट द बॉटम ऑफ द टेबल है। जबकि मोआना पैसिफिका के लिए फ्यूचर काफ़ी ब्लीक लग रहा है, क्योंकि ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद मोआना पैसिफिका अगले साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है, लेकिन अभी के लिए टॉप 8 में फ्यूजन ड्रुआ मेक्स द कट और देखेंगे कि क्या ये पोजिशन ये मेनटेन कर पाते हैं इफ़ दे आर नॉट एबल to better it.

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. पर ये कॉफी lukewarm. और टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full-price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May, in-store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
4: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
10: मिसेस सिंह.
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: Jen didn't think she needed a DVS system.
14: Oh, I've got insulation in that.
13: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
14: Ah, yeah.
13: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
15: Hum, playing Bollywood's biggest hits.
16: Just chill.
17: Yo,
15: you're listening to Avineet.
18: हम पर रवि का साथ है, जबकि आज है 3rd of May, तो अगले संडे को है 10th of May और मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा अराउंड द कंट्री. और ऐसे में क्या आपने तैयारी पूरी की पूरी कर ली है मदर्स डे के लिए? अगर जो आपने गिफ्ट नहीं लिया है तो ये भी एक मौका है कि आज इस वीकेंड आप जाकर इस काम को भी निपटा लें. शायद अगले वीक आपके पास में काफ़ी कम समय रहे, जबकि वीकडेज में आप बिज़ी रहोगे और साथ ही साथ में कुछ प्लानिंग वगैरह और आप करना चाहते हो, तो ये सभी का मौका है. हम जानते हैं कि आप अगले वीकेंड पर शायद कई जगह पर लंच भी ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने मम के साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, तो ये सभी कुछ हमारे साथ में आपके लिए और आसान करने के लिए. तो एक प्रमोशन लेकर आएंगे आपके लिए, जहां पर आप अपने मम के लिए कुछ फैंटास्टिक प्राइजेस जीत सकते हैं, जिसके बाद में आप गिफ्ट अपने मम के लिए बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हम भी पिचिंग कर देंगे हम की तरफ से और आपके लिए और भी आसान बना देंगे, सो दैट यू कैन बाय अ वंडरफुल ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योर ब्यूटीफुल मम. तो ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा, बस थोड़ी देर में आपको मौका देंगे 0800-004-866 पर, जबकि आप उन्हें पार्टिसिपेट कर सकेंगे. एंड कीप हमिंग, थोड़ी देर में ये कॉम्पिटिशन प्रमोशन आपके लिए लेकर आएंगे.

0: Just chill.
1: हम पर अभी का साथ है और आपको लगे हाथ बताते चले कि जबकि 10th ऑफ मई यानी कि अगले संडे को आप बिजी रहेंगे मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपको बता दें कि हम पर काफ़ी प्रमोशंस के मौके हैं जहां पर आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और वहां पर आपके लिए क्रिएट द अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर का मौका है कि आप जाकर मदर्स डे के वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। एक पिन पोस्ट है और उसके नीचे आप अपने जो क्रिएटेड वाउचर है, अगर जो आपने इसे किसी ऐप पर रेडी किया है, तैयार किया है, तो वहां पर अपने पर्सनलाइज वाउचर को आप कमेंट सेक्शन में अपलोड कर लीजिए एंड उतना ही करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। जबकि इसका जो ड्रॉ है आने वाले शुक्रवार को रहेगा और ड्राइव शो पर शाम को फ्राइडे 8 मई को रहेगा, जहां पर $200 का विजेता का नाम पता लगेगा। और लोग इसे थोड़ा हल्के में ले रहे, जबकि मैं देख रहा था तो कुछ 18 लोगों ने ही अभी तक शायद कमेंट किए होंगे यहां पर इस कंपटीशन में भाग लिया होगा, जबकि इनाम है $200। ऐसे में आपको एकदम आगे रहना चाहिए। आपको अभी तक आपने एंटर नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर जो आप क्रिएटिव है अपने हाथों से ही आप बना सकते हैं कुछ अपने मम के लिए वाउचर, और टेक इट अप एज अ चैलेंज अपने माँ के लिए। एक वे है कि आप अपने मम के लिए इस कंपटीशन में भाग ले रही है। ये सभी कुछ आप कर सकते हैं अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर, जहां पर आप हम फेसबुक पेज पर जाकर इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके लिए जो ऑन एयर प्रमोशन है ये खेलने वाले हैं, जबकि कंपटीशन करने से पहले आपको इस गाने के बारे में बता दे जो आपके लिए बजाने जा रहे हैं। 1973 की एक फिल्म थी जैसे को तैसा, सो वन ऑफ द एलियस्ट मदर्स डे सॉन्ग मैंने कभी सुना था, तो ये अगला गाना ही था। तो चलो आपको गाना बजाने से पहले बता दे, जबकि गाने को गाया है किशोर कुमार साथ में आशा भोसले ने, ये दोनों कलाकार साथ में म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन इनकी जो यादें हैं ये रह जाती है, इनके आवाज़ रह जाते हैं और ये जो गाने छोड़ कर जाते हैं हमारे लिए, ये कहीं ना कहीं किसी स्पेशल इवेंट ओकेजन पर हमेशा आपके लिए हम शामिल कर लेते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा, चलो आपको दे ही देते हैं और गाने के बाद में कॉल लेंगे, कि माँ ने आपको कुछ बताया है करने के लिए। एज एन एग्जांपल, आपको कहा गया कि माँ ने कपड़े धो दिए हैं और साथ में इट्स अ ब्यूटीफुल सनी वेदर आउटसाइड, तो मम ने सोचा चलो क्लोज लाइन पर इसे डाल देते हैं, आज ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आपसे बता कर गई कि मेक श्योर आप थोड़ी देर में इन कपड़ों को क्लोज लाइन से उतार लेना, लेकिन आप भूल गए और जबकि बारिश हुई और इसके बाद में कपड़े वापस भीग गए। तो इस पर आपकी मम किल करेंगी या फिर चिल करेंगी, इसी के बारे में आपको बताना है। सोचिए 0800 004866। इन द मीन टाइम ये गाना सुनिए, इसके बाद में कॉल्स लेंगे।

एक ब्यूटीफुल नंबर मदर्स डे के लिए और मम्स मूड स्विंग्स का जो प्रमोशन है मदर्स डे स्पेशल ऑन हम, ये आपको मौका दे रहे हैं कि अब आप हमारे पास में कॉल कर सकते हैं 0800004866 पर, जहां पर हमने आपको सिचुएशन दिया है कि मम ने आपको काम दिया है एज एन एग्जांपल कि बाहर कपड़े आज क्लोथ लाइन पर है जबकि सनी डे है, तो मम ने सोचा कि आज ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कपड़े बाहर क्लोथ लाइन पर है और आपको ये काम देकर दिया है, टास्क दिया है कि आप इसको थोड़ी देर में चेक करके आप उतार ले, लेकिन आप भूल गए और वापस जब बारिश हुई तो कपड़े एक बार फिर भीग गए। तो इसमें मम किल करेगी या चिल करेगी आपको 0800004866 पर। आपके पास में अभी मौका है, कॉल करके हमें जवाब दीजिए कि मम कैसे रिएक्ट करेंगी और इतना ही करके आपके नामों को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जिसका ड्रॉ रहेगा ब्रेकफास्ट शो पर फ्राइडे 8th of May, जहां पर पहली प्राइज में $300, सेकेंड प्राइज में $200 इनाम और थर्ड प्राइज में $100। तो हमने तो चलो आपको मौका ही दिया है, अब इतना आपको करना पड़ेगा अपनी ओर से कि अगर जो आपको इनाम के लिए क्वालिफाई होना है, ड्रो में शामिल होना है, तो कॉल आपको

कर सकते हैं। तो चलो एक और एक गाना आपके लिए बजाते हैं, इस बार यो हनी सिंह के आवाज़ में, और अगर जो उसके बाद में देखेंगे कॉल आता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको बायपास कर देंगे आज के लिए।

0: Start the beat. Mashallah.
1: All right, telephone lines ki aur dekhte hai, call aa gaya. Hello.
2: Hello.
1: Hi, welcome to Hum. Kisse baatein ho rahi hain?
2: Aradhna.
1: Hi Aradhna, kaisa chal raha tha? Kya kar rahi thi aap aaj?
2: Bas ghar ka cleaning wagera kaam karke bas main radio hi sun rahi thi.
1: Oh, very good. Sare kaam aapne nipta dale aaj ke liye?
2: Almost. I was just cooking something.
1: That's pretty good, pretty good. अच्छा, एक बात बताइए, ये आप खुद के लिए आंसर कर रही है या अपनी बच्ची के लिए, बेटी के लिए आंसर कर रही है?
2: अपनी मम के लिए आंसर कर रही
1: हूँ. Oh, that's very good. अच्छा, एक बात बताओ, तो कभी ऐसा हुआ है कि मम ने टास्क दिया है और आप इसे पूरा नहीं कर पाई?
2: जी हाँ, कई बार हुआ है.
1: कई बार हुआ है. अच्छा, तो अगर जो इस सिचुएशन में देखे, आपको अगर जो मम ने बताया कि कपड़ों पर ध्यान रखना बाहर क्लोज लाइन पर, और अगर जो आप भूल गई और बारिश हुई और वापस कपड़े भीग गए, तो आप कैसे, आपकी मम आपको रिएक्ट करेगी?
2: तो वो ऑब्वियसली किल करेगी. किल तो नहीं करेगी, किल करेगी. उसमें कहेगी, क्या कर रहे थे तुम, किस ऐसे फेस्टिवल में बिजी थे कि तुम अब कपड़े के बारे में भूल गए? तो मुझे रीजन सोचना पड़ता है कि मैं पढ़ने में बिजी थी या मैं सो गई थी. उसने कहा, एक काम तुम्हें दिया जाता है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता.
1: अच्छा, मुझे लग रहा है आपने काफी सिंसा करके बताया है. अगर जो मम एक्चुअल वर्ड्स यूज करेगी तो क्या यूज करेगी?
2: तो अगर अगर एक्चुअल वर्ड्स यूज करती तो बोलती, किस बारात में घूमने गए थे जो यहाँ कपड़े भीग गए सारे, क्या कर रहे थे तुम?
1: ये हुई ना बात. इसी बात का तो इंतजार था. ये जो प्रसाद मिलता है ना, ये प्रसाद क्या इंतजार था?
2: हाँ, अलग अलग अलग तरह के डायलॉग्स मिलते हैं. जैसे ये तो एक ही एग्जांपल है. उसमें और कहीं भी है, किस आईने में इतना चेहरा देख रहे थे कि कपड़ों के बारे में भूल गए और पीछे बारिश हो रही थी, सुनाई नहीं दिया तुम्हें?
1: ये बात सही है. हमारा जब हम छोटे थे तो एक कोड वर्ड हुआ करता था कि आरती लिया जा रहा था और हमने ले लिया. मम आरती उतार रही थी और हमने ले लिया. अच्छा, आप अगर जो आपका नाम ड्रो में से निकला और आपके हाथ में $300 का इनाम लगा, तो आप क्या करोगी इस इनाम के साथ में?
2: मैं वो सारे अपने मम को दे दूंगी.
1: ओह, वेरी गुड. रेडियो के लिए बोल रही हो कि या दिल से बोल रही हो?
2: नहीं, दिल से बोल रही हूँ.
1: अच्छा, चलो, हमने क्या किया है, आपके नाम को और नंबर को ड्रॉ में शामिल कर लिया है, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये इनाम आपके हाथ ही लगे. और हमारी ओर से आपको, आपकी फैमिली को, खासकर आपके मम को, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस.
2: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू आपको कि आपने पार्टिसिपेट किया. तो ये थी आराधना, और इतना ही करके ये शामिल हो गई है हमारे ड्रॉ में. और अगर जो ये विजेता ठहरी तो इनके हाथ में $300 का जो इनाम है ना, ये ऐसे ही लग जाएगा. तो ये था आज के लिए हमारा ड्रॉ, और ये हो चुका, मतलब ड्रॉ में शामिल आराधना हो चुकी है. तो कार्यक्रम को, प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाते हैं. अब गाना वहीं से लेते हैं, यो यो हनी सिंह की आवाज़ में.

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में। 2:02 हो चुके हैं और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। लेकिन अभी के लिए समय हुआ आपके लिए लेकर आए एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहाँ पर ऐसे ऐसे क्लूज देते हैं किसी एक गाने के बारे में जिन्हें आप सुनकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन सा ये गाना है। अक्सर लोग फिल्म्स भी लिखकर भेज देते हैं, लेकिन व्हाट आई एम आफ्टर इज द सॉन्ग, कौन सा गाना ये है, वही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और आपके पास में समय इतना ही रहता है कि जैसे ही क्लूज को बताना शुरू करते हैं और गाना बजाने से पहले, यही बीच का समय आपके पास में रहता है। और इसके बीच में ही इन क्लूज के बिना पर आपको अपने जवाब, अपने गाने जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, 5599 पर टेक्स्ट करना होता है। इतना ही आसान, सिंपल। और जो सबसे पहले मैसेज करता है वही जीत जाता है उस वीक का एपिक बॉलीवुड चैलेंज। जैसे लास्ट वीक आशीष वेलिंगटन से इन्होंने करण अर्जुन का जो गाना है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसे आइडेंटिफाई करके सबसे पहले हमारे पास में अपना जवाब भेज दिया था। तो चलो आज के लिए ये जो क्लू है आपके लिए शामिल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अपने फिंगर्स को जरूर फ्लेक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हियर इट गोज। 1993 की ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है, जहां आपने पहली और आखिरी बार SRK, शाहरुख खान और सनी देओल को एक साथ सिनेमा में देखा था, बड़े पर्दे पर देखा था या फिर एक फिल्म में देखा था। इनके साथ में थी ब्यूटीफुल जूही चावला, यशराज फिल्म की प्रेजेंटेशन, डायरेक्टेड बाय लेट यश चोपड़ा। स्टोरी एक एंटी हीरो की, जो अपनी एक जानने वाले नेवी ऑफिसर की फियोंसे को पसंद करने लगते हैं और फिर पागलपन की हदों को पार करके उन्हें चाहने लगते हैं। इस करेक्टर का नाम था किरण। ये उस दौर की फिल्म है जहां SRK को एंटी हीरो रोल्स में देखा जाता था, बिफोर ही बिकेम द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो। इस फिल्म की कई इंटरेस्टिंग एनिकडोट्स है। कास्टिंग को लेकर, सनी देओल 1993 में SRK से एक बड़े स्टार थे, इसीलिए कास्टिंग के वक्त इन्हें चॉइसेस दिए गए थे, आदर टू प्ले राहुल और या सुनील, और सुनील में से कोई भी रोल्स ये चूज कर सकते थे, जबकि ये मौका इनको दिया गया था। लेकिन सनी ने अपनी फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए चोज टू प्ले एन अपराइट नेवी ऑफिसर। तो अगर जो आपने ध्यान से सुना होगा, जबकि हमने कहा है कि जो फीमेल कैरेक्टर थी, ये इनका नाम था किरण, तो आपको शायद फिल्म का अंदाज़ा इससे लग गया होगा। फिर SRK का रोल आमिर खान को पहले ऑफर हुआ था, जिससे आमिर ने डिप्लोमेटिकली नहीं कर दिया, यानी कि उसको डिक्लाइन कर दिया। इस बीच इस रोल के लिए अजय देवगन को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन उनकी और कुछ कमिटमेंट्स थी, और फिर इट फाइनली लैंडेड विद SRK और उन्होंने फुल जस्टिस किया इस रोल के साथ में। फिल्म की क्लाइमेक्स की शूटिंग पर सनी देओल इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने अपने जीन्स की पॉकेट को अपने हाथों से रिप कर दिया, जस्ट लाइक द ओरिजिनल हीमैन। गुस्से की वजह, राहुल का कैरेक्टर सुनील को क्लाइमेक्स की फाइट में सामने से वार कर देता है। सनी की रीजनिंग ये थी कि जबकि मैं एक नेवी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ और मुझे राहुल से काफ़ी फिट रहना है, तो सामने से कैसे वार कर सकता है। काफ़ी हीटेड डिस्कशंस हुए, फिर उसके बाद में इसे इस तरह से फिल्माया गया, जहां पर राहुल को दिखाया गया है कि वो पीछे से अटैक करते हैं और फिर स्टेप कर देते हैं आफ्टर प्लीडिंग फॉर फॉरगिवनेस। और अगर जो आपको म्यूज़िक के बारे में कुछ बताए, तो फिल्म में म्यूज़िक एक म्यूज़िकल जोड़ी शिव हरी ने दी है। शिव यानी कि शिव कुमार शर्मा एक संतूर प्लेयर थे, और हरी यानी कि हरी प्रसाद चौरसिया एक फ्लूटिस्ट की जोड़ी। ये अक्सर अलग अलग काम करते, लेकिन फिल्म्स के लिए कॉम्बाइन होकर साथ में काम करते। शिव हरी ने साथ मिलकर यश चोपड़ा की काफ़ी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, जिसमें शामिल है 1981 की सिलसिला लम्हे चांदनी जैसे फिल्म्स। सब फिल्मों के गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी आपने इनका बहुत नाम नहीं सुना होगा मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री में। आज की गाने की अगर जो खास बात करें, तो इसे पिक्चराइज किया गया है ऐसे मोड़ पर, ऐसे जंक्चर पर, जहां एक ऑब्सेसिव राहुल सुनील और किरण को फॉलो करते हुए स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है और वहां फैंटेसाइज करता है कि ये गाना जो है ये गा रहे हैं स्विस एल्प्स में किरण के साथ में। अब इस गाने को अगर जो सुनेंगे, तो इनमें लाइन्स ऐसे ऐसे हैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, और साथ में दिल तो देते हैं सभी, जा भी तुझको दे दूंगा मैं, ऐसे ऐसे गाने हैं जिनमें क्लियरली ऑब्सेशन दिखाई देते हैं। रियल लाइफ की बात करें तो आपको अगर जो ऐसा कोई मिले तो भैया दूर रहिए, क्योंकि ऑब्सेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन जबकि ये फिल्म रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी चली, लेकिन फिल्म फेयर में अगर जो देखा जाए तो इसे सिर्फ एक ही अवार्ड दिया गया था, अनुपम खेर को मिला था ये अवार्ड, दिया गया था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, है ना सरप्राइजिंग, जबकि शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इस क्लूज के बिना पर अगर जो आपको पता चल गया है कि कौन सा ये गाना है तो 5599 पर अपने जवाब भेजिए अपने नाम के साथ में, देखेंगे कि कौन सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको वही गाना सुनवाने जा रहे हैं, एंजॉय दिस वन।

0: मेरी किरण का तुझे किरण आ जा मेरी किरण मेरी किरण
1: That's right, काफ़ी स्केरी किरण। और जबकि प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और इसमें दिनेश राणा शामिल है। आपने मूवी का नाम भी बताया, यह भी बताया, साथ में गाने का टाइटल भी दिया है दिनेश राणा। थैंक यू सो मच। सबसे आखिरी में आपका जवाब आया। इसके साथ में आशीष वेलिंगटन से आपने भी सही जवाब दिया। आशीष शर्मा, थैंक यू सो मच। इसके साथ में 5747 आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन आपने गाने का टाइटल लिखा है, थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। साथ में फाल्गुनी, आपका भी जवाब आया है। फाल्गुनी काफ़ी अच्छा खेलती है, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 3 या 4 बार इस कंपटीशन को जीता है। इसके साथ में श्रेया मुरारजी, आपका भी जवाब आया, थैंक यू सो मच फॉर देट। और आराधना, आपने भी पार्टिसिपेट किया। इसके साथ में श्रुति भी हमेशा खेलती है, आपने भी जवाब दिया है। और साथ में क्वीन, आपका भी जवाब आया है, आप भी अक्सर हमारे साथ में हो जाती है। और इसके अलावा अगर जो देखे तो सबसे पहला पहल मैसेज हमारे पास में लिख कर भेजा है, ओके, अगर जो हम देखें तो जो सबसे पहला मैसेज आया था ये हेमंत का आया था, लेकिन हेमंत ने सिर्फ फिल्म का टाइटल भेजा था तो इसीलिए उसके बाद में मैसेज आया था श्रुति का, क्लोजली फॉलोड बाय क्वीन। तो श्रुति आज की कंपटीशन का विनर आप हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगले वीक आपके लिए एक और एक गाना लेकर आएंगे और इसमें आपके लिए हमेशा कोई ना कोई आइकॉनिक सॉन्ग ये ढूंढ कर लेकर आएंगे। आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट और आप सभी को शामिल करते हैं इस गाने में। और आज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस श्रुति, आप विजेता ठहरी हैं।

0: Tunes on Saturday Breakfast.
1: हाँ पर रवि का साथ है, आप सुन रहे हैं जस्ट शिल, और अभी से लेकर शाम 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा 104.2 FM साथ में रोवा पर।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
2: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar, Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
1: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
3: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
4: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
5: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
6: Zabardast hits.
7: Shuru ho jaye to rukte nahi.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
8: हम पर 2:25 हो रहे हैं जबकि प्रोग्राम चल रहा है जस्ट शिल. मैं हूं अभी आपके साथ में. लगे हाथों आपको कम्युनिटी न्यूज़ में बता दें, मैंने क्या हो चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज लेकर आ रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या, जहां पर टिकट से $20 प्री सेल्स और डोर सेल्स भी लिखा है. 8 May 2026 को ये प्रोग्राम रहेगी, विच इज़ नेक्स्ट वीक. और दवेन नाथ और साथ में नितिन नीलेश जैसे दिग्गज कलाकार यहाँ पर रहेंगे. कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम 7 PM से स्टार्ट होगा मध्य रात्रि तक. यहाँ पर हम पार्टनर्स भी हैं और आपको सिर्फ जाना होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एवेन्यू पपटोया ओकलैंड में. और इसके साथ में श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट लेकर आया है भोजन मेला फूड कार्निवल, जो रहेगा संडे 17 मई को दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक. आपको जाना होगा 378 RRIMU रोड, जी हाँ 378 RRIMU रोड, रामा रामा साउथ ओकलैंड. और साथ में यहाँ पर जो लक्ष्य है कि धन इकट्ठा कर सके फॉर प्रोजेक्ट ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल. यहाँ पर फीचर्स एंड अट्रैक्शंस खास करके फ्री एंट्री, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट और इडली सांभर, साथ में ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स भी रहेंगे. हिना भी रहेगी, हिना आर्टिस्ट भी रहेंगे, साथ में फेस पेंटिंग और बाउंसी कासल फॉर किड्स. स्पॉन्सरशिप के लिए, स्टॉल्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शिवानी को 02187-0012 पर, साथ में शांति रवि को 02129-46394 पर. नंबर एक बार फिर से शिवानी 02187-0012, साथ में शांति रवि 02129-46394 पर.

0: ऑलराइट, आप सुन रहे थे हम बादशाह की आवाज़ में, और ये है हम लेकर आया हूँ जसशील, मैं हूँ अभी आपके साथ में 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। इतने हिप हॉप गाने के बाद में, बीट्स वाले गाने के बाद में आपको क्या सुनना चाहिए, एक बिल्कुल कुछ देसी सुनवाने जा रहा हूँ।
1: यू

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ, अच्छा?
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह।
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
7: Yo, मैं हूँ छोटा सा छोरा।
5: You're listening to Avineet.
8: कुछ 18 मिनट बाकी है 3 बजने में। ऐसे में इस बीच आपको सुना देते हैं EPL से जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे हाथ में हैं, जो रिजल्ट्स आज सुबह सुबह की ब्रेंटफोर्ड साथ में वेस्टहैम के बीच में जो खेल हुआ, ब्रेंटफोर्ड की शानदार जीत 3-0 से हुई। वेस्टहैम एक बार फिर से रिलेगेशन जोन में जा चुकी है, खतरे बढ़ चुके हैं रिलेगेट होने के लिए। साथ में वुल्स और सन्डरलैंड के बीच में जो खेल है ये 1-1 से बराबर ठहरा। इसके साथ साथ न्यूकासल ने ब्राइटन को 3-1 से हराया। और आज सुबह एक और खेल में आर्सेनल की जीत से 3-0 से हुई, जबकि सिटी और आर्सेनल एक बिल्कुल नेक टू नेक ये चल रहे हैं ईपीएल टेबल पर, नेक एंड नेक चल रहे हैं। ऐसे में गोल्फो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 3 गोल्स आज आर्सेनल ने बनाए हैं, जबकि मैन सिटी और साथ में एवर्टन के बीच में ट्यूसडे मॉर्निंग ये खेल रहेगा। तो इसमें देखा जाएगा मैनचेस्टर सिटी क्या रिजल्ट हासिल करती है। इसके अलावा कुछ और अन्य खेलों में कल सुबह 1 पर बोर्नमाउथ साथ में पैलेस के बीच में खेल रहेगा। इसके साथ में 2:30 पर मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक्स ऑन लिवरपूल, एक इंपॉर्टेंट खेल, जबकि दोनों टीमें कोशिश करेंगी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होने के लिए। तो देखेंगे इस खेल का जो रिजल्ट है कैसे ठहरता है। इसके साथ में एस्टन विला और टोटनहम के बीच में कल सुबह 6 पर ये गेम रहेगा। एस्टन विला भी विल ट्राई टू मेक द कट फॉर चैंपियंस लीग, और इसके साथ में टोटनहम कोशिश करेगी कि रेलिगेशन जोन से ये बाहर निकले। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। इसके साथ में ट्यूसडे को चेल्सी और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच में एक और एक खेल रहेगा। तो ये सभी कुछ ईपीएल की दुनिया से है, जो कि हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं।

हम पर रवि का साथ है और अक्सर आपके लिए जरूरी बातें भी लेकर आते रहते हैं, जो कॉमेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो आपको रात को आसमान में भी दिखती है। तो ये कॉमेट्स जो होती है ये बनती है डस्ट आइस और साथ में इनका एक टेल होता है ना, जब आप इसको रात को देखते हैं तो आपको लगेगा कि इसका काफ़ी लंबा शाइनी टेल होता है, एक लाइट की तरह आपको दिखता है। और ये जो कॉमेट्स होते हैं ये एंशंट ऑब्जेक्ट्स है जो फॉर्म होती है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। जी हाँ, जबकि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, तो इनमें से जो लेफ्ट ओवर्स है ये यही कॉमेट्स है जो आप सोलर सिस्टम में देखा करते हैं। और ये आते हैं अक्सर जैसे जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होते हैं जो 200 ईयर्स लगाते हैं सन को ऑर्बिट करने में, तो ये सोलर सिस्टम में ही कहीं ना कहीं रहती है। और कुछ और कॉमेट्स होते हैं जो कुइपर बेल्ट के बाहर से भी आते हैं, तो इनको कहा जाता है ऊट क्लाउड। तो आपको ऊट क्लाउड और साथ में कॉमेट्स के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जल्द से जल्द इन्हें देख पाएंगे आसमानी में, न्यूजीलैंड के आसमान में, जबकि ये विजिबल रहेंगे नेक्स्ट वीक। जी हाँ, और इनको ऊट क्लाउड कॉमेट कहा जाता है, नोन एज पेंस स्टार्स, और ये विजिबल रहेगी जबकि आतेरोवा में, आप इसे नेक्स्ट वीक स्काइज में देख पाएंगे। तो कीप विजन आउट, कीप लुकिंग आउट, आपको शायद ये दिखे नेक्स्ट वीक आसमानों में। एक खास करके ये बताया गया है कि आप जहाँ कहीं भी है आपको शायद अगर जो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है तो आप इसे देख पाएंगे आसमान पर, लेकिन खासकर वेस्ट कोस्ट में इसे एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप इसे व्यू कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ कहना है स्टारडोम एस्ट्रोनोमर जोश औराकी का, जिन्होंने आरएनजेड को बताया है कि इनको आप देख पाएंगे एन आवर आफ्टर सनसेट नेक्स्ट वीक। तो अगर जो आपको याद रहे तो एक घंटा बाद सनसेट के आप बाहर निकलिए, थोड़ी देर के लिए सैर कीजिए और आसमानों में देखिए क्या आप इस कॉमेट को स्पॉट कर पाते हैं या नहीं।

0: You're listening to Avineet.
1: मैं हूं अभी आपके साथ में और तीन बज चुके हैं ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो और इस आवा पर आपका खास स्वागत करते हैं और इस आवा की शुरुआत भी करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो मेरे लिए इस हफ्ते का शायद सबसे बड़ा और ट्रेजिक न्यूज़ है और शायद आपके लिए भी होगा। जी हाँ, जबकि हम बातें कर रहे हैं बर्गी डैम एक्सीडेंट के बारे में, एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर एक क्रूज़ के दौरान फैमिलीज़, फ्रेंड्स, बच्चे ये गए थे छुट्टियां मनाने और कुछ इंसिडेंट हुआ जहां पर वाटर ट्रेजेडी में एक ऐसे हादसा हुई जहां पर लोगों ने अपनी जान खो दिए और जबकि जो सर्वाइवर्स है अब ये सामने आकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द सर्वाइवर्स एक 72-year-old रियाज हुसैन थे जिन्होंने बताया आफ्टर वेटिंग इन द वाटर फॉर 4 आवर्स यानी कि 4 घंटों तक ये पानी में ही इंतज़ार कर रहे थे और जब इनको रेस्क्यू किया गया उसके बाद में उन्होंने बताया कि काफ़ी अनप्रिपेयर्ड यहाँ पर जो क्रू स्टाफ थे ये थे, जबकि जो सेफ्टी जैकेट्स थे आपने शायद वीडियो पर भी देखा होगा कि सेफ्टी जैकेट्स को सील करके रखा गया था और इन्हें तभी बांटा गया जब पानी शायद जहाज़ में आने लगी। तो ये सभी कुछ हुआ है और इस पर जो MP मध्य प्रदेश के जो सरकार है इन्होंने कहा है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा जहां पर स्ट्रिक्ट जो चेकलिस्ट है या फिर जो कदम है ये उठाया जाएगा ताकि रूल्स को वायलेट आगे करके नहीं किया जाए। तो ऐसे में एक और एक रिपोर्ट में आज सुबह सुबह कुछ 11 लोगों की मौत कन्फर्म की गई है जबकि कुछ लाश अभी भी बरामद की जा रही है। तो डेथ टोल हैज़ रिजन अप टू 11 और ऐसे एक खुशी का माहौल हो सकता था जहां लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे लेकिन इट हैज़ टर्न्ड टू बी वेरी ट्रेजिक। और ये भी सामने बात आई है कि जो क्रूज़ थी ये कुछ 40 लोगों से ज़्यादा कैरी कर रही थी लेकिन जबकि टिकट्स इशू किए जाते हैं सिर्फ 29 पैसेंजर्स के लिए। तो इस हादसे के बाद में जबकि और भी स्ट्रिक्ट कानून अपनाया जाएगा मध्य प्रदेश में क्रूज़ ऑपरेटर्स के लिए, लेकिन हम भी जब छुट्टियां मनाने जाते हैं तो कभी कभी कुछ अनफॉर्चुनेट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होती है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सतर्क हमेशा रहना चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जो फैमिली है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है इनके लिए तो ये काफ़ी ट्रेजिक रहेगा अंडरस्टैंडेबली। और इस आवर पर जो इस वीक की जो सबसे बड़ी खबर थी मेरे लिए, मैंने सोचा चलो इस आवर पर इनके बारे में बात करते हैं और बात करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उनको कहीं ना कहीं याद करते हुए श्रद्धांजलि भी देते हैं।

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है जस्ट चिल। मई एक स्पेशल महीना है क्योंकि यहाँ पर मई में इस महीने मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और एक कारण है क्यों मई स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि द मंथ ऑफ मई इज़ NZ म्यूज़िक मंथ और यहाँ पर आपके लिए जितने भी हमारे लोकल टैलेंट्स हैं इनको प्रेजेंट किया जाएगा और विद अ प्रोग्राम कॉल्ड बेक्यो बैकयार्ड बीट्स। जी हाँ, जितने भी हमारे लोकल टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं आपके लिए लेकर आए हैं बेक्यो बैकयार्ड बीट्स, जहाँ पर अगर जो आपके पास में कोई ओरिजिनल ट्रैक है जिसे आपने गाया है और कंपोज किया है, तो अपने गानों को साथ में अपने बायो को buzz@humfm.com पर ज़रूर ईमेल करें। अगर जो आपको ये ईमेल आईडी टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए तो MM लिखकर 5599 पर भेजिए और यहाँ से हम आपको ईमेल आईडी भेजेंगे। जितने भी शॉर्टलिस्ट किए गए आर्टिस्ट रहेंगे इनके गानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा बाय प्लेइंग दे सॉन्ग्स ऑन एयर और इसके साथ में एक चांस रहेगा टू कोलैब विद हम ऑन आवर इंस्टा पेज। साथ ही साथ में जो हमारे लिसनर्स हैं ये भी अपना काम करेंगे, ये आपके गानों को सुनेंगे और बोथ ऑन एयर और ऑनलाइन इस पर वोट भी करेंगे। तो इन वोटिंग पर आधारित जितने भी टॉप 3 आर्टिस्ट रहेंगे इनके गानों को फिर बाद में रोवा ऐप पर भी फीचर किया जाएगा एंड टू ऑनर द टैलेंट इनको एक एक्साइटिंग हैम्पर प्राइज भी दिया जाएगा। तो ये सभी कुछ रहेगा आपके लिए और याद रहे जो विनर्स हैं ये तय होंगे विद वोट्स अक्रॉस रेडियो एंड सोशल मीडिया। तो अभी आपके पास में समय है, आप अपने टैलेंट को बैक कीजिए, पार्टिसिपेट इन बैक योर बैकयार्ड बीट्स। अगर जो आपको लगता है आप में वो बात है, आपके पास में वो फन है, वो टैलेंट है, तो आपको सिर्फ ईमेल करना है अपने ट्रिक्स को अपने बायो के साथ में buzz@humfm.com पर।

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
7: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
9: We gotta go to the boat show.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में। और आपको बता दें, एसीटी लीडर डेविड सिमो ने अभी हाल ही में ये प्रपोज किया है कि माइग्रेंट टैक्स लगाया जाए, जो कि $6 पर डे रहे टेम्प्ररी वीज़ा वालों के लिए। और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट्स है, इसको और भी स्ट्रिक्ट करने को कहा है। इनका प्रपोजल है, इलेक्शन ईयर पे जो इनका मैनिफेस्टो है, इस पर ये प्रपोज करते हुए बोल रहे थे कि जो लेवी है लगानी चाहिए टेम्प्ररी वर्क वीज़ा के लिए, $6 पर डे। और इसके साथ में और भी मुश्किल करना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट करना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो ये सभी कुछ टेम्प्ररी वर्क वीज़ा के लिए ये प्रपोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर जो आपको बताए कि अभी हाल ही में एक बस ड्राइवर को असोल्ट किया गया था, जो कि 63 इयर्स ऑफ एज के थे और ये अपने काम कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए निकले थे। और यहाँ पर एक पैसेंजर ने इनको मेसी रोड मेंगरी में करीब 8:30 AM ऑन वेंसडे मॉर्निंग असोल्ट किया, जबकि वो अपना बस फेयर नहीं देना चाह रही थी। तो टेम्प्ररी वर्क वीज़ा के लिए अगर जो आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो सुरक्षा का भी प्रबंध कहीं ना कहीं करना चाहिए। और भी बातें करेंगे इस पर थोड़ी देर में। अगर जो आपके लिए, आपके पास भी कोई टिप्पणी है इस पर, कोई ओपिनियन है, तो 5599 पर आप ज़रूर भेज सकते हैं।

हम पर अभी का साथ है और थोड़ी देर में आपके लिए ए लीग के बारे में भी कुछ अपडेट्स है हमारे हाथ में, ये भी लेकर आएंगे और आपके साथ में शेयर करते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुमार शानू को शामिल करते हैं एक बड़े ही रोमांटिक अंदाज में। और अगर जो आपको भी कुछ सुनना है अपनी तरफ से तो 5599 पर अपनी जो रिक्वेस्ट है हमारे पास में आप भेज सकते हैं।

0: आप दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: विंटर आ रहा है, सो नाउ इज द टाइम टू गेट योर होम रेडी। घर को वार्म रखना हो, लीक्स फिक्स करने हो या छोटे बड़े काम निपटाने हो, इंडोर या आउटसाइड, माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन हैज एवरीथिंग यू नीड। एक्सपर्ट एडवाइस, ग्रेट वैल्यू, ऑल इन वन विजिट। माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
2: Get the tick from Mum this Mother's Day and shop massive store-wide savings this weekend at Briscoe's. Whether it's cozy bedding or kitchen favourites, shop Mum-approved deals and massive store-wide savings at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: A legacy that built Swaraja. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar, Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
5: Your city, your music.
6: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bhajans.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Hum.
6: Thanks. Love you.
8: हम पर चलो एक नज़र देखते हैं ए लीग की दुनिया में, जहां पर ओकलैंड एफसी की कल खेल हुई मेलबर्न सिटी के खिलाफ और ये एलिमिनेशन फाइनल था जहां पर जो विनर है यही आगे सेमीफाइनल्स तक पहुंच पाती। तो यहां पर जबकि ओकलैंड एफसी के लिए 48 मिनट में इंजरी टाइम में मैंने गोल बनाया था, तो इस तरह से ओकलैंड एफसी को 1-0 से आगे कर दिया था। तो फिर मेलबर्न सिटी के खिलाड़ी ने मेमेती ने 94th मिनट में इंजरी टाइम में मेलबर्न सिटी की ओर से गोल बनाते हुए खेल को 1-0 से बराबर ठहराया। इसके बाद में पेनल्टी किक्स हुई और पेनल्टी किक्स में ओकलैंड एफसी की शानदार जीत 7-6 से हुई। तो इसी के साथ साथ ओकलैंड एफसी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल लेग वन, जो कि 9th मई को 6 बजे रहेगी अगेंस्ट एडिलेड यूनाइटेड। सो दैट इज़ द गेम फॉर नेक्स्ट वीक, जहां पर वीकेंड पर फॉलोइंग सैटरडे को ये जो मैच है रहेगा 6 बजे शाम को ओकलैंड एफसी साथ में एडिलेड यूनाइटेड के बीच में, जबकि सेमीफाइनल का ये पहला लेग है। तो यहां तक ओकलैंड एफसी पहुंच गई है और देखेंगे कि क्या आउटकम रहता है इस आने वाली अपकमिंग मैच में।

आप सुन रहे थे अदनान सामी, साथ में लेट आशा भोसले को ब्यूटिफुली संग, एक मेलोडियस नंबर, और थोड़ी देर में चार पर आपके लिए समाचार भी रहेंगे।

0: You're listening to Avineet.
1: समय की ओर नजर दौड़ाते हैं तो 4:03 हो चुके हैं और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। हमारी आवाज आप तक 104.2 FM साथ में रोवा पर आ रही है। इस आवा की शुरुआत करते हैं। अगर जो आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपका खास स्वागत है। चलो एक ब्रेन टीजा आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ इंटरेक्टिव करते हैं, आपसे भी कुछ काम करवाते हैं। तो चलो आपके लिए एक सवाल है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 in a corner, 1 in a room, 0 in a house But one in a shelter, what am I? एक बार फिर से आपके लिए, 2 in a corner, 1 in a room, 0 in a house, but 1 in a shelter, what am I? क्या आपको जवाब मालूम है? 5599 पर ज़रूर भेजिएगा हमारे साथ में, हमें आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपके नाम के साथ में ज़रूर भेजिएगा। इसमें एक सवाल है, थोड़ी तरीके से आपको इसका जवाब मिलेगा थोड़ा सोचने पर। 2 in a corner, 1 in a room, 0 in a house, but 1 in a shelter. What am I? इसका जवाब का इंतजार रहेगा। 5599 इज योर मैजिक नंबर, यहाँ पर आप अपने जवाब को भेज सकते हैं।

हम पर रवि का साथ है। जो सवाल हमने किया था आपसे, टू इन अ कोना, वन इन अ रूप, वन इन अ रूम, जीरो इन अ हाउस साथ में, बट वन इन अ शेल्टर, हम क्या है, यानी कि व्हाट एम आई? टू इन अ कोना, वन इन अ रूम, जीरो इन अ हाउस, बट वन इन अ शेल्टर। तो लोगों को आहिस्ते आहिस्ते पता लग रहा है, जिनमें तश्मे, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, आपको मालूम है और आपने जवाब भेज दिया है। इसके साथ में संजना, आपका भी जवाब आ गया है। तो देखते हैं और कितने लोगों को मालूम पड़ता है। टू इन अ कोना, वन इन अ रूम, जीरो इन अ हाउस, बट वन इन अ शेल्टर, व्हाट एम आई? हमें भी आपके जवाब का इंतजार है। बस कुछ गाने और आपको सुनवाते हैं, उसके बाद में देखेंगे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।

हाँ हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और टू इन अ कोना वन इन अ रूम जीरो इन अ हाउस बट वन इन अ शेल्टर व्हाट एम आई भैरवी आपका भी जवाब आया है सही जवाब आपने लिखा है इसके साथ में तश्मे आपका जवाब तो पहले ही आ गया था संजना आपका भी हमारे पास में पहुंच गया था इसके साथ में 2263 आपने नाम नहीं लिखा आपने बड़े ही आसान तरीके से सिर्फ लेटर आर लिखकर भेजा है तो थैंक यू सो मच 5887 आपका भी जवाब आ गया है जी हाँ सही जवाब था लेटर आर जिन्हें आप एक दो बार कोना में पाएंगे एक बार रूम में पाएंगे शब्द रूम में पाएंगे और एक एक भी बार हाउस में नहीं पाएंगे इसके साथ में शेल्टर में इसे एक बार रखा गया है तो ये लेटर आर ही था।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
6: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड।
7: Mila Outlet Store is having a huge 3-day sale. From tomorrow till Wednesday, there'll be huge savings with up to 60% off a range of Mila appliances. Your kitchen, your sanctuary. Your chance to grab a quality Mila appliance at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Mila Outlet Store's huge 3-day sale starting tomorrow and only at 880 Great South Road, Penrose. For more information, go to stillfort.co.nz.
8: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
9: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
10: And award goes to Indelible Homes.
9: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
11: Kahani of Indelible Homes.
12: Pacific Electrical Services presents Javed Ali, live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8 May, 7 p.m. onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliancentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
13: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
14: हम पर रवि का साथ है और कम्युनिटी न्यूज में फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद ASAP प्रॉपर्टी फाइनेंस स्पेशलिस्ट के साथ में मिलकर लेकर आ रहे हैं 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे एंड इवनिंग ऑफ रिमेम्बरेंस साथ में रिकॉग्निशन। ये सभी कुछ रहेगा सैटरडे 16th मई को और मलायोला कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर ही आपको जाना है 16 वाकोरी प्लेस मैंगरी ओकलैंड में। यहाँ पर 4:30 PM से लेकर 8:30 PM तक जो इवेंट है रहेगा। डोर्स खुलेंगे शाम 4 पर और इसके साथ में नेटवर्किंग करने का मौका। टीज एंड स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड एट शार्प 4:30। फ्री एंट्री है, यानी कि जितने भी लोग हम आप जानते हैं गिरमिट की अहमियत को, तो एक ऐसा मौका 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, यहाँ पर आप जा सकते हैं। याद रहे 16 मई को मलायोला कम्युनिटी सेंटर पर 16 वाकोरी प्लेस मैंगरी ओकलैंड पर ओकलैंड में ये रहेगा। फ्री एंट्री है, यहाँ पर ढेर सारे अमेजिंग परफॉर्मेंसेज रहेंगे, साथ में स्पीचेज रहेंगे गिरमिट से लेकर। इसके बारे में और जानकारी आप चाहते तो ईमेल करें fijigirmitnz@gmail.com पर।

अगला जो गाना है हम पर आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये फिल्म तेरे दर पर सनम, ये जो गीत है तेरे दर पर सनम फिर तेरी कहानी याद आई, इसे हमने लिया है। और इस फिल्म के साथ में अनु मलिक को एक बार फिर नया लीज मिला था ऑफ लाइफ इन बॉलीवुड, जबकि काफ़ी दिनों तक इनके पास में कुछ अच्छे फिल्म नहीं मिल रहे थे और इन्हीं गानों के साथ में वो वापस फिर चर्चे में आ गए थे। लेकिन इस वीक राहुल रॉय को काफ़ी ट्रोल किया गया, जबकि अपने ही फिल्म के गाने को इन्होंने रील पर रिक्रिएट किया और बचाव में उन्होंने यही कहा है कि काम है भाई, काम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लेकिन जो भी हो, जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं एकदम बेहतर गाना है इस आज के दिन इसे सुनने को, और यही गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
3: मिसेस सिंह,
4: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
6: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
7: Your city, your music.
8: Hey! This is a cool neighborhood! Stop playing bajans!
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
8: Thanks! Love you!
10: On the airwaves of Hum, I'm Avi, and it's 14 away from 5.

हम पर आप सुन रहे थे शुभ मुद्गल को, और लाइफ चैलेंजेस पर किसी ने कहा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और समय की ओर देखते तो 5 बज रहे हैं फाइनल आवर ऑफ द शो और इसी तरह से इस आवर पर भी आपका एंटरटेनमेंट कराते रहेंगे.

आप सुन रहे जस्ट चिल ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। तो ऐसे में चलो आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की दुनिया से कुछ गपशप, जहां पर अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है। और जी हां, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रितेश देशमुख ने, जिसका नाम है राजा शिवाजी। एक ऐसी फिल्म जहां पर क्रिटिक्स ने भी काफ़ी पसंद किया है इस फिल्म को, 4 स्टार तक रेटिंग मिले हैं। और इसके अलावा अगर जो बॉक्स ऑफिस पर देखें तो बॉक्स ऑफिस की दुनिया में भी काफ़ी अच्छा कर रही है, कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे हैं राजा शिवाजी के। और ऐसे में आप भी अगर जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ न्यूजीलैंड में आप अपने नज़दीकी सिनेमाज में इसे ज़रूर देख पाएंगे, जहाँ पर रितेश देशमुख साथ में जिनेलिया डिसूजा रियल लाइफ कपल रील पर भी नज़र आएंगे साथ में। और इनके अलावा फिल्म में आप सलमान खान को एक केमियो में देख पाएंगे, और इनके साथ में अभिषेक बच्चन जैसे और भी कलाकार हैं। तो राजा शिवाजी एक ऐसी फिल्म जो कि आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में चल रही है, अगर जो आप भी इसे देखना चाहते हैं।

0: मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या हिल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा?
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
4: Mrs. Singh।
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex aur ye hai meri guest, Sarah.
12: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स।
11: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
12: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी।
11: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
13: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
14: अ लेगेसी दैट बिल्ड्स स्वराज्य। A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
15: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar, Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
14: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment, rating TBC.
16: मेनिकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज ला रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो इफ पापाटोईटोई में, जिसमें कलाकार रहेंगे फिजी के नितिन निलेश प्रकाश और न्यूजीलैंड के दवेन नाथ। दो पहुंचे हुए कलाकारों को एक साथ देखने का अनोखा मौका। टिकट सिर्फ $20 है। तैयार हो जाइए भक्ति कीर्तन संध्या के लिए फ्राइडे 8 मई को रात 7 बजे से वैदिक सेंटर पापाटोईटोई में।
17: You're listening to Avineet.
18: On the waves of hum, मैं हूँ आपका साथी अभी। और अगर जो आप ब्रेकफास्ट प्रोग्राम को मिस कर देते हैं तो डरने की कोई बात नहीं। आपको सिर्फ BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करना होगा और यहाँ से आपको पूरा का पूरा जो शो एपिसोड है ये मिल जाएगा। याद रहे, विजय और पूजा काफ़ी ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ी होती है, हमारी मुश्किलों से जुड़ी होती है और इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस भी वो लेकर आते हैं। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा BF और 5599। इसके साथ में अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, जहां पर सेंडी और रुजबे भी ऐसे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन वो लेकर ढूंढ कर लेकर आते हैं, कोई ना कोई गेस्ट को ढूंढ कर लेकर आते हैं जो इन पर बातें कर सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने शायद ध्यान दिया होगा कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ADHD पर बात किया, साथ में बॉडी लैंग्वेज पर भी बात किया है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो ढूंढ कर लेकर आते हैं। इनके लिए आप ड्राइव टेक्स्ट कीजिए 5599 पर और आपको यहाँ से एक लिंक मिलेगा जिसके द्वारा आप इनका पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है ये देख सुन सकते हैं। तो 5599 पर ही आपको मैसेज करना है।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। अक्सर लोग कहा करते हैं जो आपके दिल में होती है वही आपकी जुबां बोलती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी जो जुबां है ये आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप लोगों से बात करते तो मीठा ही बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सामने से ये जान जाएंगे कि जो आपके दिल में है वही आपकी ज़ुबान बोल रही है। और फिर पर्सनली हम भी यही चाहेंगे कि हम किसी को किसी तरह से अपने शब्दों से कोई चोट या फिर ठेस ना पहुंचाएं। तो याद रखिएगा, जो दिल में है जुबा वही अक्सर बोलती है।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था और इसी मोड पर आपको छोड़े जा रहे हैं, जबकि 12 बजे से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इवनिंग को बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियां बिखेरते रहिएगा। और जबकि कल से एक नया वीक शुरू होने जा रहा है, इसके लिए भी आपको बेस्ट विशेज दिए जा रहे हैं। जो भी हो हंसते रहिए, और आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। यस, यू हैव टू डू टेक केयर, सो डू टेक केयर। और आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

चलती रहे, टेंशन बिल्कुल नहीं। ऑकलैंड का ट्रस्टेड नाम RPS टायर्स, कार, SUV, ट्रक या फोकलिफ्ट, हर व्हीकल के लिए टॉप क्वालिटी टायर्स, पार्ट्स एंड टूल्स, डायरेक्ट इंपोर्टर्स ऑफ रोड वन एंड अदर क्वालिटी टायर्स विद अ सॉलिड प्राइस बीट गारंटी। 4x26 ईस्ट तमाकी रोड, पापा टोटोए, प्लस 24 आवर मोबाइल सर्विस। फॉर बल्क ऑर्डर्स कॉल रॉन ऑन 0221753941 और विजिट rpstires.co.nz और देयर फेसबुक पेज RPS टायर्स। ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट।

0: बारिश की बूंदें भले ही आकार और साइज में छोटी हो, शेप एंड साइज में छोटी हो, लेकिन उनका लगातार गिरना मधुमक्खियों को खुश कर देता है। इसी तरह से आप याद रखें कि छोटी छोटी लगातार कोशिशें जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। ट्रस्ट इन द प्रोसेस और अपनी जो मेहनत है ये करते रहिए। शायद कोई इसको नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन आपकी नज़रों में अगर आप छोटी छोटी मेहनत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। इसी के साथ में मैं जिकाश आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ ऑन संडे नाइट मेलोडीज। आज है 3 तारीख में एंड काफ़ी दिनों के बाद में इस प्रोग्राम में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। अ वेरी स्पेशल प्लेस ये प्रोग्राम रखता है इन माई हार्ट, क्योंकि सुकून से आराम से आपसे बातें होती हैं। हम कुछ अपनी बताते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाते हैं और एक से एक बढ़कर आपके पसंदीदा गीत आपको हम सुनाते चलते हैं राइट टिल मिडनाइट। तो आइए इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए आप भी तैयार हो जाए। अभी से लेकर रात 12 तक मैं जिकाश आपका हम सफ़र बनकर सनडे नाइट मेलोडीज़ में आपका साथ देने वाला हूँ ऑन 104.2 FM एंड ऑन रोवर। दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप सभी को मेरा नमस्कार पहुँचे। आई होप आपका ये वीक बहुत ही अच्छा गया है और कोशिश आपने की है, मेहनत आपने की है, शायद कुछ थके हुए हैं तो आराम फरमाएं और ज़िंदगी की लड़ाई में एक और बेहतर योद्धा बनकर आप दोबारा कल सुबह मैदान में उतर जाएं। आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को विद विशाल दादलानी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। क्योरा, नमस्कार।
1: तो फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
2: राइट।
1: कूल। वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
2: नदी जमें जते।
1: नदी जमें जते। आह, सो सेक्सी।

कार्यक्रम में सबसे पहले आज कम्युनिटी न्यूज की ओर नजर डालते हैं एंड 8th ऑफ मई को मनुकाउ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद बीएसबी भक्ति सत्संग बॉयज द्वारा भक्ति कीर्तन संध्या की आयोजना की गई है। टिकट्स $20 है। 8th मई को ये प्रोग्राम होने वाला है जहां पर दवेन नाथ फ्रॉम बीएसबी एंड नितिन नीलेश फ्रॉम फिजी ये आने वाले हैं टू परफॉर्म फ्रॉम 7 PM अंटिल 12 AM एट वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोटोए ऑकलैंड में। जेएस फ्रेश मार्ट से आप टिकट्स ले सकते हैं और मेक श्योर यू नोट द डेट। बहुत ही बढ़िया कीर्तन का कार्यक्रम होने वाला है ऑन द 8th ऑफ मई वैदिक सेंटर पर। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर देवास्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भोजन मेला ये आयोजन किया गया है फूड कार्निवल संडे 17th ऑफ मई को दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में एट 378 आरवा रिमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में। आई विल ट्राई टू बी देयर क्योंकि एक बहुत ही अच्छे पर्पज़ के लिए इस भोजन मेला की आयोजना की गई है। दिस इज टू सपोर्ट दी लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको फ्री एंट्री मिलने वाली है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्री फूड बाय शिवानीज रेस्टोरेंट, इडली सांभर का मज़ा आप ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगने वाले हैं ज्वेलरी के, क्लोदिंग के, हेना आर्टिस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे टू मेक प्यारी प्यारी मेहंदी ऑन योर हैंड्स, फेस पेंटिंग फॉर किड्स और बाउंसी कंसल भी रहेगा। इसके लिए आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं या फिर स्टॉल्स अपने खुद के लगा सकते हैं। टू डू दैट आपको कॉल करना है शिवानी अरोड़ा को ऑन 02187-0012 या फिर शांति रवि को आप कॉल करें ऑन 02129463394 पर। गिरमिट 14th May 1879 वॉज द डेट जहां पर फर्स्ट इंडेंचर्ड लेबरर्स केम टू फिजी फ्रॉम इंडिया। नाउ टू कमेमोरेट दैट डे 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे इसकी आयोजना की गई है ऑन द 16th ऑफ मई शनिवार को मलयोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाखोरी प्लेस मांगरे ऑकलैंड में शाम 4:30 PM से लेकर 8:30 PM के बीच में ये रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा जहां पर कैंडल कमेमोरेशन, आर्टिफैक्ट डिस्प्ले, सीनियर्स रिकॉग्निशन अवार्ड प्लस कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड लाइव सिंगिंग भी रहने वाला है विथ रोल प्ले, क्विजेज, स्पोर्ट प्राइजेज एंड स्पीचेज एंड मोर। तो अगर आप इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट यू कैन ईमेल fijigirmitnz@gmail.com या फिर जस्ट टर्न अप ऑन द डे दैट इज 16th ऑफ मई एट 16 वाउखोरी प्लेस मांगरे ऑकलैंड में फॉर द 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे।

वेलकम बैक टू हम, जहां पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूं। मैं क्या है, मैं है एनजेड म्यूजिक मंथ हियर इन न्यूजीलैंड। और यहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं स्पेशली इन दिस मंथ आवर होम ग्राउन आर्टिस्ट, आवर होम ग्राउन टैलेंट्स। एंड आप सोचते हैं कि आपके एक ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, ही हैज़ डन और शी हैज़ डन हर रिकॉर्डिंग, और ये लोगों को सुनना ही चाहिए, तो गेट इन टच विद अस। ऑफकोर्स उनके परमिशन के साथ let her talk to us by sending their recording to buzz@humfm.com and we will get their voice on air, ताकि दुनिया के कोने कोने में उनके हुनर को हम प्रमोट कर सकें। तो buzz@humfm.com is the platform, is the email address जहाँ पर recording आपको भेजनी है अपनी या अपने band की, ताकि we can promote you on air and celebrate Enzen Music Month together right here on 104.2 FM and Rover के जरिए दुनिया के कोने कोने तक हम आपकी आवाज, आपके हुनर, आपके आर्ट को पहुंचा सकते हैं। तो get in touch with us and we might just make you the biggest star in New Zealand, who knows।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स हम पर आपके साथ हैं जिकाश
2: आज संडे है एंड द नेक्स्ट संडे इज गोना बी वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन क्योंकि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं द हार्ड वर्क द लव दैट आवर मदर्स हैव गिवन टू अस तो आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं लेट अस नो और आपको सेलिब्रेट करने के लिए आपकी मॉम को सेलिब्रेट करने के लिए उनके लिए तोहफे लाने के लिए हम आपको मदद पहुंचाना चाहते हैं द फर्स्ट वन इज़ आप जाए हमारे फेसबुक पेज पर एंड आपको आपके पास अभी से लेकर फ्राइडे तक के लिए टाइम है टू डिज़ाइन ए कार्ड डिज़ाइन अ वाउचर फॉर योर मम एंड पुट इनटू दैट वाउचर एवरीथिंग दैट योर मम डिजर्व्स चाहे वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो चाहे वी कैन गेट अवे टू हर फेवरेट डेस्टिनेशन चाहे इट कुड बी क्वालिटी टाइम विद द फैमिली या फिर शी नीड्स अ वेल नीडेड मसाज फॉर हरसेल्फ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वो कर रही हैं जो भी आप सोचते हैं कि आपको मम को आपके मम को अच्छा लगेगा पुट दैट इन दैट वाउचर प्यारा सा वाउचर विद प्यारे प्यारे मैसेज आप डिज़ाइन कीजिए फॉर योर मम एंड अपलोड दैट डिज़ाइन टू आवर हम फेसबुक पेज हमारे हम फेसबुक पेज पर मदर्स डे वाउचर का एक पिन सेक्शन आपको मिलेगा वहाँ पर आप उस वाउचर के फ़ोटो को डालें विथ योर फैमिली मेम्बर्स टैग करें उन सभी को जितने को आप टैग कर सकते हैं जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उस वाउचर्स पर उतने ही ज़्यादा चांसेस आपको मिलेंगे टू गेट इनटू द ड्रॉ टू विन $200 ऑन 8th ऑफ मे ड्राइव शो में ये ड्रॉ होने वाला है तो गेट डिज़ाइनिंग नाउ Put your heart into it, put your creativity into it, and we'll see which voucher gets the $200 from our team.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
2: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go.
3: Hey, welcome back to Sunday Night Melodies. मैं हूँ जिकाश एंड मेरी प्रोग्राम को अगर आप फॉलो करते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं। जैसे कि आज है 3rd of May। क्यों इम्पोर्टेंट है आज के दिन? क्योंकि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जा रहा है अंडर द यूनाइटेड नेशंस कैलेंडर। इसके बारे में बातें करेंगे इन अ बिट ऑफ डेप्थ इन द नेक्स्ट आवर, तो जुड़े रहे हमारे साथ में।

3rd of May hai aaj, and aaj is a very important day for people in press. Now, media aur press, isko aap kis tarah se dekhte hain, ye aap par aadharit hai. Lekin, shaping a future at peace by fostering access to reliable information, accountability, dialogue and trust, press freedom and independent journalism are key to peace, economic recovery, sustainable development and human rights. क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड में मीडिया हैज़ फ्रीडम कि वो जो सच है उसको प्रिंट कर सके? द कंट्री दैट यू आर फ्रॉम, चाहे वो फिजी हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, डू यू थिंक योर कंट्री बैक होम हैज़ गिवन राइट टू प्रेस, टू मीडिया, टू यू नो जस्ट प्रिंट आउट द ट्रूथ, जो सही है वो प्रिंट करने की आज़ादी इनको है, या फिर दे आर रिस्ट्रिक्शंस? अकॉर्डिंग टू यूनेस्कोज वर्ल्ड ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022-2025, प्रेस फ्रीडम हैज़ एक्सपीरियंस्ड इट्स स्टीपेस्ट डिक्लाइन सिंस 2012. दिस डिक्लाइन इज कंपेरेबल टू दैट सीन ड्यूरिंग द मोस्ट अनस्टेबल पीरियड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, द टू वर्ल्ड वॉर्स एंड द कोल्ड वॉर. Information manipulation, including the use of AI by malicious actors, is weakening trust and national security. At the same time, independent media face growing economic fragility. Self-censorship has grown by more than 60%, driven by fear of reprisals, online harassment, judicial intimidation, and economic pressure. I think we all can agree to this key. मीडिया में जो चीज़ें आपको दिखाई जाती है, दे आर सेंसर. एक तो ये डर होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स माइट इंटरफियर, फाइंस पड़ेंगे, या फिर लोग हैरेस करने लगेंगे, एंड ऑफ कोर्स द फियर ऑफ थ्रेट्स, ये आम बात है. तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि आज ऑब्जर्व किया जा रहा है 3rd of May, It offers a critical moment to reaffirm freedom of expression and to align journalism, technology, and human rights actors around practical ways to strengthen information ecosystems for the future. Lusaka, Zambia mein World Press Freedom Day 2026 ko host kiya gaya, and this brings together press freedom advocates and digital rights communities at a time when the boundaries between journalism, technology, civic space and human rights are increasingly intertwined. इस पर एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो है, Discover the Feelings of UNESCO's World Trends in Freedom of Expression. इसे आप चेकआउट कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट un.org.

Hey Bula, welcome back to Sunday Night Melodies. मैं हूँ जिकाश, आप मेरे साथ इस कार्यक्रम को enjoy कर रहे हैं. काफी दिनों बाद आपसे हम मुखातिब हुए हैं in Sunday Night Melodies. And did you miss me? Well, I missed the program, और thankfully I'm back on Sunday nights. Code Club. Now there are a few coaching centers जो pop up हो रहे हैं all around New Zealand, and thanks to immigration, brain capacity या फिर smartness smart people in New Zealand, ye ab zyada ho rahe hain with more opportunities for our kids to learn and excel even more thanks to these coaching centers, jahan jaakar aap bhi fayda utha sakte hain and get your kids ahead in their academic performance. Now Code Club, ye kya hai? I think nowadays digitally smart hona bahut hi zaruri hai, and Code Club is a program jahan par bahut hi fun aur creative program create kiya gaya hai for children aged 6 years and over who are interested in learning how to code. Free classes hai, and this happens at the Albany Village Library. Every Saturday ko hota hai. This has started from yesterday, 2nd May, and every Saturday को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं एट अल्बनी विलेज लाइब्रेरी, जहां पर थ्रू गेम्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पार्टिसिपेंट्स विल एक्सप्लोर द बेसिक्स ऑफ कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिजिटल क्रिएटिविटी इन अ सपोर्टिव एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट. तो मेक श्योर इफ यू आर अराउंड अल्बनी, मेक यूज ऑफ दिस ऑसम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फ्री है भाई, कोई कोचिंग क्लास के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं.

सन्डे नाइट मेलोडीज का मजा आप ले रहे हैं एंड रोवा रोवा के बारे में आपको हम हमेशा बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि क्यों आपको रोवा डाउनलोड करना इम्पोर्टेंट है एंड आई विल गिव यू टू मोर रीजंस फॉर इट राइट नाउ. एक है रोवा पर अभी एक खेल खेल सकते हैं आप जिसका नाम है चिडल. चिडल क्या है? वेल, अगर आप न्यूजीलैंड में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं तो यहाँ के कीवी स्लैंग्स कीवी बोर्ड ये आप जानते होंगे. तो यहाँ पर एक कीवी बोर्ड पज़ल है जिसमें आप टेस्ट आउट कर सकते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से न्यूजीलैंड को जानते हैं एंड फटाफट क्वेश्चंस के जवाब देकर आप ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं जहाँ पर $100 एवरी डे आप जीत सकते हैं. एवरी डे $7,000 जीतने को है. दैट मीन्स ओवर 70 डेज ये कंपटीशन चलता रहेगा. तो 70 डेज के लिए हम लकी विजेताओं को $100 देना चाहते हैं एंड इफ यू वांट दैट रोवा इज द प्लेस यू हैव टू गो. चेडल इज द गेम दैट यू हैव टू चेक आउट. दैट्स वन. नंबर टू इज हम आपको फिजी भेजना चाहते हैं विथ ऑल एयरफेयर एक्सपेंसेस पेड. मैं प्लान कर रहा हूँ अ ट्रिप इन जून एंड लुकिंग एट द फेयर्स इधर से जाने के लिए आई विल बी पेइंग अराउंड $400. दैट्स फ्लाइंग इकोनॉमी. फिजी से लौटने के लिए ऑन द डेट्स दैट आई वांट आई एम पेइंग अराउंड $1,000. सो ऑल अप $1,400 फॉर मी टू गो टू फिजी एंड कम बैक एंड दैट्स फ्लाइंग इकोनॉमी नॉट इवन बिजनेस क्लास एंड आई एम नॉट किडिंग. चेक इट आउट. तो इतने ज़्यादा पैसे आपको बचाने हैं बाय ट्रेवलिंग टू फिजी. आपको हम फ्लाई अवे फ्रेंजी कॉम्पिटिशन में शामिल होना है एंड दिस इज ऑन रोवा एज वेल. आपको हमें सुनना है एवरी वीकडे सुबह 8 सुबह 11 दिन में 1 और शाम 5 बजे. हम आपको कोड वर्ड्स देने वाले हैं. उस कोड वर्ड को आप सुने 60 मिनट्स आपके पास रहेगा. जैसे ही आप कोड वर्ड को पा जाते हैं हेड ऑन टू रोवा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी में वो कोड वर्ड को आप डालें एंड यू विल गेट इन द ड्रॉ जहां पर रिटर्न एयर टिकट टू फिजी हम आपको देने वाले हैं. और अभी ठंड बढ़ने लगी है तो व्हाट बेटर वे ऑफ स्पेंडिंग अ टाइम इन फिजी देन हैविंग योर एयरफेयर एक्सपेंसेस पेड. नाउ टीज एंड सीज डू अप्लाई. डू चेक इट आउट ऑन रोवा ऐप और फिर बाद में मुझे नहीं बोलिएगा कि भाई हमने आपको बताया नहीं. गो एंड चेक इट आउट. डाउनलोड नहीं किया है रोवा लिखकर भेजिए हमारे पास 5599 पर. अभी आपको हम लिंक भेजेंगे.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
2: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai. Wow.
0: Dil se, dil se, dil tak.
6: Hey Kira, welcome back to Sunday Night Melodies. मैं हूं जिकाश, आपका साथ दे रहा हूं. I hope you are having a lovely night. आपका जो वीक गया है, it was very productive. अगर आपने जैसा सोचा था ऐसा वैसा हुआ नहीं है. The results that you were looking for did not happen. Well, you've got another week ahead, जिसमें आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं. शायद जो प्लान आपने बनाया था उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, अपना टैक्टिक्स एडजस्ट करें, अप्रोच एडजस्ट करें, एंड यू माइट जस्ट एंड अप विद द रिज़ल्ट दैट यू वांट. क्योंकि अगर रिज़ल्ट आपके मुताबिक से नहीं आता है तो जो कोशिश आप कर रहे हैं उसी तरह की कोशिश करने से आपको रिज़ल्ट दूसरा नहीं मिलने वाला है. तो अगर आप टेक्निक्स चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट आपके आपके फेवर में आ सकता है. सोचिएगा इसके बारे में और इस घंटे को आप एंजॉय कीजिएगा. न्यूजीलैंड म्यूज़िक मंथ, विच इज़ द मंथ ऑफ मई, इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे. कुछ जगहों पर न्यूजीलैंड म्यूज़िक मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए फ्री कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फ्री एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जहाँ पर आप हमारे होम ग्रोन आर्टिस्ट को एंजॉय कर सकते हैं विथ 100% लाइनअप ऑफ आवर टॉप डीजेस. तो कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए बस यूं ही हमारे साथ में शामिल रहे. विल शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑन दिस आवर राइट हियर ऑन हम. एंजॉय.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: मन फूला फूला मेरे जगत में कैसा लाता रे।
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें।
3: Do you need a new washing machine, dryer, fridge or dishwasher? Then don't miss this. Big Saves having a massive whiteware washout today. We've got New Zealand's best value whiteware deals, like get a Panasonic 6kg washing machine only $3.98 or a Samsung 236-litre fridge now only $7.99. Plus, we have stock. Take them home today, only at Big Save.
4: Now, there's a lot of negativity in the community regarding the free trade agreement with India. और बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, इसके बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, बस जो मंद बुद्धि वाले लोग अनाप शनाप बकते हैं, आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर रहे हैं। Now, for your own good and to make sure कि you don't sound like a fool when you talk about this trade agreement with India, आप अपना रिसर्च खुद करें, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ गेन्स जो न्यूजीलैंड बिजनेसेस को होने वाले हैं। देर आर लॉट ऑफ टैरिफ्स, एक और यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ्स लगाए थे इधर न्यूजीलैंड की कंपनीज पर, दूसरी ओर 1.5 बिलियन वाली आबादी वाली जो कंट्री है, इट हैज़ ओपन इट्स डोर्स फॉर अस टू ट्रेड विद देम एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस फॉर पीपल हियर इन न्यूजीलैंड। तो दिस अग्रीमेंट जो न्यूजीलैंड और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, हैव अ रीड अबाउट दिस और तभी आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी करें, अपना माइंड में करें, ना कि बस दो चार लोग जो बोल रहे हैं आंखें बंद कर उस पर विश्वास कर ले और फिर एम्प्टी वेसल की तरह बजना शुरू कर दे। तो मेक श्योर यू डू योर रिसर्च, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे नॉलेजबल।

0: You're listening to Chikash.
1: पर्यावरण के बारे में चिंता करना, टू बी कंसर्न्ड अबाउट आवर एनवायरनमेंट, सभी लोग ये करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बहुत इजी है कहना कि अरे वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट जमा हुआ है, अरे काउंसिल कुछ कर नहीं रही है, अरे यहाँ पर ये करना चाहिए, ये होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को और भी सहायता प्रदान की जा सके। भाई आप क्या कर रहे हैं? हैव यू गोन आउट ऑफ योर वे टू पिक अप रबिश फ्रॉम बीचेस एंड डिस्पोज दैट? नॉट टॉकिंग अबाउट योर ऑन रबिश, अगर आपने देखा है कि कुछ मैल इत्यादि इधर पड़ा हुआ है, हैव यू गोन आउट ऑफ योर वे पिक दैट अप एंड पुट इट इन द बीन? हैव यू डन दैट? यस, वेल कूडोज। इफ नो तो भाई बस मुंह बजाने से कुछ नहीं होगा। एंड इफ यू रियली वांट टू हेल्प तो टीम अप टू क्लीन, ये एक एक्शन टीम है। दिस इज रन बाय द अर्थ एक्शन ट्रस्ट एज पार्ट ऑफ the Auckland Council's flagship anti-litter campaign. This is a fantastic way to get out of the same old routine, meet new people, exchange ideas to spark new ones, get light exercise, make a difference to your community and the environment. Aapka theek thaak exercise bhi ho jayega, naye logon se milenge, ideas share karenge aur environment ko clean up karne ka kaam bhi ho jayega. अगर आप इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, दिस इज़ हैपनिंग ऑन द 28th ऑफ जून, दिन में 8 से 12 बजे के बीच, चैपमैन रोड 11 चैपमैन रोड तेयाथुथुरु पेनिनसुला में। उससे पहले कल एक हुआ है और द नेक्स्ट वन इज़ हैपनिंग ऑन संडे 17th में, महूहू की तिरंगी पार्क, दैट इज़ एट महूहू क्रेसेंट ऑकलैंड सिटी सेंटर में, संडे 17th मई 2026 सुबह 10 से 12 बजे के बीच। गेट along with other like-minded people, weather forecast आप check कर ले and weather के accordingly अपना कपड़ा आप पहने, long sleeve, अभी तो ठंड पड़ने वाली है तो two set of clothes ये बहुत important है। और आपको register करना होगा, by registering for the event you acknowledge that you are physically fit for outdoor walk for 2 hours. ऐसा ना हो कि आप बस यहाँ चले जाए and you end up getting sick और फिर चार लोगों को आपको देखना पड़े। तो मेक श्योर यू आर फिट इनफ, मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर द इवेंट एंड देन यू गो एंड टेक पार्ट। इफ़ यू हैव एलर्जीज और मेडिकल कंडीशंस, कैरी एनी नेसेसरी मेडिकेशन एंड यू शुड ऑल्सो इन्फॉर्म द इवेंट लीड इफ रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड स्टे होम इफ यू आर सिक। तो कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं? यू कैन लुक अप अर्थ एक्शन ट्रस्ट या फिर यू कैन कॉन्टेक्ट दिलिनी यापा, देर इज T2C coordinator at earthactiontrust.org.nz, या फिर यू कैन कॉल ऑन 0284704275। humanitics.com इज द वेबसाइट जहां पर जाकर आप इसके लिए बुकिंग्स कर सकते हैं।

0: डोंट लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए, तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Hum Fiji Kirtan Sangrah ki apaar safalta ke baad bhajan premiyon ke liye pesh hai Hum Fiji Bhajans. प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
3: फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
1: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट K33।

Mother's Day bilkul kareeb aata ja raha hai and mom's mood swings. This is something that we do on air, lekin aaj mere paas, I don't think I have enough time to get this on. To bhai, aisa karte hain, aap ke liye bas, aap mom likhkar bheje 5599 par and the first three people who send that to me, आपके नामों को हम ड्रो में शामिल करने वाले हैं, जहां पर फर्स्ट प्राइज $300, सेकंड प्राइज $200, थर्ड प्राइज $100 आप जीत सकते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो ऑन फ्राइडे 8th ऑफ मई. तो मम लिखकर, अपना नाम लिखकर भेजे 5599 पर अभी एंड द फर्स्ट थ्री मैसेजेस दैट आई गेट, आपको हम ड्रो में शामिल करेंगे. जल्द से आप भेजे. वैसे मम्स मूड स्विंग्स ये है क्या, हम आपको एक सिचुएशन देते हैं एंड उस सिचुएशन में आपकी मम क्या करने वाली है, क्या आपको मार पड़ने वाली है क्योंकि आपने अपनी मम को अपसेट किया है, या फिर आपकी मम इज़ गोना लाफ इट ऑफ क्योंकि शी लव्स मोर देन शी हेट्स द सिचुएशन. तो या आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ पुटिंग दिस. दिस इज अ लाइव ऑन एयर गेम जिसको दोबारा कल सुबह खेला जाएगा विद आवर ब्रेकफास्ट टीम एज वेल. तो मेक श्योर कीप हमिंग, कीप लिसनिंग, क्योंकि थ्री विनर्स $300, $200 and $100 दिस इज बींग ड्रोन ऑन द 8th ऑफ मे विद आवर लवली ब्रेकफास्ट टीम दैट इज विद विजय एंड पूजा.

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या हिल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, PFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds. Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम

0: बहुत नई नई चीज़ें हम यहाँ से ट्राई आउट कर रहे हैं एंड अ फ्रेश अपडेट हमने किया है हमारे प्रोग्राम्स में। और इस घंटे पर शायरी के साथ में गज़ल हम आपके साथ में एंजॉय करने वाले हैं। समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड राइट फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो। गज़ल वाज अ प्रोग्राम जो मैं होस्ट करना पसंद करता था और इसके लिए मेहनत भी बहुत मैं करता था। तो आइए इस घंटे को विल डेडिकेट टू द लेजेंडरी गज़ल आर्टिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विल स्टार्ट ऑफ विद आशा भोसले जी एंड जगजीत सिंह जी। आशा भोसले अभी हाल ही में इनका बिछड़ा हमसे हुआ है एंड जगजीत सिंह वेल ही वाज समवन हु एक्चुअली जिनको सुनकर लोगों ने गज़ल गाना शुरू किया था। तो आइए उन दोनों की आवाज़ में इस गज़ल के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं ऑन दिस आवर ये एट हम बिटवीन 9 and 10। कहते हैं कि यहाँ से बस आज ले जाए मुझे कोई, जहाँ तू है सिर्फ तू है, ना कोई दर्द देता वादा हो, ना खेल खिलाती किस्मत हो, ना कोई समझ हो, ना कोई मजबूरी हो, हो तो बस ये खामोशी ढलती हुई तेरी मेरी तेज़ धड़कनों में। यहाँ से बस आज ले जाए मुझे कोई, छोड़ने वाला भी तू था, आज ले जाने वाला भी वो कोई तू हो, सिर्फ तू हो।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

Sunday night melodies mein aapke liye ghazal hum pesh kar rahe hain is ghante mein, and the next one is by the late Pankaj Udhas ji. Now people mispronounce his name as Pankaj Udhas, and Udhas kehte hain ki ye seth the isliye ghazal gaate the. Nahi, Pankaj Udhas, Udhas, inka surname hai, and inka bichhav हमारे बीच से हुआ 26 फरवरी 2024 में. 2 साल करीबन हो गए हैं इनको हमारे बीच से जाए हुए. ये एक इंडियन गज़ल एंड प्लेबैक सिंगर थे. इनको काफ़ी बार कई मूवीज़ में भी हमने परफॉर्म करते हुए देखा है ऑन स्टेज शोज, और एक बहुत ही जिंदा दिली ऑन स्क्रीन लेकर आते थे जब ये सिल्वर स्क्रीन के लिए रिकॉर्ड करते थे. बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया गीत इन्होंने गाए हैं. लुकअप इनके गीतों को, और सॉन्ग जैसे कि है चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, दिस वॉज संग बाय पंकज उदास. और पंकज उदास के बड़े भाई थे मनहर उदास. ही वॉज ऑल्सो अ स्टेज परफॉर्मर हु एडेड पंकज इन हिज इंट्रोडक्शन टू म्यूजिकल परफॉर्मेंस. इनका पहला स्टेज परफॉर्मेंस वॉज ड्यूरिंग दी सीनो इंडियन वो, वेन ही सेंग ए मेरे वतन के लोगो एंड वॉज गिवन 51 rupees बाय एन ऑडियंस मेम्बर एज अ रिवॉर्ड. सोचिए, एक छोटी रकम इनको मिली थी, 51 rupees ओनली, बहुत सालों पहले. और फिर देट वॉज हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस, और फिर वहाँ से करोड़ों लोगों के दिलों में इन्होंने अपना घर बनाया है. तो आइए सेलिब्रेट करते हैं द वॉइस ऑफ पंकज उदास.

सन्डे नाइट मेलोडीज में गजलों की बारिश हो रही है ऑन दिस आवर बिटवीन 9 एंड 10। मैं हूं जिकाश, आपके साथ मैं भी इस घंटे को उतना ही इंजॉय कर रहा हूं। अगला जो ट्रैक है, नाउ दिस कॉम्बिनेशन वाज वन ऑफ द लवलीस्ट कॉम्बिनेशन जो हो सकता है इन गजल। दिस इज नन अदर देन जगजीत सिंह एंड चित्रा, एंड दिस नेक्स्ट गजल वाज फीचर्ड इन द मूवी साथ साथ। 1982 में ये मूवी आई थी। सिंगर्स थे जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। जावेद अख्तर का लिरिक्स है एंड कुलदीप सिंह ने इस गाने को म्यूजिक दिया था। तो आइए उस गज़ल को एंजॉय करते हैं, और इस गज़ल से मिलता जुलता एक पोएट्री मेरे हाथ लगा है, तो आइए इसका भी मज़ा लेते हैं। तेरी छवि तुझसे तुझे अप्सरा कहूँ या कहूँ परी, न जाने कौन सा जादू है तुझ में कि हर बार तेरा चेहरा देख मैं होश खो बैठता हूँ, कि हर बार तेरी आँखों की गहराइयों में डूब जाता हूँ, कि हर बार तेरे होठों की मुस्कान देख खुद मुस्कुरा देता हूँ। कोशिश तो बहुत की मैंने तुमसे नज़र चुराने की, कोशिश तो बहुत की मैंने तुझसे दूर जाने की, तुझे भूल जाने की, लेकिन हर बार असफल हूँ। जितना दूर जाता हूँ उतना ही तेरे करीब आ जाता हूँ। न जाने कौन सा जादू है तुझ में जो हर बार मैं इस खूबसूरती का गुलाम बन जाता हूँ, इस खूबसूरती का गुलाम बन जाता हूँ।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: You're listening to Chikash.
2: लगे हाथ आपको याद दिला दे कि आपको टिकट्स ले लेने हैं. किस चीज़ के टिकट्स? मोहम्मद रफ़ी और मैं. रफ़ी और मैं, दिस स्पेक्टेकुलर ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी इज़ ब्रॉट टू यू बाय द सेंसेशनल जावेद अली. तो भाई 8th of May is going to be a very, very special night at Victory Convention Center, क्योंकि one of my favorite, Javed Ali, performing one of my favorites, Mohammad Rafi's tracks in his sensational andaz. ये concert आप तक लाया जा रहा है by Style Alliance Entertainment और Timeless Classics of Mohammad Rafi आप enjoy करने वाले हैं by Javed Ali. Tickets $59 से शुरू हो रहे हैं and I'm pretty sure by midweek this coming week tickets are gonna be grabbed and ये आपको मिलने नहीं वाले हैं. तो StarAllianceEntertainment.com पर आप जाए अभी, right now, and get your tickets right now. क्योंकि आप अगर देर करेंगे the preferred seating area भर जाएगी, फिर आपको बहुत दूर बैठकर इस प्रोग्राम को देखना होगा. तो क्या आप चाहते हैं, या फिर मैं भी आपको विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर के बाहर बैठकर बस आवाज़ें सुनी होगी? नहीं चाहते ना? तो बस StarAllianceEntertainment.com पर अभी जाए एंड गेट योर टिकट्स. टिकट्स स्टार्टिंग फ्रॉम $59. फूड स्टॉल्स यहाँ पर रहने वाले हैं और इजी ऑन साइट पार्किंग भी आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी. तो इफ़ यू आर अ डाई हार्ट फैन ऑफ मोहम्मद रफ़ी एंड यू लव द मेलोडियस वॉइस ऑफ जावेद अली, वेल दिस इज़ द नाइट. फ्राइडे 8th May इज़ द नाइट जब आपको विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर रहना है.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Sunday Night Melodies mein ghazlon ka silsila chal raha hai between 9 and 10 and I hope you are enjoying this as much as I am. The next one is again by the late Jagjit Singh jinki awaaz to hamesha amar rahegi, sada bahar rahegi aur inke ghazlon ko sunkar log pyar mein pad jate hain. Aiye next one aap sabhi ke hum naam kar rahe hain. Kehte hain ki mohabbat bhool jaun अगर तो तुम क्या हाल करोगी, मोहब्बत भूल जाऊँ अगर तो तुम क्या हाल करोगी, भुला दोगी मुझे तुम या थोड़ा बवाल करोगी, मेरी तपिश में जलकर अजाबों को सहकर तुम अदा से दिल तोड़ने का सबसे अर्ज हाल करोगी, मिलोगी कभी तो शिद्दत एहसास बचाए रखना, लिपट कर रोएंगे दोनों या तब भी तुम सवाल करोगी, तह एक खाक में तुम दफन रखना मेरी सारे राजों को, वादा करो कि मेरे बाद भी खुद की देखभाल करोगी, दर्द बनकर तुम्हारी सिसकियों में रहूँगा मैं ताउम्र, दर्द बनकर तुम्हारी सिसकियों में मैं रहूँगा ताउम्र, मुझे नहीं पाने का तुम भी कभी ना कभी मलाल करोगी, फुरकत का मत सोच आ बैठ मेरे पास अभी के लिए, फुरकत का मत सोच आ बैठ मेरे पास अभी के लिए, इस गज़ल को पढ़कर अपना कितना बुरा हाल करोगी।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

10 बजने का आए हैं, मैं हूं जिकाश, संडे नाइट मेलोडीज में आपके साथ मैं चल रहा हूं राइट टिल मिडनाइट। आप कहां पर हैं? कुछ लोग शायद नाइट शिफ्ट अपना शुरू करने वाले हैं या फिर आप नाइट शिफ्ट शुरू कर चुके हैं। आई होप कि यू हैव टेकन टेक फाइव क्या है, लुक अप, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है यू नो टेक फाइव क्या है। तो सेफ्टी के टर्म्स में हम बातें कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर दे आर इन प्लेस, जो आपको पहनना है सेफ्टी गियर ये आपने पहना हुआ है, ठीक तरह से पहना हुआ है, यू नहीं कि बस अटकाया हुआ है और ना काम करने निकल पड़े हैं। आपके आसपास हजार नहीं है, टेक अ स्टेप बैक एंड लुक अराउंड कि आपके पास ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे आपको चोट चपेट आ सकती है, कुछ ऐसे अनसिक्योर्ड ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जो गिरेगा और फिर आपको चोट लगेगी, कुछ ट्रिप हैज़ार्ड्स तो नहीं है। मेक श्योर कि आप सेफ है बिफोर यू स्टार्ट वॉक, ताकि काम ख़त्म करके सेफली आप अपने घर को जाए। तो सेफ्टी ध्यान में रखें, खुद की अपने आप की पहले आप सोच करें, फिक्र करें और फिर बाद में काम की फिक्र करें। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं विथ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन दिस सॉन्ग, सोनाली, श्वेता पंडित और इन सभी की आवाज़ों में इस गीत को आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपके लिए हम शामिल करेंगे वेदर फॉर द कमिंग वीक, आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है, किस तरह से आपको प्लान करना है, क्या जैकेट्स लेने हैं, रेन जैकेट्स लेने हैं, आपको छतरी लेकर चलनी है या नहीं, विल फाइंड आउट इन अ फ्यू मोमेंट्स।

0: आज है द 3rd ऑफ मे एंड लुकिंग एट द वेदर फ्रॉम टुमारो मंडे 4th मे, मे द 4th बी विथ यू। मंडे को धूप ही धूप आप देखने वाले हैं और इन द डे टाइम 19 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है, ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज रहने वाले हैं। ईस्टर्ली इज डेवलपिंग बिफोर डॉन, पूर्वी हवाएं आपको मिलने वाली है शाम के समय। ट्यूसडे को दिन में 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, पार्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर इन द मॉर्निंग। शाम को रात को ओवरनाइट टेम्परेचर 14 डिग्रीज रहने वाला है। वेंसडे को भी कुछ बादल छाए रहेंगे और शायद कुछ बारिश हो सकती है। थर्सडे को ज़्यादा बादल छाएंगे एंड कुछ जगहों पर बारिश होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है। और फ्राइडे को तो काले काले बादल दिख रहे हैं, रेन फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ ऑकलैंड, होपफुली ना हो, लेकिन हो तो भी ठीक है। आप बस इतना याद रखें कि थर्सडे फ्राइडे को शायद बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, तो थर्सडे और फ्राइडे को छतरी लेकर आपको चलना चाहिए। मंडे से फ्राइडे के बीच में 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन के दौरान, और रात को 12 से 16 डिग्री तक टेम्परेचर जाने वाला है ओवरनाइट फॉर द कमिंग वीक। तो ऑल इन ऑल गुड वीक इन टर्म्स ऑफ वेदर हम कह सकते हैं।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Your city, your music.
1: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bajans.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Hum.
1: Thanks. Love you.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.

वेलकम बैक टू हम जहाँ पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ. दिस वीक वाज वीक 12 ऑफ सुपर रग्बी पैसिफिक और कुछ हैरान कर देने वाले रिजल्ट सामने आए हैं एंड फीलिंग रियली हर्ट टू से कि हाइलैंडर्स की हार हुई फिजी में 24-14 से द हैंड्स ऑफ फिजियन रुआ एंड क्रुसेडर्स जिनको मैं सोच रहा था कि शायद दे विल गेट अ विन आउट ऑफ हरिकन्स बट नाउ दे कुड नॉट. 38-31 से हरिकन्स ने क्रुसेडर्स को हराया है. टॉकिंग अबाउट हरिकन्स दे आर अ वेरी प्रोमिसिंग साइड दिस ईयर एंड अगर इस साल इन्होंने सुपर रग्बी पैसिफिक अपने नाम नहीं किया तो देर विल बी अ लॉट ऑफ एंग्री फैंस इन वेलिंगटन क्योंकि बहुत बढ़िया खेल रही है हरिकन्स एंड आई होप आई विश देम ऑल द बेस्ट क्योंकि बेस्ट टीम ही विन करता है जैसा कि सालों क्रुसेडर्स जीते आया है. इस साल आई थिंक द बेटर टीम इज़ हरिकन्स. आपका क्या सोचना है इसके बारे में. कमिंग इनटू वीक 13 अगले फ्राइडे से फ्राइडे 8 मई को क्रुसेडर्स और ब्लूज खेलने वाले हैं इन द अपोलो प्रोजेक्ट स्टेडियम क्राइस्टचर्च में. और ब्लूज या फिर क्रुसेडर्स किसको आप देखना चाहते हैं टू विन दिस मैच. आई फॉर वन वांट क्रुसेडर्स टू विन. मेरे कई सारे दोस्त हैं जो ब्लूज को सपोर्ट करते हैं तो दिस मैच विल बी अ क्रैक ऑफ अ मैच जो आई थिंक कलेक्टिवली हम सभी एंजॉय करेंगे. उसके बाद में फ्राइडे को रेड्स और चीफ्स आमना सामना करेंगे 9:35 PM पर. हाइलैंडर्स अगेंस्ट वरटास सैटरडे को 9 मई को 4:35 PM दिन में. मोना पैसिफिका और हरिकन्स ये खेलने वाले हैं सैटरडे को 7:05 PM एंड ब्रम्बीज और फोर्स 9 मई को 9:35 PM पर आमना सामना करेंगे.

Now, the next story is not for me to bring the morale down, lekin this is for as an awareness create karna chahta hu main ki driving kitni important hai ki aap driving safely kare. और क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन हुए अप्रैल 27 को 3 लोगों की मृत्यु हुई है इन वायुरू. नाउ लास्ट वेंसडे को आई वाज इन द एरिया एंड ऑन दैट नाइट आई रेड अबाउट द न्यूज़ एंड आई वाज शेकन. एक लेट नाइट क्रैश हुआ था ऑन द 27th ऑफ अप्रैल ऑन अ रिमोट स्ट्रेच ऑफ स्टेट हाईवे 1 नियर वायुरू. न्यूजीलैंड के सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड में है ये एंड इट हैज़ क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 3 इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके बहुत सारे सपने थे अपना देश अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आकर एक नई शुरुआत कर रहे थे. एंड नाउ 3 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स लीविंग अ ग्रीविंग कम्युनिटी एंड अ यंग फैमिली शैटर्ड. लास्ट वीक ये रिपोर्ट आई थी, द 3 इंडियन मैन डाइड आफ्टर देयर कार कोलाइडेड विद अ टैंकर ट्रक ऑन अप्रैल 27 एज दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम वेलिंगटन to Tauranga. Police said they were alerted to the crash about 11:50 p.m. The deceased have been identified as Manjinder Singh, 39 years ke the, Sandeep Singh, 36 years ke, aur Varinder Pal Singh, 35 years ke. According to a report by Nadine Roberts from Stuff, who spoke to Manjinder's family, inhone mention kiya that Manjinder had moved to New Zealand 3 years ago in search of better opportunities. He died alongside his 2 friends when their car crossed the center line and collided with an oncoming tanker truck. Now, safe driving aur thakan jab aapko mehsoos ho rahi hai to aap drive na kare. Kai baar hum sochte hain ki na we'll be all right and we jump behind the wheel, and kai baar it is all right, lekin it just takes one time to be not right and that will be the end of it, jaisa in teeno ke sath hua. I'm not sure ki dhakka kyun laga, jaise ki reports ne bataya hai ki the car crossed the center line and collided with an oncoming tanker truck. To shayad neend lag gayi thi, shayad thakan ke karan, bahut sare reasons ho sakte hain. To make sure ki agar aap driving karne wale hain, you are in the right state of mind. You are well fed, well slept and well rested. अगर आप लंबे ट्रिप्स को तय कर रहे हैं, सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

वेल टू द फाइनल आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज और इस घंटे पर आपको आपका सुकून हम लौटा रहे हैं. विल बी एंजॉइंग सम क्लासिक्स ऑफ बॉलीवुड जो आपको पसंद है, जो मुझे पसंद है. हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है तो म्यूज़िक टेस्ट आप ले ऑन रोवा. रोवा पर जाकर आप ऑनलाइन म्यूज़िक टेस्ट ले एंड हमें बताएं कि आप कैसे सॉन्ग पसंद करते हैं. वहाँ पर हमने कुछ सॉन्ग्स डाले हैं, उसको रेट करें कि ये बहुत ही बद्धे सॉन्ग्स है, इसको आप ना बजाएं, ऐसा ही आप डाल दें कुछ. एंड वील नो कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, एंड वील ब्रिंग अप बेटर सॉन्ग्स फॉर यू. लेकिन फिलहाल के लिए जो सॉन्ग्स हमने लिस्ट किए हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे. आइए एंजॉय करते हैं द फाइनल आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज विद बी जी काशिया ऑन हम 104.2 FM and on Rover. Kia ora.

कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: नाइट फ्लाइट।

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए, तू beach के लिए बनाए, तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 27 99 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट एनजेड.

0: बेटा मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw to win big cash prizes. तो तैयार हो जाइए for the ultimate game show, Mom's Mood Swings on Hum. Brought to you by Indelible Homes, TFSL, Amma's Food and Malabar Gold and Diamonds.
3: A legacy that built Swarajya. A story that shaped history based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
4: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swarajya ka sapna dekha hai humne.
3: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: Electrical Services presents Javed Ali live in Auckland performing his blockbuster hits and a special tribute to the legendary Mohammed Rafi Saab in Rafi Aur Main, promoted by Star Alliance Entertainment at Victory Convention Center, 8th May, 7 PM onwards. Proudly supported by Key Contractors. For tickets, visit staralliantsentertainment.com or call Edwin on 0211-382184.
3: Ek din tera ho jaunga.
4: Your city, your music.
5: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bajans.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Ha,

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।

0: दिया। स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278860.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुनें।
1: हम, a legacy that built Swaraj, a story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
2: कभी मुगल कभी आदिल शाही, इन्हीं सल्तनतों की छाती रौंद कर हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा है हमने।
1: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
4: We gotta go to the boat show.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari good brands nahi hai.
5: Wow.
7: Night Flight.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Manukau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka tickets sirf $20 hain tayyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
4: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt and Abhishek Bachchan.
5: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
4: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
6: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Medical or Puke Kohe, where dreams begin.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today. Flooring.

0: Shake. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
1: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Eyebrows are being raised at ACT's immigration policy. It includes additional fees for migrants, like a $6 per day infrastructure surcharge on temporary work visas. Expert Simon Laurent says employers will struggle.
2: Is that necessarily what we want to do when employers identifying that there are shortages in the labour market and these workers are being brought in to fill them? This is working counter to that intention.
1: Iran claims the US has responded to its 14-point plan, according to state media. The foreign ministry says officials are now currently reviewing Washington's reply. The banning of lead from plumbing products has come into effect to tackle exposure in drinking water. Water NZ's Dr. Belinda Cridge says it's hopefully just the start.
3: We also need to think about paint, doing renovations, occupational exposures. So there's a raft of measures out there that we need to continue to look at.
1: A 60-year-old letter has finally reached its intended address in Dunedin, with the hunt now on for its original recipient. Peter Gale now lives at the property and says it was addressed to a Mr. E.H. Shepherd, who he can't seem to track down.
4: I looked further at the postmark and it was 1966, which was really intriguing, and it had the old threepence and fourpence stamps on it.
1: To motorsport with Mag and Turbo's 80,000k tyre warranty, Liam Lawson is out of the F1 race in Miami. The RB driver collided with Pierre Gasly, whose car flipped and is also out on Sky Sport.
5: Gasly goes down the outside, leaves a lot of racing room on the inside, but Lawson locks his brakes.
1: And a shock defeat at the Under-20 Rugby Championship in South Africa for New Zealand, going down 25-17 to Argentina.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
6: Hum par shok suchnaye aap tak late hai, Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
7: Suchit kiya jata hai ki Auckland ke Anand Raju aur Purnima ke pita, yani swargiye Panjali ke pati, दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्को मोटोस के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार की सुबह 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड के आनंद राजू और पूर्णिमा राव के पिता यानी स्वर्गीय पंजाली के पति दलाई लंबासा के भूतपूर्व निवासी और एस्को मोटोस के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बुधवार को 10 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-552-677 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
7: लगभग 12 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 19, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज होगा। कुछ बादल छाए रहेंगे और शाम के वक्त कुछ कुछ जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है। सनराइज सुबह 7:02 पर, सनसेट 5:34 PM पर होगा।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
9: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
7: 4 मिनट हो रहे हैं 6:00। नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मंडे है, 4th of May, आज की ये सुबह आपको शुभ और मुबारक हो। आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और आप सभी को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से।
7: वीकेंड कैसा रहा आपका?
10: I don't really know actually. पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि वीकेंड आया गया, कुछ खास ऐसे पता ही नहीं चला। So I can't say much about the weekend for me at least, पर उम्मीद है कि आप सबका वीकेंड अच्छा गया हो।
7: और अब एक नए हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं आपके साथ, और इस नए हफ्ते में कुछ पुरानी बातें होंगी और बहुत सारी नई बातें जो है ये भी आपसे होनी है। तो सफर का आगाज करने के लिए हम तैयार हैं और उम्मीद है कि इस नए हफ्ते को, इस नए दिन को शुरू करने के लिए आप तैयार होंगे।
10: बिल्कुल, क्योंकि हर एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ इधर इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, स्पेशली इस कंट्री में, हमारे ऑकलैंड शहर में हो रही है, तो आपको तो अपडेटेड रखना बनता है। एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू, ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ करेंगे हम एक क्विक अपडेट की शुरुआत।
7: एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थोड़ी ही देर में आपके लिए होगी सनी साइड अप में, जिसके बाद ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: Sunnyside Up.
1: हर दिन कोई ना कोई कहानी आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम लेकर आते हैं, और ये कहानी जो है इससे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आए, कुछ इम्पेक्ट हो, ये हमारी कोशिश होती है। एक डिलीवरी ड्राइवर था जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था टू पे फॉर हिज डॉटर्स अपकमिंग वेडिंग। और क्या हुआ कि एक दिन वो मौसम काफ़ी ख़राब था और वो पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, और उस अफरा तफरी में क्या हुआ कि काफ़ी हाई वैल्यू बिल्स जो है उसकी जेब से उड़कर समंदर में गिर गए। एंड ही वॉज जस्ट टोटली डेवस्टेटेड। गाड़ी में बैठा रो रहा था, और पास ही में एक स्केट पार्क में कुछ टीनेजर्स थे जिन्होंने देखा कि क्या हुआ। उनके पास कुछ खास पैसे तो नहीं थे, बट दे स्टार्टेड अ रेस्क्यू मिशन यूजिंग देयर स्केट बोर्ड और नेट्स। वो गए समंदर में एंड दे ट्राइड टू गेट वट एवर दे कुड। दे ओनली रिकवर्ड $40। और उन्होंने ये स्टोरी जो है अपने शहर या कम्युनिटी के सोशल मीडिया पेज पर डाली, एंड द टाउन क्राउड फंडेड $5,000 फॉर हिम इन 24 आवर्स।
2: ओह वाओ।
1: या ड्राइवर ने कहा कि आई लॉस्ट द कैश, लेकिन आई फाउंड आउट दैट आई लिव इन अ टाउन दैट वोंट लेट अ नेबर ड्राउन।
2: दैट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर वी डोंट रियली रियलाइज कि यू नो हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद हमें उस सिचुएशन में फंसा हुआ देख रहे हैं। दे आर विलिंग टू हेल्प एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प, बट वी डोंट इवन रियलाइज अबाउट इट। But the moment we are in that situation and जिस तरह का support मिलता है, लोग जिस तरह से आते हैं, help करते हैं, हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम अकेली नहीं है ना।
1: Exactly. So ऐसी कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते हैं हर दिन सनी साइड अप में। भी सब अच्छे बच रहे हैं, थोड़ी देर में न्यूज हेडलाइन या ग्लोबल हेडलाइंस आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.

0: or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. Aaye aur enjoy kare inka sophisticated dining experience jahan par aapko tarah tarah ke flavors milenge. Creative Asian fusion dishes se lekar zesty seafood tak, saath mein refreshing cocktails. Sab kuch ek bahut hi elegant aur stylish andaaz mein. Ye open hai for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
2: Miele Outlet Store is having a huge three-day sale. From now until Wednesday, there's huge savings with up to 60% off a range of Miele appliances. Your kitchen, your sanctuary. Your chance to grab a quality Miele appliance at amazing prices, but for 3 days only. Don't miss out on Miele Outlet Store's huge three-day sale on now till Wednesday and only at 880 Great South Road, Penrose. For more information, go to stillfort.co.nz.
3: For KiwiSaver portfolios, one approach won't suit everyone. With the Invest Now KiwiSaver scheme, you can choose funds from a range of different investment managers. You can build a portfolio that suits you across different managers, styles, and markets without being locked into just one approach. Of course, all investments carry risk, and returns can go up or down. The issuer and manager of the Invest Now KiwiSaver scheme is Fundrock NZ Limited. To learn more and read the product disclosure statement, visit investnow.co.nz.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
7: सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिल्ली की एक IAS कोचिंग डायरेक्टर शुभ्रा रंजन को उन्हीं के प्रोफेशनल साथी प्रियंक शर्मा ने किडनैप करके 4 घंटे तक हॉस्टेज बनाए रखा। प्रियंक ने बिजनेस एक्सपेंशन के बहाने उन्हें भोपाल बुलाया और एक फ्लैट में पिस्तौल की नोक पर डराकर उनसे 1.89 करोड़ जबरदस्ती ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने बताया कि इस पूरी साजिश में प्रियंक के साथ कुछ आर्म्ड लोग भी शामिल थे और फिलहाल इस प्लैंड ट्रैप के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के नए पीस प्लान से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान ने अभी तक अपने किए की पूरी कीमत नहीं चुकाई है। इस बीच यूएस में गैस के दाम $4.45 तक पहुंच गए हैं और ईरान का पार्लियामेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर नए कानूनी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। फिजी में 2021 से 2023 के बीच 5,000 चाइल्ड अब्यूज केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 80% बच्चों ने किसी न किसी तरह से हिंसा का सामना किया है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्टर शशि किरण ने बताया कि नए चाइल्ड केयर एंड जस्टिस एक्ट 2024 बनने के बावजूद बच्चों की हिफाजत के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है और सभी को इस पर मिलकर काम करना होगा। आईपीएल के एक मैच में आज सुबह गुजरात टाइटंस की जीत पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से हुई। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया था और एक और मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ 8 विकेट से हुई थी। पॉइंट्स टेबल पर अभी अगर देखें तो पंजाब किंग्स प्रथम, आरसीबी दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे, राजस्थान रॉयल्स फोर्थ, गुजरात टाइटंस फिफ्थ, चेन्नई सुपर किंग्स सिक्स, दिल्ली कैपिटल सेवन्थ, कोलकाता नाइट राइडर्स एट्थ, मुंबई इंडियंस नाइन्थ और लखनऊ सुपर जायंट्स 10th पोजीशन पर है। फिजी में एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग के मैचेस सप्ताह अंत खेले गए, जिसके बाद अब लंबासा का टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर चली गई है। लंबासा की जीत कल मबा के खिलाफ 2-1 से हुई। अन्य मैचेस में नावो ने तालेबु नेतासिरी को 4-1 से हराया। नसीनु की जीत नांदी के खिलाफ 2-1 से हुई। लोटोका ने नंडोंगा को 3-2 से हराया और सुवा और रेवा के बीच होने वाले मैच को खिसकाकर इसी हफ्ते बुधवार तक कर दिया गया है। पॉइंट्स टेबल की ओर अगर देखें तो फिलहाल लंबासा प्रथम स्थान पर, बा दूसरे, रेवा थर्ड, लोटोका फोर्थ, सुवा फिफ्थ, नसीनु सिक्स्थ, नांदी सेवन्थ, नावुआ एट्थ, नंडोंगा नाइन्थ और तालेबु नेतासिरी 10th पोजीशन पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस आज सुबह खेले गए। बर्नमाउथ की जीत क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 3-0 से हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 3-2 से हराया और अभी जो मैच हो रहा है प्रथम हिस्से में टॉटनम की जीत एस्टन विला के खिलाफ 1-0 से हो रही है। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
8: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
9: मैं लाऊं अपना ए गेम
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: सो आपके लिए विशाल ददलानी और उनके साथी की आवाज़ों में हम लेकर आ रहे थे ये बड़ा ही कमाल का गाना. एंड आई डोंट रियली नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस फिल्म, कोई जाने ना, 2021 में आई थी ये. पर इस फिल्म के गाने जो है बहुत पॉपुलर हुए थे, वन ऑफ दिस सॉन्ग जो आपके लिए भी हम चार्ट बस्टर्स में लेकर आ रहे थे, ऑफकोर्स विशाल ददलानी एंड ज़ारा एस खान की आवाज़ों में. नाउ बॉलीवुड की बातें करें तो ओवर द वीकेंड आई केम टू नो ऑफ दिस वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी विच इज लाइक बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने एक्टर से रिलेटेड. और मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत खूबसूरत कहानी है, इसके बारे में बात करना तो बनता है. नाउ 2020 मार्च का महीना, जहां पर पूरी दुनिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन जो है ये होने शुरू हो गए थे. नॉट जस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लेकिन जो डोमेस्टिक बॉर्डर्स है ये भी बंद हो रहे थे. एंड पीपल कुडंट गो आउट और सोशली एक दूसरे के साथ लोग उतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे. एंड देन केम दैट टाइम जहां पर ऑनलाइन काफी चीजें जो है ये होनी शुरू हो गई. एंड दैट इज द टाइम जहां पर एक एक्टर है जिन्होंने सोचा कि जस्ट बिकॉज उनकी विश है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो स्टोरी राइटिंग हो, जो कहानी हो, जो फिल्में बने वो इतने अलग और यूनिक हो कि लोग पूरी दुनिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें करें, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली. एंड ही थॉट कि व्हाट अ बेटर टाइम देन दिस, जहाँ पर वी नो कि पीपल कांट गो आउट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फिजिकली, तो उन्होंने ऑनलाइन फ्री जूम कॉल्स पर एक सेशन जो है ये शुरू करना शुरू किया. इसकी शुरुआत बेसिकली की जहाँ पर विद अ ग्रुप ऑफ पैशनेट राइटर्स एंड फ्यूचर फिल्म मेकर्स, इन्होंने उनको फ्री में स्क्रीन राइटिंग जो कैसे करते ये सिखानी शुरू की. एंड ओवर द पास्ट 6 years 800+ सेशंस जो इन्होंने किए हैं, और इनका जो ग्रुप है या फिर इनका जो ये स्पेशल इंस्टीट्यूट है विच इज बेसिकली नाउ एन इंस्टीट्यूट, इसका नाम है स्पाइरल बाउंड. और स्पाइरल बाउंड जो है नाउ इट हैज ग्रोन इनटू अ फुल फ्लेज्ड कम्युनिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स ओन. जिसके बाद चलकर जब इतने सारे लोग इसके साथ जुड़े तो उन्होंने एक माइलस्टोन इवेंट जो है ये भी रखा, जहां पर द एक्टर हिमसेल्फ कंडक्टेड दिस स्पेशल सेरेमनी. और फिल्मी इंडस्ट्री के, या आई शुड से बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे जाने माने जो यू नो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, ये सब इवेंट पर आए थे. एंड द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट वॉज नन अदर देन जावेद अख्तर. देयर वॉज रमेश सिप्पी, इम्तियाज अली, फराह खान, आमिर खान, जैकी श्रॉफ, राजकुमार हिरानी एंड ऑफकोर्स अनुपम खेर, जो किस इवेंट का हिस्सा बने थे. एंड नॉट जस्ट दिस बाय द वे, इनके जो जूम कॉल्स पर ये जो सेशंस करते आ रहे हैं, इस पर भी ही गेट्स ऑल दिस टैलेंटेड पीपल जो एक स्पेशल सेशन में आकर इनके इस यू नो स्टूडेंट्स से, इनके साथ जो लोग जुड़े हैं स्क्रीन राइटिंग सीखने के लिए, उनसे बातें करते हैं और अपने जो टिप्स वगैरह है, अपनी जो चीज़ें हैं ये उनको वो सिखाते स्पेशल सेशन के दौरान. तो इट हैज़ बिकम अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. एंड जस्ट थिंक कि इनके दिल में ये थॉट था कि ये चाहते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में और अच्छे राइटर्स आए और अच्छी कहानी ऑडियंस तक पहुंचे, विच इज वाई ही स्टार्टेड डूइंग दिस. एंड दिस पर्टिकुलर गाय इज नन अदर देन बमन ईरानी.
1: ओके,
0: या ही टुक दिस इनिशिएटिव, ही स्टार्टेड स्पाइरल बाउंड एंड नाउ ही इज लाइक गोइंग बिग विद इट. एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट ही इज बीन डूइंग. So that's why I thought कि आज चलो क्यों ना इनके बारे में कुछ बातें जो है आपसे करें हम.
1: Yeah, very nice. बमन ईरानी जितने कमाल के एक्टर थे उतने कमाल के बाकी के काम भी कर रहे हैं. दूसरी तरफ वैसे कपिल शर्मा शो का जो नया सीजन है ये भी अब आ गया ना.
0: हाँ, मुझे पता है आ तो गया, पर मैंने अभी तक देखा नहीं है.
1: I watched क्या नाम है उनका, समय रैना एंड
0: रणवीर अलाबादिया.
1: हाँ, उनका जो
0: पहला
1: एपिसोड. एंड आई मस्ट से आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कपिल शर्मा का कोई एक एपिसोड है दैट आई एंजॉयड वाचिंग. इट वाज फन.
0: ओके, दैट्स गुड.
1: या
0: बिकॉज़ आई थिंक जिस तरह के आर्टिस्ट को वो लेकर आए थे एज अ गेस्ट, वो खुद इतने फनी और इंटरैक्टिव थे कि पीपल वुड एंजॉय इट, यू नो.
1: या एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज सिर्फ क्या नाम है, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया ही नहीं, बल्कि
0: सुनील पाल
1: भी इस एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट थे. तो सुनील पाल, इन्होंने काफी बातें जो है कि कही थी ना इंद्र ईशन पर समय रैना के बारे में, और उसके बाद व्हाट कपिल वेरी स्मार्टली डिड वाज ब्रॉट देम बोथ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। एंड आपको वक्त मिले, अगर नहीं देखी है आपने तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू फील अबाउट द कमबैक, एंड होपफुली ऐसे और भी फनी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिले। अभी समय देख लेते हैं, 25 या 26 मिनट रह गए हैं 7 बजने में।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
5: Traffic.
6: Winter immunizations are available now.
7: Fine spells with cloud burning off, high of 19 today. Into the city, Northern Motorway, 22 minutes in from Constellation Drive, 50 from Silverdale now. We're slow at Silverdale and Greville to Waito Valley, slowing around Esmond too. Northwestern, 24 minutes into town from Massey, slow at Massey to Te Aratu and slowing close to the CBD. Southern, 24 in from Manukau, slow patches Papakura through to Papatoetoe.
6: Book your winter immunizations, including flu. Search Book My Vaccine or ask your healthcare provider.
8: Big Boss, dekha hai na? घर से बाहर निकलो और विनर को लाइव देखो। मुनावर फारूकी आ रहे हैं ऑकलैंड विद हिज स्टैंड अप कॉमेडी शो धंधो।
9: छोटा तो मेरे को नहीं समझ में आता था, मैंने अपने चाचा से पूछा, कुबुले कुबुले कुबुले क्यों होता है ऐसा 3 बार? मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहाँ आता है।
8: सैटरडे 23rd में ब्रूस मेसन सेंटर ताकापुना, 7 PM onwards. Book your tickets now on ticketmaster.co.nz.
10: Fly direct from Auckland to the Gold Coast with Qantas from June 16. From sun-soaked beaches and luxury retreats to world-class waterfront dining and lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and 30 kilos of checked baggage included when you fly with Qantas. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply. Schedule subject to change.
11: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepyhead beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
12: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
13: Your city, your music.
14: Hey, this is a cool neighborhood. Stop playing bhajans.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Hum. Thanks. Love you.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: 22 मिनट रह गए हैं फिलहाल अब 7 बजने में। बाय द वे, क्या आपको पता है कल फिजी में जावेद अली प्लेड टू ए सोल्ड आउट वेन्यू?
0: यस, आपको ये भी बता दूं मैं कि इससे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन में भी शो किया है, एंड देन उसके बाद ही गए फिजी सुबह में जहां पर इन्होंने शो किया, एंड फाइनली ही विल बी कमिंग डाउन टू परफॉर्म हियर इन सुपर सिटी ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस फ्राइडे 8th of May।
1: स्टार अलायंस एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं जावेद अली, प्रेजेंटेड बाय पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, जहां पर एक स्पेशल सेगमेंट होगा जहां पर ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत ही क्लासिक गाने आपको सुनाएंगे, और यही नहीं उनके खुद के चार्ट टॉपिंग हिट्स आप एंजॉय कर सकेंगे, लाइव बैंड, और साथ ही में एक अनप्लग्ड सेशन जो है ये भी प्लान किया जा रहा है। बट यू गॉट टू बी एट विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर इसी फ्राइडे को, इट्स गोइंग टू हैपन। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $59 सेलिंग लाइक हॉट केक्स, जो जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर इनके बीते कॉन्सर्ट्स के सारी जो विजुअल्स देखने को मिल रही हैं उसके बाद, और टिकट्स आप जल्द से जल्द ले सकते हैं starallianceentertainment.com विजिट करते हुए, या फिर प्रीमियर टिकट्स विजिट करते हुए भी टिकट्स आप ले सकते हैं. सो मेक श्योर दिस फ्राइडे विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर इज द प्लेस वेयर यू गॉट टू गो. बाय द वे आपको बता दें कि आज 4th of May है, आज से शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज वीक.
0: ओह दैट इज नाइस. ये आप शायद अगर नहीं जानते तो ये भी आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में एक नहीं दो नहीं लेकिन 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिनमें इंग्लिश एक भाषा है, और यहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज विच इज माउरी, और उसके अलावा साइन लैंग्वेज. दीज 3 लैंग्वेजेस आर द 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन न्यूजीलैंड. और ये बहुत अच्छी और खूबसूरत बात भी है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनी अदर कंट्री हैज एनी सच थिंग कि वहाँ का नेटिव लैंग्वेज हो, वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस हो, और साथ में साइन लैंग्वेज भी हो जो उस कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता हो.
1: तो आप सीख सकते हैं कुछ, इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि हम सभी कुछ ना कुछ इस बारे में जाने और सीखें. राम राम, जय माता दी, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे. मिस्टर माता माता की ओर से मैसेज आए हैं, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग.
0: और इसके अलावा आज हमारे पास सुबह सुबह अपर हट वेलिंगटन से रोहिणी जी ने भी मैसेज किया है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, ब्लेस्ड मंडे मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, इन्होंने कहा है.
1: गुड मॉर्निंग टू ऑल. राज आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से, हैव अ ग्रेट एंड ब्लेस्ड डे. राज आपको भी इस दिन इस सुबह की शुभकामनाएं.
0: और साथ में बॉबी मान जी आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव एन ऑसम वीक अहेड, गौरी शंकर्स ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके साथ के लिए और आपके मैसेज के लिए भी.
1: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल डे. विमलेश और प्रिया न्यू प्लिमथ से आपको भी अ वेरी हैप्पी मंडे हम कहना चाहेंगे, जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, 104.2 FM या रोवर पर. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
0: Now before you move on with this next song straight from our heart to yours, आपके लिए एक सवाल है और इसका जवाब जो है ये आप हमारे पास जरूर भेज सकते हैं on 5599. सवाल बड़ा सिंपल है पर देखना ये है कि आप में से कितने लोगों को समझ में आता है. तो एक रोज क्या हुआ कि 4 कॉकरोचेस जो है ये एक साथ जा रहे थे गाना सुनते हुए, लाइक यू नो दे लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग्स
1: ऑन रोवा.
0: Probably on Rover. So while they were listening to this, after a while, charo ke chare cockroaches jo hai ye mar gaye. It said, but they did die. Ab aapko batana hai aisa kyun?
1: Hey, 4 cockroaches gana sunte hue ja rahe the.
0: And thodi der baad,
1: all of them died. How?
0: Kyun?
1: Oh, kyun? Okay.
0: Haan, not how, why? तो ये आपको बताना है. 5599 पर अपने नाम के साथ अपना मैसेज भेजिए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट इट राइट. और अराउंड थ्रोबैक आई विल टेल यू व्हाई.

0: थ्रोबैक का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले ये भी ख्याल रखें कि मई का महीना न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ भी होता है, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बैक योर बैकयार्ड बीट्स। और भी बहुत सारे आप में से जो आर्टिस्ट हैं, आपने अपने गानों को हमारे पास भेजा है buzz@homefm.com पर, थैंक यू सो मच। तो शॉर्टलिस्टेड गानों को हम पर हम आपके लिए पेश करेंगे, प्लस यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू कोलैब विद अस ऑन इंस्टा।
1: बिल्कुल, आपके पास मौका है कि आप एज एन आर्टिस्ट कोलैब जब हमारे साथ करते हैं इंस्टा, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके गाने वहाँ हमारे सोशल मीडिया पर भी जाते हैं। द पीपल हु गेट अ चांस टू वॉच इट, दे वोट फॉर इट एज वेल, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड आर्टिस्ट होंगे उनके गाने ही प्ले होंगे, और साथ में जब आप कोलैब करते हैं इंस्टा पर, आपके गाने ऑनलाइन जाकर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को एक्सेस करने का मौका मिलता है। एंड देन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी कि बोथ ऑन एयर एंड ऑनलाइन हम आपके गानों के लिए वोट्स जो है ये ले सके, और जो टॉप 3 आर्टिस्ट होंगे उनके गानों को रोवर ऐप पर फीचर किया जाएगा और उनको एक अमेजिंग प्राइज जीतने का मौका भी मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल दैट यू आर गोना डू। आप जो गाना सुनेंगे, आपको कैसा लगेगा, आप किस गाने के लिए वोट करेंगे, उस बेसिस पर ही उस आर्टिस्ट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बैक योर बैकयार्ड बीट्स। बट राइट नाउ रिमेंबर, अपने गाने अगर आप हमारे पास भेज रहे हैं buzz@homefm.com पर, buzz@homefm.com पर, तो अपना एक छोटा सा बायो जरूर अपने गाने के साथ आप सेंड करें। फिलहाल हमने आपसे कहा था ना कि एक मतलब 4 कॉकरोच जो है ये जा रहे थे, और फिर उसके बाद में वो कुछ गाने जो ये सुनते जा रहे थे, थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो जाती है, दे डाई, एंड व्हाई इज दैट सो, हमने पूछा था। तो इसका जवाब हमने कहा था कि आप हमारे पास भेज सकते हैं। कुणाल ने अपना जवाब जो ये भेजा है, साथ में बाबू राम जी इनका भी आंसर आया है। थैंक यू सो मच आप दोनों के मैसेजेस के लिए, और दोनों ने सही जवाब जो है ये दिया। इनफैक्ट
0: हाँ, तो जवाब भी बताना आपको पड़ेगा ना।
1: जवाब यही है कि जो गाने वो सुन रहे थे वो हिट थे। That is why they died. Oh my God, this is like a very bad one, but I tried my luck. मैंने सोचा आज मंडे है ना, तो शुरुआत ऐसा ही कुछ करते हैं।
0: Okay, और भी कई चीजें हैं। By the way, लोटो के बारे में आपको बता दें, 9 players जो है इन्होंने $29,643 जीते over the weekend लोटो second division में, और ऑकलैंड के एक प्लेयर हैं जिन्होंने स्ट्राइक पर स्ट्राइक 4 के साथ $700,000 जो है ये जीते हैं। And opportunity.
1: यार अपना टाइम कब आएगा?
0: खेल लो, टाइम आ जाएगा।
1: मैंने खेला था for the Saturday when I played, but unfortunately nothing. मुझे ना पता नहीं अंदर से ही एहसास हो गया था कि शायद कुछ नहीं है, and I went and I checked and वही won not a winning ticket and I was like upset, but क्या ही कर सकते हैं ना।
0: अच्छा, वेंसडे को ट्राई करो, हो सकता है
1: 8 million है ना वेंसडे के लिए।
0: एग्जैक्टली, 7 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट होगा आपके लिए। अगले घंटे बर्थडे और एनिवर्सरी विशेष वगैरह भी हैं। मैसेजेस नहीं भेजे हैं तो 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।

0: Code.nz.
1: 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर आपका स्वागत हम कर रहे हैं 104.2 FM या रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कंपनी अर्ली इन द मॉर्निंग।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और आपके समय के लिए। इतनी सारी चीजें आपके लिए हो रही है ऑन द ब्रेकफास्ट शो टुडे, तो डेफिनेटली इस पर चर्चा तो आपके साथ करते रहेंगे। फिलहाल चलिए, और भी बहुत सारे बेहतरीन मौके आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के बारे में भी आपको बताया है। तो वहीं पर ये भी आप याद दिला दें कि बैक योर बैक एट बीट्स जो है मई के इस महीने में, वी डेफिनेटली आर टर्निंग अप द वॉल्यूम और लोकल टैलेंट को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इजंट जस्ट अबाउट लिसनिंग टू लोकल म्यूजिक, इट्स अबाउट आपका सपोर्ट टू it. So what you need to do is hear a song you love, and if you want it on repeat or should we skip it, you can vote for it. Aap text kar sakenge hamare paas on 5599 likhkar, and every interaction jo help karega hame uske zariye hum hamare top 3 artists jo hai ye chun payenge. And it doesn't really stop on air, kyunki aapko mauka milega hamare social media ko visit karne ka, hamara insta jo hai yahan par, and you can find your favorite artist video ya fir songs, and you can like, comment or share on that particular video to show your support. Jo winner honge will be decided by the total number of engagement jo hame radio ke through aur social media ke through milte hain, aur fir unke gaano ko hum Rover app par bhi feature karenge aur definitely mauka denge unko inaam jo hai ye jeetne ka.
1: Plus aur bhi bahut sari cheeze ho rahi hain, lekin New York mein last week Friday ko aisa kuch hua jiske bare mein jaise hi pehli line logon ne suna तो दे वे टेकन बैक कि यार ये क्या है। तो पहला बुकलेस बुक स्टोर खुला है।
2: बुकलेस बुक स्टोर,
1: हाँ,
2: मतलब बिना किताबों का एक किताब का दुकान,
1: किताब की दुकान न्यूयॉर्क में फ्राइडे को ऑडिबल ने इसे खोला है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कोई पेजेस नहीं, कोई बुक्स नहीं, लेकिन दे आर स्टैक्स ऑफ बेस्ट या नॉवल्स, ये जो पॉपअप स्टोर हैं। और यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे ऑडियो बुक्स हैं। यू लिसन टू द बुक्स, या
2: ओके,
1: ये एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पर यू नो दे ब्रिंग ऑडियो स्टोरी टेलिंग टू लाइफ। और अभी दुनिया भर में पर्टिकुलरली अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं इसको काफ़ी एम्ब्रेस भी कर रहे हैं। तो शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो दुनिया का पहला बुकलेस बुक स्टोर है इसे खोला गया है।
2: इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आई वुड से। एनीवेज, इस घंटे जहाँ पर आपके लिए आज के आपकी राशि वाइब्स थोड़ी देर में हम लेकर आने वाले हैं, और वहीं पर आपको ये भी हम याद दिला दें कि आज के सेलिब्रिटी अलार्म ये भी आपके लिए रहेगा। एंड लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कि आज किन की आवाज हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: प्लस हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए आज से एक बार फिर कोड वर्ड्स जो है ये रिवील होंगे सुबह 8 बजे के बाद, दिन में 11 बजे के बाद, दिन में 1 बजे के बाद और शाम 5 बजे के बाद, जो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू विन ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी। स्टे ट्यून्ड टू हम।

0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Tubo jao, papi ho. Tubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: कैसा होगा आज का आपका दिन? Here are your Rashi Vibes. मेष यानी एरीज, आज आप सोशल वर्क करने के लिए काफी एक्साइटेड रहेंगे. इसकी वजह से आपको मान सम्मान भी मिल सकता है. इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा रहेगा. ऑफिस में भी दिन पीसफुल रहेगा. सही काम करेंगे उसको भी आज अपोज किया जा सकता है. सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स.
3: वृषिनी टोरस, आज आपके लिए कहा गया है कि फायदे के मौके आपके हाथ लगेंगे. चोट या रोग से आपको बचने की पूरी कोशिश करनी है. लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपने हेल्थ का ख्याल रखें. और आज ये भी कहा गया है कि है कुछ ऐसे लोग जो आपका नुकसान चाहते हैं और इसी वजह से आपके पीछे पड़ जाएंगे.
2: मिथुन यानी जेमिनी, अपने वैल्यूबल चीजें संभाल कर रखें. ऐशो आराम की चीजों पर अच्छी तरह से सोच समझ कर ही पैसे स्पेंड करें. कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े. एक्सपेक्टेशंस ना रखें बहुत ज्यादा. एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आपको ही निराशा होगी. और आज अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ के बारे में थोड़े कंसर्न भी आप हो सकते हैं.
3: कर्क ने कैंसर, आपके लिए कहा गया है कि कोर्ट कचहरी के कामों में, लीगल मैचेस में जो आप शायद रिजल्ट चाहते हैं, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन इट डायरेक्टली, तो वैसा ही आज आपको रिजल्ट मिलेगा. आपके जो जीवन साथी है इनका फुल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जिसकी वजह से यू विल फील वेरी हैप्पी दैट यू हैव गॉट समवन जो आपको अपना सपोर्ट दे रहे हैं. यू वोंट फील लोनली एट ऑल इन रिगार्ड्स विद दिस. और साथ में आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि आज का दिन इतना अच्छा रहेगा कि घर और बाहर दोनों ही ओर आपको खुशी महसूस होगी.
2: सिंह यानी लियो, फाइनेंशियली दिन अच्छा रहेगा आपका. ऑफिस में भी दिन बढ़िया जाएगा. और अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो उससे अच्छा खासा फायदा भी आज आपको हो सकता है. और आज शॉपिंग के लिए कुछ प्लान्स आप बना सकते हैं.
3: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए बताया जा रहा है कि आज किसी हैप्पी ओकेजन में आप भाग जरूर ले सकते हैं. आज किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के गाइडेंस की वजह से आपको मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से करने का मौका मिलेगा. हेल्थ पर ध्यान दें, ऐसा भी आपके लिए बताया जा रहा है. और किसी दूसरे के झंझट में ना पड़े, ये सलाह भी आपको दी जा रही है.
2: तुला यानी लिब्रा, आज कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी. ख्याल रखें कि लोग जो कह रहे हैं उसके बहकावे में आप ना दे, फालतू बातों पर ध्यान ही ना दे तो अच्छा होगा आपके लिए. बिजनेस ठीक ठाक चलेगा. और आज कुछ ऐसी भी खबर आपको मिल सकती है जिससे शायद आप कुछ निराश हो. भाग दौड़ भी आज ज्यादा करनी पड़ेगी.
3: और उसके साथ साथ अगर देखा जाए वृश्चिक ने कि स्कॉर्पियो, आज रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में कहा गया है कि यू विड गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. अगर आप इतने दिनों से एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है एंड फाइनली यू गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आज के इस दिन आपको वैसा ही आंसर मिले जैसे कि उम्मीद आपको है. किसी तरह का भेंट या उपहार यानी गिफ्ट देना पड़ सकता है आज टू समवन रियली क्लोज टू यू, टू समवन रियली स्पेशल. और कोशिश जो आप कर रहे हैं इतने दिनों से टू यू नो गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स अराउंड यू, ताकि आपको एक टेंशन फ्री लाइफ जीने का मौका जो है ये मिले, तो डेफिनेटली उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आज आपको जरूर मिलेगा.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, आज कहीं अच्छी खबर आपको कहीं से मिल सकती है. और पैसे स्पेंड होंगे और रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि गैम्बलिंग वगैरह से दूर रहें और झगड़ा झंझट में ना पड़े.
3: एंड उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉन, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई भी जरूरी फैसला अगर आपको करना है आज के इस खास दिन, तो सोच समझ कर करें. कोई ऐसी चीज होने की आशंका है जिसकी उम्मीद कभी आपको थी ही नहीं. हो सकता है इससे आपका नुकसान भी हो, तो इसीलिए आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है और मेंटली थोड़ा स्ट्रांग भी बने रहना है. फिजिकली आज किसी तरह से कोई कष्ट आप जरूर फेस करेंगे, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, दूसरों के झगड़े में ना पड़े, बेकार में हंसी मजाक ना करें. एक्सपेंसेस आज आपके थोड़े बढ़ सकते हैं और ये सर दर्द का कारण भी बन सकता है. वैल्यूबल चीजें हो सकता है कहीं खो जाए या समय पर जब आप ढूंढेंगे तो मिले नहीं, इसकी वजह से आज आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं.
3: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि बिजनेस है अगर आपका तो सफलता हासिल करेंगे. फायदे के बहुत से मौके आपके हाथ लगेंगे और फालतू की बातों पर ध्यान ना दे, ये एक सलाह दी गई है. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अननेसेसरी चीजों पर या बातों पर या लोगों के व्यवहार पर हमारा ध्यान जो ये बना रहता है, एंड वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग इवेल्युएटिंग, जिसकी वजह से अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स हम ऐसे ही परेशानी में बिता देते हैं. सो टुडे माइट बी दैट डे अगर आपने इन फालतू चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो. तो चलिए ये थी आज की आपकी राशि वाइब्स। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ थोड़ी देर बाद आज की सेलिब्रिटी अलार्म, कौन रहेंगे आज सेलिब्रिटी अलार्म में, वी विल फाइंड इट आउट।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
4: 80s के रेट्रो गाने।

0: वक्त आ ही गया कि अब सेलिब्रिटी अलार्म हम खेले आपके साथ और देखें क्या आज के सेलिब्रिटी की पहचान हो पाती है या नहीं।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे एक आवाज और उसे सुनने के बाद आपको बस हमें बताना है कि क्या आपने इनकी आवाज पहचानी या नहीं। अगर आपने पहचानी हो तो आपको जवाब हमारे पास मैसेज करना होता है, BF लिखना है सबसे पहले, फिर आपको जवाब लिखना है, अपना नाम लिखना है और हमारे पास भेज देना है 5599 पर। बट अगर जो नहीं पहचान पाए आप में से कोई एक भी, तो हम क्या करेंगे, विल कंटिन्यू विद द सेम वॉइस टुमारो, वी वोंट गिव द आंसर टुडे, पर आपको कल देखना है कि क्या कोई पहचान पाता है या नहीं।
0: So let's see, आज के सेलिब्रिटी की आवाज ये रही।
2: तुमने मुझे दोस्त कहा है ना देव, तो दोस्ती के नाते एक बात कहूं, तुम लोगों का विश्वास जीतते हो और उसे तोड़ देते हो। विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है।
0: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी की आवाज।
1: बहुत ही खूबसूरत अदाकारा एंड आई थिंक ये 90s के दौर में शी वाज सो पॉपुलर, हर एक लीड मेल एक्टर के साथ इन्होंने कोई ना कोई एक फिल्म में तो काम किया ही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ 90s जो है ये इनके ऊपर पिक्चराइज्ड है या इनकी फिल्म का गाना है। एंड लेट इन द ईयर आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज मिसिंग बिकॉज ऑफ सम मेजर हेल्थ इश्यूज, एंड उसके बाद चलकर इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वापसी भी की है।
0: तो अब आप कोशिश करें अपना जवाब हमारे पास भेजें। सबसे पहले आपको BF लिखना है, उसके बाद ये कौन सी सेलिब्रिटी हैं उनका नाम और अपना नाम, और 5599 पर उसे आप हमारे पास भेज दें।
3: Hollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Co.nz. News headlines. सुबह के मुख्य समाचारों में एक्ट पार्टी लीडर डेविड सिमो ने एक नया 6-पॉइंट इमिग्रेशन प्लान पेश किया है, जिसमें टेम्परेरी वर्क वीजा पर $6 पर डे से चार्ज और रेसिडेंस वीजा होल्डर्स के लिए 5 सालों का वेलफेयर वेट शामिल है। इस पॉलिसी के तहत सीरियस ऑफेंडर्स को तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा और सभी वर्क वीजा होल्डर्स के लिए इंग्लिश बोलना और कीवी वैल्यूज को अपनाना जरूरी होगा। सिमो ने पुरानी सरकारों पर रूल्स न मानने का आरोप लगाते हुए ओवरस्टेज के लिए एक स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट बनाने और हर साल वीजा कैटेगरीज रिव्यू करने का प्रस्ताव रखा है। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लैक्सन अपने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ सिंगापुर पहुंच गए हैं ताकि फ्यूल सिक्योरिटी और $11 बिलियन के सालाना ट्रेड रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। दोनों देशों के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें खेतीबाड़ी और टेक सेक्टर के साथ साथ मुश्किल वक्त में एसेंशियल सप्लाईज को जारी रखने पर जोर दिया गया है। ईरान वो के चलते पैदा हुए ग्लोबल क्राइसिस के बीच दोनों देशों के बीच ये रिश्ता काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्लैक कैप्स टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज को बराबर कर दिया। शनिवार को जो आखिरी T20 मैच खेला गया, उसमें ब्लैक कैप्स की जीत 6 विकेट से डक लुइस मेथड में हुई। टीम अब महीने के अंत में वन ऑफ टेस्ट मैच में आयरलैंड का सामना करेगी। सुपर रग्बी कॉम्पिटिशन के बहुत ही जबरदस्त मैचेस सप्ताहांत खेले गए। हरिकन्स की जीत क्रुसेडर्स के खिलाफ 38-31 से हुई। फोर्स ने वारटर्स को 20-17 से हराया। फीजन रुआ की जीत हाईलैंडर्स के खिलाफ 24-14 से हुई और ब्लूज ने मोना पैसिफिक को 45-19 से हराया, जबकि रेड्स की जीत ब्रम्बीज के खिलाफ 30-21 से हुई। ऑकलैंड एफसी आई लीग सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ, जब सप्तांत एलिमिनेशन फाइनल में टीम ने पेनल्टी किक्स में मेलबर्न सिटी को 7-6 से हराया। एक और एलिमिनेशन फाइनल में सिडनी एफसी की जीत मेलबर्न विक्ट्री के खिलाफ 1-0 से हुई। ऑकलैंड एफसी इसी शनिवार को शाम 6 बजे से पहले सेमीफाइनल में एडिलेड यूनाइटेड को होस्ट करेगा, जबकि 9:40 PM पर सिडनी एफसी और न्यूकासल जेट्स का मैच खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो मैच फिलहाल एस्टन विला और टॉटनम के बीच हो रहा है, दूसरे हिस्से में खेल जारी है और अभी टॉटनम की जीत एस्टन विला के खिलाफ 2-0 से हो रही है। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
3: Kitchenmania.co.nz.
4: A high of 19, fine and cloudy today. Southern motorway 38 minutes from Monaco to the city, over an hour from Drury. We're slow all the way from Papakura with some heavy patches. Southwestern a bit slow northbound at Whitty. Northern 36 in from Constellation, slow at Silverdale, heavy gravel to the bridge. Northwestern 36 from Massey, slow from Upper Harbour with heavy patches on and off, mainly from St Luke's to Grayland.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
5: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
6: Dash! Ah! Savior of the lunchbox!
5: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
6: Dash!
7: At Bunnings Trade, we can help you build big. We've got a wide range of landscaping supplies and building materials to help you get the job done. From Green Life decking and fencing to irrigation, top brand power tools and loads more. Plus, our trade team's here to help you get back on site fast. Shop the range in-store or online today. Or call 0800 134 872 for fast quotes and delivery to site. We can help you build big at Bunnings Trade.
8: What kind of businesses run on Business Fibre? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fibre.
9: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
10: Hey, Mum.
11: Hey, sweetheart, how are you?
10: Good. Hey, could I borrow 10K?
11: This is a new phone. Ooh, this.
12: Well, that's awkward. But borrowing money doesn't have to be with Nectar Money. Using their fast and super simple online process, Nectar Money can lend up to 50K with 7-minute quotes and same-day funding. C's, T's, fees and credit criteria apply. Get lending without the awkward.
11: Nectar Money. Lending sweeter. Sweeter.
1: The beat of Bollywood.
13: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
0: 23 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और आज 4th ऑफ मई का ये दिन ये सुबह मुबारक हो आपको अगर अपना बर्थडे या फिर वेडिंग एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. सुरेखा सूद जी मनुरेवा में आज आप अपनी सालगिरह मना रही हैं. खुशी के इस मौके पर जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं. ईश्वर से आपके लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. इनके साथ आज मुनस्वामी नायडू जी आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी की ओर से प्यार और दुआएं आपको मिल रही हैं. हम की पूरी टीम की ओर से भी आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.

go.nz. 22 मिनट रह गए हैं फिलहाल 8 बजने में और सवाल आज के सेलिब्रिटी अलार्म की ओर देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे लेकिन जो पहला जवाब आया वही गलत हो गया और राहुल हैं साथ में एशली हैं सनी हैं राज आपने अपना जवाब भेजा अफ़ांस गुड मॉर्निंग आपका जवाब भी गलत हो गया सोम हैं साथ में काजल हैं कल्पेश शिवा अजय और प्रिया न्यू प्लिमथ से शालिनी आपका आंसर आया है अश्नील हैं प्रियंका पापाटोई टोई से नंदिनी गुड मॉर्निंग आपको फ्रांसिना अ वेरी गुड मॉर्निंग निमी हैं सरिका पुष्पा कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा रजनील हैं अंशु हैं थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए और संजय हैं रोवर पर प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं फ्रॉम कनाडा अ वेरी गुड मॉर्निंग संजय आपको थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए और आज के सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज़ हमने आपको सुनाई थी कुछ सही कुछ गलत आंसर्स आए और वो थी मनीषा कोइराला मनीषा कोइराला 90s में सुपर डुपर पॉपुलर बहुत ज़्यादा इनकी फिल्में जो है ये चली थी तो आपने ये आंसर भेजा हमारे पास थैंक यू सो मच अभी ना ऐसा करते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो फिलहाल रोवर पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अगर आप रोवर पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बस आपको इतना करना है आप BF लिखें अपना नाम और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं किस एरिया में आप है वो लिखकर 5599 पर आप हमारे पास भेजिए याद रहे BF उसके बाद अपना नाम और कहां से किस एरिया में आप सुन रहे हैं वो लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजिए ओनली अगर आप रोवा पर हमारा जो ऐप है या hum.rova.nz पर ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है भेज सकते हैं अगले घंटे 8 बजे के बाद मत भूले आज का हमारा पहला कोड वर्ड जो है ये भी रिवील होना है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए जिसमें आप में से कोई एक होगा जो रिटर्न एयर टिकट टू फिजी जीतेगा और जैसे ही जो कोड वर्ड है ये रिवील किया जाएगा उसे जाकर आपको रोवा ऐप पर या hum.rova.nz पर हमारे वेबसाइट पर एंटर करना होगा अगर सही सही आपने एंटर कर दिया तो आपका नाम ड्रो में शामिल होगा आपको एक एंट्री जो है ये मिल जाती है लेकिन अभी तो हमने जो आपको बताया है वो आप कर दें तो बड़ा बहुत बढ़िया होगा कॉन्सोलेशन इनाम भी आप जीत सकते हैं BF और उसके बाद अपना नाम और किस एरिया से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चाहे ऑकलैंड में हो ऑकलैंड से बाहर हो कहीं भी हो वो आप हमें मैसेज करके बताइए अगर आप रोवर पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी समय की ओर देखें तो 19 मिनट रह गए हैं अब 8 बजने में

0: with Vijay and Pooja.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम लेकर आ रहे हैं ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। इधर चलिए आपके लिए इतनी सारी कमाल की खबरें जो ये हम लेकर आते हैं, तो इसके लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा। आज का जो ट्रेंड पेट्रोल है इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। देयर इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यमी जो आज आपके लिए हम ट्रेंड पेट्रोल में लेकर आए हैं। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इट यू हैव टू बी विद अस।
1: और साथ ही में अगले घंटे रिवील होगा आज का हमारा जो पहला कोड वर्ड है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए, तो इसका भी इंतजार करना है। एंड आज मंडे 4th of May हो गया, इसी फ्राइडे को मदर्स डे के ड्रॉज होने हैं। अगर आपने अपना मदर्स डे का अल्टीमेट वाउचर अभी तक तैयार करके जो हमारे फेसबुक पेज है कॉम्पिटिशन पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में नहीं डाला है यू कुड बी मिसिंग आउट, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट और कॉम्पिटिशन भी इतना ईजी कि बड़ी आसानी से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपको बस क्या करना है, एक छोटा सा वाउचर जो है ये डिजाइन करना है। एंड दिस वाउचर स्पेशली फॉर मदर्स डे, जहाँ पर इमेजिन यू आर डिजाइनिंग समथिंग फॉर योर मम, मम्मी के लिए कि मम्मी को आप क्या देना चाहते हैं, और उस हिसाब से आपने वाउचर जो डिजाइन किया। एंड देन ऑल यू नीड टू डू इज कि वो वाउचर जो है ये आप हमारा जो फेसबुक पेज है हम 104.2 FM उस फेसबुक पेज के मदर्स डे इस अल्टीमेट मदर्स डे वाउचर कॉम्पिटिशन के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करें। वंस यू पोस्ट दैट वाउचर देयर आप इस ड्रो का हिस्सा बन जाएंगे, जहां पर मदर्स डे के इस खास मौके पर हमारे सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन में भाग लेते हुए आपको $200 जीतने का मौका मिलेगा।
1: तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है यू नीड टू गेट इट डन एज क्विकली एज पॉसिबल। आप वाउचर चाहे अपने हाथों से बना सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर पर डिजाइन कर सकते हैं, AI का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट डाल के ही आप बना कर वहां पर डाल सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन गेट इट डन एंड $200 का ड्रॉ इसी फ्राइडे को सैंडी और रुस्बे के साथ होगा द ड्राइव शो में। तो अगर आपकी एंट्री अभी तक नहीं आई है You get it done as quickly as possible और अपनी मम्मी के लिए ये मदर्स डे और खास बनाएं।
0: बिल्कुल, तो आपके पास अभी भी टाइम है बिकॉज द ड्रॉ इज हैपनिंग सिंस दिस फ्राइडे। इट मींस कि आपके पास अभी से लेकर फ्राइडे तक का टाइम जरूर है। मेक द मोस्ट ऑफ इट यार, ऐसे पैसे जीतने के मौके आपको हर जगह से नहीं मिलते, लेकिन हम तो जरूर दे रही है अपॉर्चुनिटीज, तो इससे फायदा जरूर उठाइए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 12.2 डिग्रीज टेम्परेचर हो चुका है आज का हाई 19, ओवरनाइट कम से कम 11 डिग्रीज रहेगा, कुछ बादल छाए रहेंगे आज और सनसेट आज का 5:34 PM पर होगा।
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: रश आवर की शुरुआत ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। पर इफ यू रिमेम्बर, पिछले घंटे ही मैंने आपको बता दिया था कि आज का ट्रेंड पेट्रोल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ट्रेंडी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यमी भी है। और क्या है ये आज का ट्रेंड पेट्रोल? एक ऐसी चटनी है जिसने मेरे FYP पर मेरा दिमाग खराब कर रखा हुआ है, बिकॉज आई कैन सी दिस पर्टिकुलर चटनी रेसिपी बीट इंस्टा बीट फेसबुक बीट टिकटॉक, आई कैन सी इट एवरीवेयर एंड आई कैन सी इट्स ट्रेंडिंग क्वाइट अ लॉट। और ये चटनी है कच्चे आम और टमाटर की चटनी। कच्चा आम, रो मैंगो एंड टमेटो चटनी बहुत ट्रेंड कर रहा है फिलहाल। मैंने ये जब रेसिपी देखी तो हाँ थोड़ी यूनिक तो लगी एंड लुक्ड वेरी यमी, तो आई वाज लाइक कि चलो जब यही ट्रेंड कर रहा है तो इसके बारे में बातें कर लेते हैं। आज कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना ट्रेंड पेट्रोल में भी।
1: हाँ, बट डबल खट्टा हो जाएगा ना वो तो।
3: हाँ वो तो है, बट लोगों को अच्छा भी तो लगता है। एंड द अदर थिंग, आप थोड़ा तीखा जब डालते हैं और नमक थोड़ा डालते हैं तो उससे खट्टापन थोड़ा बैलेंस भी हो जाता है। सो ये जो कच्चा आम और टमाटर की चटनी अगर आपको बनानी है, वेरी इजी। आपको क्या करना है, एक कच्चा आम लेना है और उसके जो साइड्स होते हैं ये स्लिट कर लेने हैं और उसको एज होल ये रख लेना है, जैसे व्हेन वी हाफ एन एवोकाडो तो उस तरह से जो साइड्स होते हैं आम के वो रखना है, ठीक है। और एक टमाटर लेना है और उसको आधा कर लेना है और उसको रख लेना है। व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज बेसिकली एक पैन में, नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालें और ये जो हाफ किए हुए आम के स्लाइसेस है और टमेटोज है, अगर आप दो टमाटर भी लेना चाहे इफ द टमेटो साइज इज क्वाइट स्मॉल तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये हाफ किए हुए जो टमेटोज और आम है इनको आप फ्लैश साइड डाउन ऑन द पैन जो है ये रखते एंड लाइट उसमें फ्लेम में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर ले आप। और उसमें चिलीज और गार्लिक ये भी डाले, फ्रेश चिलीज और गार्लिक ये भी आप डाले।
1: ओके,
3: एंड थोड़ी देर उसे कुक करने के बाद टर्न इट अराउंड एंड द अदर साइड जो स्किन साइड है वो कुक करें आप। प्रोबेबली लाइक यू कैन गिव इट अ गुड 3 मिनट्स ईच साइड एंड देन उसके बाद आप उनका छिलका जो है ये निकाल लें, आम का छिलका निकाल लो और टोमेटो का छिलका निकाल लो। और ये जो सारी चीजें हैं जिसमें आपने आम लिया है, रोस्टेड आम, रोस्टेड टोमेटोज, रोस्टेड चिलीज एंड गार्लिक्स, ये आप गार्लिक्स इसको आप अगर चाहे ब्लेंडर में डालकर पीस सकते हैं या फिर अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी डाल सकते हैं, बट पुट इट इन अ ब्लेंडर इफ इट्स इजियर फॉर यू। एंड आप आधा प्याज ले, कच्चा प्याज ले, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर जस्ट फॉर द कलर एंड ऑल, और उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपको डालना है एटलीस्ट 1 टीस्पून और थोड़ा सा चाट मसाला भी अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करनी है और आपकी चटनी हो गई तैयार। ओ बाय द वे, देयर इज वन मोर थिंग यू कैन पुट, धनिया की पत्ती, कोरिएंडर लीव्स अगर वो आपको चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल पुट धनिया ना इन द चटनी टू गिव दैट फ्रेश टेस्ट, तो वो भी आप डाल सकते हैं। डालकर अच्छे से पीस लो, पीसने के बाद एंजॉय द चटनी।
1: भाई आज ट्रेंडिंग चटनी आपके लिए तैयार हो गई ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, लेकिन अभी कोई एक चीज का तैयार होना बाकी है एंड दैट इज द कोड वर्ड फॉर टुडे। हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए रिटेन एयर टिकट टू फिजी चाहिए आपको, जीतने का मौका चाहिए, सुनते रहे किसी भी टाइम पर, ये आपके लिए आ सकता है।

0: celebrating local artists.
1: Back Your Backyard Beats.
2: तो बैक योर बैकयार्ड बीट्स और अपने वतन के कलाकारों को न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ के दौरान आपके लिए हम पेश करते रहेंगे। और आज के हमारे आर्टिस्ट जो है कोई और नहीं, हमारे अपने केतन, उनका ये गाना आप एंजॉय करें ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हमने कहा था कि भाई अभी आज का हमारा कोड वर्ड ये रिवील होना बाकी है, तो अभी ही चलो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं बिफोर आज का जो व्हाट्स योर टेक है ये हम शुरू करें आपके लिए। थोड़ी देर बाद टॉपिक हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पर आप रिटर्न एयर टिकट टू पीजी जीत सकते हैं।
1: हम आपको देंगे एक कोड वर्ड और वो कोड वर्ड आपको सुनने के बाद याद रखना है, इसकी स्पेलिंग याद रखनी है और फिर उसे आपको पोस्ट करना है जाकर रोवा ऐप पर। इस बात का आप ख्याल रखें कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि रोवा ऐप पर जब आप ये कोड वर्ड एंटर करते हैं तभी आपका नाम ड्रॉ का हिस्सा बनेगा हमारे फ्लाई अवे फ्रेंजी के तहत। सबसे जरूरी चीज कि ये जो कोड वर्ड है ये हम आपके लिए स्पेल आउट भी करेंगे, तो स्पेलिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। और अगर आपके पास रोवा ऐप नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लो टू मेक थिंग्स इजीयर, बट जस्ट इन केस आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एंड यू वांट टू टेक पार्ट इंस्टेंटली, तो hum.rover.nz दैट्स द वेबसाइट जहां पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये याद रखें कि वहीं पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप अच्छे से समझ सकते हैं फ्लाई अवे फ्रेंजी के कॉम्पिटिशन के लिए।
0: तो अब वक्त है अच्छी तरह से सुन ले आज का हमारा पहला कोड वर्ड एंड द कोड वर्ड इज यांड्रा। यांड्रा स्पेल्ड YANDRA, ये स्पेलिंग है और उसको प्रोनाउंस किया जाता है यांड्रा। तो कोड वर्ड आपको मिल चुका है, ऑल यू गॉट टू डू नाउ इज आप विजिट करें रोवा और जाकर अपना कोड वर्ड जो है ये जल्द से जल्द एंटर करें और बिकम पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ड्रॉ जहां पर बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि आप में से किसने रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीता है।
1: Absolutely. तो आपके पास 60 मिनट्स का टाइम है एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम।
2: Mornings made better.
3: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय।
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार।
4: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Bedzaras Manuko and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Right now at Guthrie Bowron, enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron, inspiration starts here.
9: Scammers want you to go fast, because when you rush, you can make mistakes. Like signing up a work email with a love you. Jumping into a stranger's car, thinking it's your Uber.
10: Oh, wrong one.
9: Choosing a tattoo.
11: I think it's a dragon.
9: Or transferring funds to a new bank account you've just received in a text. Mm-hmm. Security features in the BNZ app help to slow you down when scammers want you to speed up. Bank of New Zealand. Let's find a way.
12: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates, or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift pack from your local Lotto NZ store. R18.
13: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
14: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
13: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
14: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
15: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
4: What's your take?
0: What's your take? आपके लिए हर दिन हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर. और अभी सबसे पहले तो याद रखें कोड वर्ड हमारा रिवील हो चुका है. आप विजिट करें रोवर और जो कोड है उसे एंटर करें. एक घंटे का वक्त आपके पास होगा और हमें पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी सुन भी रहे हैं तो लगे हाथों ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आज अपनी राय जो है ये आप शेयर करें. जो आप फील करते हैं वो आप हमें बताएं. ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, पहले सुनाएंगे. एक ये जो शख्स हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, ही लिव्स इन नोएडा. और हालांकि वो वहाँ पर रहते हैं लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं ग्लोबली बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेट किया है और उनको लगा कि हाँ ये ठीक बात ही बोल रहे हैं. और आई ऑल्सो अग्री विद हिम, ओ या मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ. उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव है, ये एक कंसल्टेंट हैं. 6 महीने पहले ये शिफ्ट हुए नोएडा जहाँ पर उन्होंने नौकरी जो है ये शुरू की. 9 to 6 जॉब जो है इनको मिला. एंड इनिशियली जब हमें ऐसा कोई काम मिलता वी गेट ऑल एक्साइटेड एंड हैप्पी. लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है ये क्या रहा, कैसा रहा, पहले ये आप थोड़ा सुन लें.
10: I'm Aditya, a 21 years old consultant living in Noida alone. Your day doesn't start when you wake up. It starts when you check the time and realize you had already read. 9 to 6 looks small on paper, but somehow it takes your whole day. And by the time you get back, you are not tired physically, but you are just completely drained. But in these 6 months, I understood one thing. We don't get extra time. We just have to manage the little time we get for our health, for our personality, our skills. Because if you give everything to your job, there will be nothing left for yourself. So now I'm trying to build a life after 6 p.m. too. If you are figuring this out, follow along.
0: तो इन्होंने कहा कि 9 to 6 जॉब या फिर 8 to 5 जॉब, जो भी आप कहना चाहें, जो यहाँ पर आपके लिए रिलेटिव हो, ये आपको थकाता ही नहीं बल्कि आपको कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर दिया और कर देता है. और अगर इफ़ यू गिव एवरीथिंग टू योर जॉब, आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता है और पूरा दिन आपका इसी में निकल जाता. तो ये जब मैंने सुना, इनका जो वीडियो मैंने देखा, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी पूछते हैं कि आपको ये सुनाते हैं इनका ये ऑडियो और उसके बाद पूछते हैं आपसे कि डू यू फील द सेम और डू यू फील समथिंग डिफरेंट. जो भी जॉब आप करते हैं, चाहे 9 to 6 कर रहे हैं, 10 to 7 कर रहे हैं, जो भी आपका शिफ्ट है, जो आपने इनकी बातें सुनी हैं, ये जो शख्स हैं जिनका नाम हमने आपको बताया है आदित्य, इनकी बातों से क्या आप सहमत हैं? भाई काम तो करना है हम सभी को, नौकरी, चाहे आप खुद का काम कर रहे हैं या किसी और का काम कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि बगैर काम ज़िंदगी चलने वाली नहीं है. कितना आप देते हैं अपने काम को और अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं? क्या आपके पास खुद के लिए कुछ टाइम जो है ये बचता है? 0800-00-4866. गुड मॉर्निंग परविंदर.
11: गुड मॉर्निंग,
0: कैसी हैं आप?
11: बढ़िया, आप कैसे?
0: मैं भी बढ़िया हूँ, बताइए. आप तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर आपका काम जो है ये होता होगा ना, 8 to 5 या समथिंग लाइक दैट.
11: हाँ, तो होता है ऐसा कि ट्रेनिंग तो होता ही है, ऑब्वियसली कोई भी काम ट्रेनिंग होता है, फिजिकली नहीं तो मेंटली. और थकान भी हो जाती है और उसके अलावा कुछ और करने का टाइम नहीं मिलता राइट नाउ. पहले तो मैं फिर भी कर लेती थी, पर जब से मेरा बेटा हुआ है तब से घर जाते ही खाना वगैरह बनाना, कभी मेरा हस्बैंड भी कर देता जब उसकी छुट्टी होती है तो. बट फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है कि खुद के लिए टाइम बचता ही नहीं है. अगर मैं सोच भी लूँ, जैसे मुझे थोड़े मेडिकल इश्यूज है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर लूँ. जब सारा कुछ फिनिश करके टाइम देखती हूँ ऑलरेडी 9:30 10 हो गया होता है.
0: अच्छा, तो डांस करने का टाइम मिलता है आपको कि नहीं? अब
11: नहीं मिलता,
0: नहीं मिलता।
11: जब मेरी मदर इन लॉ थी लास्ट ईयर, तब मैं फिर भी कर लेती थी क्योंकि वो फिर मेरे बेटे को संभाल लेते थे।
0: अपना
11: अभी वो भी नहीं मिलता।
0: अपना जो
11: में कर लेती हूँ थोड़ा।
0: ओके, अपना जो प्रोफेशन है, जो काम आप करती हैं, उसको आप एक दिन में कितना टाइम देती हैं? 8 to 5 मान लीजिए आपके वर्किंग आवर्स है, या 9 to 6 वर्किंग आवर्स है, क्या आप उतना ही टाइम एलोकेट करती हैं या उससे आगे पीछे भी और टाइम एलोकेट करना पड़ता है आपको?
11: नहीं, आगे पीछे हो जाता है, कभी लेसन प्लानिंग करनी होती है, कभी पेपर मार्क करने होते हैं, कभी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं।
0: तो आप
11: तो निकल जाता है टाइम।
0: तो आदित्य ने जो बात कही है, क्या आप उससे सहमत हैं?
11: हाँ बिल्कुल, हर कोई सहमत होगा मुझे लगता है।
0: ओके, थैंक यू सो मच परविंदर आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग अफाज।
16: गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग?
0: हम तो ठीक है, आप कैसे हो?
16: बस मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या खड़खड़ा रहे हो सुबह सुबह?
16: अरे सॉरी,
0: अच्छा हाँ बताइए।
16: तो हाँ, मैं इसका अग्री करता हूँ क्योंकि लाइक अपार्ट फ्रॉम, अगर वीकेंड मुझे लगता है कि वेरी हार्ड कि आप अपने आप को टाइम दे पाओ। अब जैसे मेरा जॉब है 6 to 6 होता है, तो मुझे जैसे 5 बजे आप उठो और फिर या यू हैव टू बी एट वर्क, और जब आप 6 बजे फिनिश करके घर पहुंचते हो 7-8 बज जाते हैं, देन यू प्रिपेयर योर फूड एंड देन ईट एंड देन स्लीप, तो इट्स वेरी हार्ड, मुझे भी लगता है सर। टू बी
0: ओके, थैंक यू सो मच आपके भी कॉल के लिए, ये भी सहमत है। गुड मॉर्निंग, हेलो।
17: गुड मॉर्निंग विजय भाई, कैसे हो?
0: मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई?
17: बस बढ़िया
0: जी।
17: राम सिंह बात कर रहा हूँ।
0: अरे हाँ राम भाई, बताइए। आप तो इतना कुछ करते हैं, आप इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व थे पहले, क्या अभी भी वैसा कर पाते हैं आप?
17: अब तो एक बच्चा और आ गया है।
0: अच्छा,
17: एड ऑन हो गया टास्क। अभी तो अरे मुद्दे की बात है, अगर कहीं पहुंचना है तो एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा ना।
0: हाँ वो भी सही है।
17: तो अभी स्टडी चल रही है, जॉब भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है, बच्चा भी है, सब कुछ चल रहा है।
0: सब कुछ चल रहा है। अपने लिए कितना टाइम आप निकाल पाते हैं?
17: अपने लिए टाइम चुराना पड़ता है। जैसे कोई जॉब करने गए हैं, 2-2.5 घंटे का काम है, तो चलो 3-4 घंटे के लिए बीच पे चले गए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। आप भी हमें बता सकते हैं, आदित्य ने जो बात कही है, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है जो मुद्दा उन्होंने उठाया है? 6 महीने हुए हैं और ये उनकी पहली नौकरी है, शायद पहली नौकरी में उनको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अब आई एम गेटिंग इनटू द वर्क फोर्स, मेरी ज़िंदगी जो है ये बदलने वाली है, पैसे कमाऊँगा ज़िंदगी में, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारे सपने लेकर वी गेट इनटू द वर्क फोर्स, और हकीकत से जब हमारा सामना होता है तो शायद कभी कभार ऐसा होता है कि हकीकत हमें कुछ और ही मिलती है, या हकीकत जब मिलता है तो हकीकत से जब सामना होता है तब हम सोचते हैं भाई हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, या हमने ऐसा नहीं सुना था, हमें तो लगा था कि भाई 9 to 5 9 to 6 आराम से नौकरी करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे और अपनी खुद की ज़िंदगी जो है ये जिएंगे, एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे, मैच देखेंगे, जो कुछ भी करना है वो करेंगे। लेकिन व्हेन यू गेट एक्चुअली इनटू द वर्कफोर्स, इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। तो वो हम आज आपसे जानना चाहते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल आदित्य वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भाई 9 to 6, एक तो सुबह जब आप उठते हो ऑलरेडी आपको पता चलता है कि भाई अब देर हो रही है, जल्दी भागकर ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, और फिर शाम को 6 बजे जब काम खत्म करता है बंदा, उसके बाद घर आता है। जैसे अफाज ने बताया कि घर पहुंचते तो वैसे 7 बज जाते हैं इनको, एंड उसके बाद बाकी का काम निपटा, और फिर कल दूसरे दिन की तैयारी भी एडवांस में यहाँ पर करनी पड़ती है। कई लोग जो हैं अपना सब कुछ तैयार करके रख लेते हैं, सुबह उठना, तैयार होना और फिर निकल पड़ना, इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं। तो आपकी भी जो राय है वो आप हमें बता सकते हैं, 5599 हमारा नंबर है, जिस पर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं ये हमें ज़रूर भेज सकते हैं। वक्त है अभी आपके पास, और अपने मैसेजेस आप हमें ज़रूर भेजें।
2: Bollywood's most wanted.
18: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
19: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Auckland Airport, park and ride.
4: Fine today, a bit of cloud, a high of 19. In on the southern motorway, 47 minutes to the city from Monaco. We're slow from Papakura, the heaviest through Mount Wellington, a few other spots. Slow northbound on the southwestern at Whitty, not bad the other way. Northwestern, 35 in from Massey, slow all the way from Upper Harbour, heavy at times, and northern 35 from Constellation, heavy at Silverdale and Greville to the bridge.
3: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
5: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
6: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Clubcard. Only at New World. T's and C's apply.
7: Now's the time to send Mum something she'll love this Mother's Day. With over 560 stores across the country, it's easy to make Mum's Day with NZ Post. Find your local at nzpost.co.nz.
8: Stuck in the daily grind? Discover where your next adventure could take you at the Auckland Travel Show this Saturday and Sunday at the New Zealand International Convention Centre. With over 60 exhibitors, discover destinations like Sri Lanka, Europe, China, the Pacific Islands, loads of cruising, tours and more. Plus, go in the draw to win business class flights with Malaysia Airlines. T's and C's apply. Go to travelshow.co.nz for info and tickets. Discover, plan, book.
9: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: रश आवर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं और ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें जिसके बारे में सुबह से हम आपसे बातें कर रहे हैं. आज भी एक ऐसी ही चीज आपके लिए हम लेकर आए हैं. 1996 में आई थी एक फिल्म और इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर्स थे वो तो कमाल के थे ही, लेकिन इस फिल्म की कमाल की बात यह थी कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि एक मेल को, एक आदमी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये दिया गया था.
11: हैं?
10: जी, आई नो इट्स क्वाइट एस्टोनिशिंग टू हियर दिस, बट इट हैपेंड फॉर अ रीजन. एंड कौन थे ये शख्स जिनको ये अवार्ड मिला था ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मूवी दायरा. 1996 में आई थी एंड अमोल पालेकर जो है इन्होंने इस फिल्म को बनाया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था विच ब्रोक ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इट्सेल्फ. एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो फ्रांस में हुआ था, यहाँ पर जो मेल एक्टर थे जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फॉर हिज एक्सलेंट एक्टिंग स्किल्स. द इंटरेस्टिंग थिंग वॉज कि उनकी जो को स्टार है उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और उनको अवार्ड मिला भी था. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द मूवी जिसने जेंडर आइडेंटिटी पर काफी क्वेश्चन जो है कई साल पहले जो है ये उठाया था व्हेन इट केम टू द ईयर 1996. अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप जरूर इसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी एंड ये आप जरूर जाकर देख सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इट वॉज नन अदर देन निर्मल पांडे जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था टू प्ले अ फीमेल कैरेक्टर इन द मूवी, और सोनाली कुलकर्णी जिनको बेस्ट एक्टर के अवार्ड के कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था. बट निर्मल पांडे अपेरेंटली गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी डिस्पाइट बीइंग अ मैन.
11: अच्छा, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस मूवी, मैंने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना था. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि क्या है इस फिल्म में और क्या कहानी थी, निर्मल पांडे ने क्या ऐसा किया था. एंड सोनाली कुलकर्णी ऑब्वियसली बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है. निर्मल पांडे जो है इन्होंने भी अपने टाइम में बहुत सारी फिल्मों में काम किया था और अच्छी खासी पहचान जो है ये बनाई थी. तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं पता लगा सकते हैं. आई विल ऑब्वियसली गो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट कि अमोल पालेकर ने जो दायरा फिल्म बनाई थी वो दरअसल में क्या थी. एंड ट्राई एंड वॉच इट.

0: नंबर यार।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
3: The Breakfast Show.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
1: थोड़ी देर बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे और बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये मैं पढ़ रहा था और जहाँ पर एक हैदराबाद बेस्ड अमेजोन एम्प्लॉई है जिन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं जो आपको कभी भी अपने कोलीग्स के साथ या अपने काम पर रिवील नहीं करना चाहिए या शेयर नहीं करना चाहिए. एंड ये जो चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने बताई हैं, नंबर 10, कॉन्फिडेंशियल कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये रिवील नहीं करना चाहिए. नंबर 9, टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन. नंबर 8, अगर आप कहीं नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यू शुड नॉट शेयर, ये इनका कहना है.
2: ओके.
1: नंबर 7, इन्होंने कहा है बॉस कंप्लेंट्स. उन्होंने कहा कि वेंटिंग में फील गुड बट इट ऑफन बैकफायर्स. नंबर 6, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये उन्होंने कहा कि नहीं शेयर करना चाहिए. नंबर 5, हेल्थ डिटेल्स, उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके इसे कॉन्फिडेंशियल रखें, शेयर ओनली इफ इट इज नेसेसरी. नंबर 4, रिलेशनशिप ड्रामा, ये दूर रखें. नंबर 3, नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट कोलीग्स, You should not share them with other workmates. ये उनका कहना है. और नंबर 2, ऑफिस गॉसिप्स. एंड नंबर 1, क्या चीज हो सकती है?
2: सैलरी प्रोबेबली.
1: यस.
2: सी,
1: उन्होंने कहा है कि सैलरी इंफॉर्मेशन जो है ये प्राइवेट रखना चाहिए क्योंकि कंपेयरिंग नंबर्स ओनली ब्रीड्स टेंशन.
2: ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये सारी चीजें, उम्मीद है कि आप भी थोड़ा समझे और इन्हें याद रखें और इनके बारे में ज्यादा बातें अपने कलीग्स के साथ ना करें. फिलहाल चलिए थोड़ी देर बाद आज का क्या बकते हो ये आपके लिए हम लेकर आएंगे. दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई वुड लव टू हियर आपके रिएक्शंस आज के इस क्या बकते हो स्टोरी के लिए.

0: कम से कम 11 डिग्रीज रहेगा। फाइन स्पेल्स, कभी कभार कुछ हल्की बारिश भी हो सकती है। सनसेट आज का 5:34 PM पर होगा।
1: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. What's going on? क्या बकते हो?
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: So मैंने कहा था ना कि आज का जो क्या बकते हो ये अगर आप सुनोगे तो definitely आप बोलोगे कि यार क्या बक रहे हो, but it actually happened and this is something that made me think like कि ये क्या हो रहा है। Apparently हरियाणा सोनीपत में एक शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी बीवी को मनाने का, क्योंकि उनकी बीवी जो है कि उनसे नाराज़ हो गई थी और फिर वो अपने मायके चली गई थी। एंड इन ऑर्डर टू persuade her टू रिटर्न होम, इस शख्स ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। मुझे नहीं पता इसके बाद इनकी बीवी मानी है कि और नाराज हो गई है, बट ये बताया गया है दैट इनकी बीवी जो हैड लेफ्ट आफ्टर एन आर्गुमेंट एंड हैड बीन स्टेइंग अपने पेरेंट्स के घर फॉर सेवरल डेज, रिफ्यूजिंग टू गो बैक विद हर हस्बैंड। आई विटनेसेस ने कहा कि ये जो शख्स है, इन ऑर्डर टू गेट हिज वाइफ बैक, उन्होंने एक वो सपेरों को बुलाया जो बीन के साथ आए और इनके ससुराल यानी कि बीवी के मायके के घर के बाहर खड़े होकर बीन बजा रहे थे। उन्होंने बीन बजाना जो शुरू किया, बीन बजाया और ये पूरा का पूरा जो एक्ट है इन्होंने स्टेज के ने एफर्ट टू ग्रैब अटेंशन और जो टेंशन भरा माहौल है उसे थोड़ा यू नो टेंशन फ्री किया जाए।
5: ये तो और टेंशन क्रिएट कर देगा भाई, आप बीवी को मनाने आए हो और बीन बजा रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंप्लाई?
4: आई नो, देखो समझदार को इशारा काफी है, मैं तो बोल नहीं रही हूँ इसीलिए समझदार को इशारा काफी है। बीवी को मनाने के लिए कोई आदमी सपेरे को लेकर क्यों जाएगा और सपेरा बीन क्यों बजाएगा? अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इस पर ऐसा हुआ। एंड व्हाइल द इंसिडेंट ड्यू क्यूरियोसिटी एंड अम्यूजमेंट अमंग्स द लोकल्स, ये अभी भी अनक्लियर है कि ये जो जेस्चर है उनका, उनसे उनकी पत्नी और नाराज हुई या फिर वापस घर आई, वो भी क्लियर नहीं हुआ है। बट आई फेल्ट लाइक इट वॉज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया और ऐसे मतलब क्रिएटिविटी के मामले में ना जो इंडियंस है ये इतना आगे, आज तक शायद इतिहास में कभी भी, दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी पति ने अपनी रूठी हुई पत्नी को मायके से बुलाने के लिए एक सपेरे को मनाया जिनको वो लेकर गए वहां पर मायके में, बीवी के मायके पर दरवाजे पे खड़े कर उनको बीन बजवाया।
5: शायद उनकी बीवी को ऐसा म्यूजिक पसंद होगा ना।
4: यार कम ऑन, आई नो यू आर नॉट दैट क्या बोलते हैं भोले भाले, कि आपको पता नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उतने तो नादान नहीं हो आप आपको समझ में सब आ रहा है पर आप बोल नहीं रहे, एंड इट्स गुड, बोलना भी मत, पर एंजॉय दिस स्टोरी।

0: आतिफ असलम और मदर्स डे पर उनका ये बहुत ही लाजवाब गाना हम पेश कर रहे थे। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोव पर और मदर्स डे के मौके पर एक तरफ, जबकि हमारे फेसबुक पेज पर $200 कैश जीतने का मौका हम आपको दे रहे हैं, तो वहीं लाइव ऑन एयर मम्स मूड स्विंग्स में आप योर शेयर ऑफ $600 कैश जीत सकते हैं।
1: और आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है, हम आपको एक सिचुएशन यानी कि एक सिनेरियो देंगे एंड ऑल यू नीड टू डू इज आपको बताना होगा कि आपकी मम्मी उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगी या उनका रिएक्शन जो है ये कैसा होगा। एंड वंस यू डू दैट तो आप हमारे साथ ड्रो का हिस्सा बनेंगे एंड इस ड्रो में शामिल होकर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जीत सके योर शेयर ऑफ $600 बिकॉज वी आर गिविंग अवे अ टोटल ऑफ $600, थर्ड प्राइज में $100, सेकेंड प्राइज में $200 और फर्स्ट प्राइज में $300 जीतने का मौका है।
0: और ड्रो इसी फ्राइडे को होगा और संडे को आप मदर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया वक्त पर आपके लिए आ सकता है। अब लाइंस इससे पहले हम आपके लिए खोले 0800 00 हम, उससे पहले आज का सिनारियो,
1: आज का सिचुएशन, चलिए लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू यू नो हैव आई मीन इफ यू हैव एक्चुअली बीन थ्रू दिस। और ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, सॉरी मैंने दो तीन सिचुएशन कन्फ्यूज कर दिया, आई थिंक वी हैव डन दिस वन बिफोर, जस्ट गिव मी अ मिनट, जब तक हम कॉल्स इनवाइट कर रहे हैं नंबर आप फिर से बता दीजिए, मैं एक और एक सिचुएशन निकाल लेती हूँ फटाफट।
0: 0800 00 हम 0800 00 4866 ये हमारा नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है और जो भी सिचुएशन हम आपको देंगे उस सिचुएशन पर आपकी मम्मी का रिएक्शन कैसा होगा ये आपको बताना होगा, और वो भी आपकी मम्मी के स्टाइल में, उनके अंदाज में।
1: राइट, सो सिचुएशन तैयार है, आज का सिचुएशन ये है, मम्मी गई है बाहर शॉपिंग करने और आप हो घर पर। नाउ मम्मी हैड टू लीव, सो उन्होंने क्या किया, घर पर से जाने से पहले आपको बता दिया कि अच्छा आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग यू नो ग्रोसरीज वगैरह लेने, तो बाय द टाइम आई कम मेक श्योर ये किचन साफ हो जाना चाहिए, ये लिविंग रूम साफ हो जाना चाहिए एंड ये जो कचरे वगैरह घर के अंदर पड़े हैं इसको बाहर फेंक देना, पुट इट इन अ बिन एंड जस्ट लीव इट आउटसाइड। एंड आज डिनर में लेट्स पुट इट दिस वे, आज डिनर में कुछ बनना है, अगर नॉन वेज है तो चलो चिकन बनना है, राइट, एंड इट्स इन द फ्रिज, यू हैव टू टेक इट आउट फॉर इट टू बी डिफ्रोस्टेड ऑन टाइम ताकि उसे वो आकर वापस कुक कर सके। और अगर आप वेज हैं और कुछ फ्रोजन वेजीज है सपोज, या फिर दाल है या कुछ जो बनाना था जो आपको भिगोने के लिए बताया उन्होंने, ठीक है,
0: okay.
1: तो इस हिसाब से सोच लीजिए, अभी आपने बोला या हो जाएगा, डोंट वरी, ऑल गुड ऑल गुड, आप जाओ आराम से जाओ, मैं सब कर दूंगी या कर दूंगा, एंड मम्मी इज गॉन एंड जैसे वो गई आप आराम से सोफे पर लेटे लेटे स्क्रॉल कर रहे हो ऑन योर इंस्टा और टिकटॉक वट एवर यू फील लाइक स्क्रॉलिंग ऑन एंड यू डूइंग दैट एंड देन आधा घंटा एक घंटा वन हाफ आवर्स गए एंड देन सडनली मम्मी कॉल्स एंड शी इज लाइक आई एम जस्ट 10 मिनट्स अवे एंड आई होप वट एवर आई टोल्ड यू किचन साफ है लिविंग रूम साफ है एंड जो मैंने बोला था डिनर के लिए चिकन निकालना या दाल भिगोना यू हैव डन दैट And then you realize you have not done anything. उन तीनों कामों में से कोई एक काम आपने नहीं किया। अब 10 मिनट बाद मम्मी घर पर आएंगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा?
0: गुड मॉर्निंग, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग,
0: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बढ़िया हैं, क्या नाम है आपका मैम?
2: पूजा।
0: ओके पूजा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा रिएक्शन?
1: कभी फंसी ऐसे सिचुएशन में आप?
2: हाँ फंसी हूँ एक बार, थोड़ी जब छोटी थी, अब तो शादी होगी अब तो नहीं, लेकिन तब फंसी थी जब छोटी थी।
0: हाँ।
2: इंडिया में जब थे तो ऐसे मम्मी जॉब करते थे तो मम्मी जैसे जाते थे कि अच्छा ये काम है ये सब कर देना और हम अब शाम को जैसे मैं तब आऊंगी, स्पेशली हॉलीडेज में जब स्कूल हॉलीडेज थी।
0: हाँ।
2: तो जैसे लिस्ट बना दी मम्मी ने, अच्छा ये सब कुछ करके रखना अब हम दोनों बहन भाइयों के लिए, और हम लोग बस सारा दिन सिर्फ खेलना खेलना कुछ काम नहीं करना, लपत रखी, अब मम्मी आने वाली है, अच्छा 5 बजे मम्मी ने आ जाना है, और फिर हम 4:30 शुरू भागते थे करने के लिए, लेकिन हो तो पाता नहीं था फिर भी सारा काम।
0: हाँ।
2: फिर मम्मी अभी तुम लगे हो ना, आ जाओ जरा तुम अभी, फिर खूब दोनों की तब तो पिटाई भी होती थी लेकिन फंसे बहुत बार, फंसे ऐसे तो
0: बहुत बार फंसे। कौन ज्यादा फंसता था, आप या भाई आपके?
2: एक्चुअली हम दोनों ही फंस जाते थे, लेकिन वो छोटा था तो बच जाता था, मैं ज्यादा लिपट जाती थी मम्मी।
0: अच्छा ओके पूजा जी,
2: छोटा सा था।
0: थैंक यू।
2: ओके जी,
0: थैंक यू, यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज इनका नाम हम ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं। लिसन आउट, अब और भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। वी आर इनटू द फाइनल वीक ऑफ द कंपटीशन और ड्रॉ भी इसी हफ्ते होना है, तो मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही हैं।
3: व्हाट्स गोइंग ऑन,
4: व्हाट्स अप ऑकलैंड,
0: बताते हैं आपको व्हाट्सएप ऑकलैंड क्या हो रहा है इस हफ्ते में। और सबसे पहले तो मेनकाओ चैरिटेबल क्लब इन एसोसिएशन विद भक्ति सत्संग बॉयज इसी फ्राइडे को वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एव पापाटोयोटो में भक्ति कीर्तन संध्या होने जा रही है। और इसके लिए फिजी से आ रहे हैं नितिन नीलेश प्रकाश और इनके साथ रहेंगे ऑकलैंड के दवेन नाथ। इन दोनों कलाकारों को एक साथ देखने का बहुत ही लाजवाब मौका। और टिकट सिर्फ $20 है जो आप ले सकते हैं जेस फ्रेश मार्ट और केंद्रीय फैशन से। एंड इसी फ्राइडे को शामिल हो जाइए वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोयोटो में।
1: इसके अलावा आपको याद दिला दे कि भोजन मेला यानी फूड कार्निवल ये होने जा रहा है श्री वेंकटेश्वर देवस्थम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संडे 17th ऑफ मई को। दिन में 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये रहेगा। एंड दिस इज बेसिकली टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट ऑफ ये टेम्पल प्रोजेक्ट फॉर लॉर्ड वेंकटेश्वरा और 378 आर आर रिमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में ये रहेगा। सो इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज ऑन द डे व्हिच इज द 17th ऑफ मई, दिन में 11 से शाम 4 बजे के बीच आप पहुंच सकते हैं गिवन वेन्यू पर। एंट्री बिल्कुल फ्री है, डोंट नीड टू पे एनीथिंग। यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और खाना ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन कुछ रिटेल स्टोर्स रहेंगे जिनमें क्लोथिंग या ज्वेलरी स्टोर्स भी शामिल है। देन यू कैन गो एंड शॉप अराउंड एंड लुक अराउंड एंड हेल्प सपोर्ट द कोर्स। अगर आपको मेहंदी वगैरह लगवाना पसंद है तो ये भी यहाँ पर होगा, फेस पेंटिंग होगा और बच्चों के लिए बाउंसी कासल भी है।
0: तो आप जरूर जाकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड का 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये रहेगा सैटरडे 16th मई को मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाइकाउरी प्लेस मैंगरी में शाम 4:30 बजे से नेटवर्किंग टी एंड स्नैक्स जो है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। और 5 बजे से औपचारिक प्रोग्राम जो है ये शुरू होगा जिसमें कैंडल कमेमोरेशन, आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले, सीनियर्स का रिकॉग्निशन अवार्ड, कल्चरल परफॉर्मेंस, लाइव एंटरटेनमेंट, रोल प्ले, क्विज, स्पॉट प्राइजेस और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। तो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए ये खास प्रोग्राम 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे का हिस्सा आप बन सकते हैं सैटरडे 16 मई को मलायोला कम्युनिटी सेंटर पर शाम 4:30 बजे से ये होने जा रहा है।
1: सो याद रहे अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी जानकारियां अन्य लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज हमारे पास ये सारी डिटेल्स आप ईमेल कर दें buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर। और ये आपके लिए व्हाट्सएप ऑकलैंड के दौरान ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम जरूर लेकर आएंगे। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको हम देने वाले हैं। 25th ऑफ जुलाई को सुपर सिटी ऑकलैंड आ रहे हैं राहत फतेह अली खान परफॉर्म करने के लिए। एंड इफ यू वांट अ चांस टू विन डबल पासेस फॉर दैट, तो इसके लिए हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि ये मौका कमिंग अप वेरी शॉर्टली।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
5: हे देखो हम आ गए।
3: You get money, get back. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
6: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed Business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
7: Global fuel prices are impacting Kiwis. So these easy tips could help you stretch up to 20% more from every tank and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tyre pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
8: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favourite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
9: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
10: In this final hour, when the lives and well-being of your fellow country folk hang in the balance, is it you here that rise to answer NZ Blood's call?
11: Do they have parking?
10: There is some.
12: Are there biscuits?
10: Of course.
13: Can I do it during work hours?
10: Don't know. Talk to your manager. Probably.
14: Join forces and save lives. Plasma donations are powerful and help create up to 11 life-saving products. Book your plasma donation today at nzblood.co.nz.
15: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: तो हमने आपसे कहा था कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन मौका हम देंगे और वो है ये कि अगर आप भी जीतना चाहते हैं एक डबल पास टू गो इन सी राहत फतेह अली खान राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज ऑन द 25th ऑफ जुलाई एज ही विल बी परफॉर्मिंग एट द ट्रस्ट अरेना तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है. बट बिफोर एवरीथिंग लेट मी रिमाइंड यू जेके स्टार प्रोडक्शंस गोट लाइव ड्रीम्स एंटरटेनमेंट सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन आपके लिए ये बहुत ही शानदार इवेंट लेकर आ रहे हैं. अ नाइट ऑफ अनफॉरगेटेबल म्यूजिक ब्यूटिफुल पावरफुल वोकल्स एंड ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान द लेजेंडरी जो कि जब भी स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो लोग एकदम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं. आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम ही केम बहुत सारे लोग इनको देखने गए थे एंड एवरीवन हैड द सेम थिंग कि माय गॉड ही इज सच एन अमेजिंग परफॉर्मर फॉर सो मेनी आवर्स स्ट्रेट ही सेट देयर एंड ही परफॉर्मड फॉर अस व्हिच वाज सो अमेजिंग. तो ये एक चीज होती है जब कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आते हैं और आपके लिए वो परफॉर्म करते हैं एंड जितनी शिद्दत के साथ वो परफॉर्म करते हैं वो जब आप तक पहुंचती है देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट आर्टिस्ट इवन मोर. सो अगर आपने पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस नॉट पिछले साल द लास्ट टाइम व्हेन ही केम ये आपने मिस किया था ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस बार आप ये मिस बिल्कुल भी ना करें और इनके कमाल के शो का हिस्सा बने कॉन्सर्ट को इंजॉय करें 25th of July को at the Trust Arena. Tickets आप ले सकते हैं drytickets.com विजिट करते हुए. Remember, drytickets.com यहां से आप अपने लिए टिकट्स जो है ये जरूर ग्रैब कर सकते हैं.
3: तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और जब से इनका जो इस साल का कॉन्सर्ट है ये अनाउंस हुआ है ऑलरेडी जो लोग पिछली बार इनको देखने के लिए गए थे वो पहले से ही एक्साइटेड होकर तैयार हो गए कि भाई इस टाइम भी हम इसे मिस नहीं करना चाहते हैं. तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जो ये मिस नहीं करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी अब आपके पास है और इस अपॉर्चुनिटी का आपको भरपूर फायदा उठाना है क्योंकि हम आपके लिए कुछ बहुत ही खास करेंगे.
2: बिल्कुल, अब हम आपको दे रहे हैं मौका पास जीतने का जिसके लिए आपको बस एक चीज करनी है. सबसे पहले तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ध्यान से सुनना है. आपके लिए हम राहत फतेह अली खान साहब का जो एक गाने का लाइन है ये प्ले करेंगे बट वी विल नॉट प्ले द कम्प्लीट लाइन. वो पूरा का पूरा लाइन हम नहीं प्ले करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्ले कर एंड देन विल स्टॉप एंड एज सून एज वे एवर वी स्टॉप उसके बाद आगे की जो लाइन है वो आपको कंप्लीट करनी होगी.
3: आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा RFK, उसके बाद गाने का अगला लाइन और अपना नाम. ये सारी चीजें लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजना है.
2: एंड
3: इफ यू गेट इट राइट, इफ यू डू इट करेक्टली, यू आप उस ड्रॉ में शामिल होते हैं जिसमें आप जीत सकते हैं डबल पासेस.
2: ये जरूर याद रखे कि वर्ड बाय वर्ड आपका जो आंसर हो ये करेक्ट होना चाहिए, ओनली देन आप इसका हिस्सा बनेंगे. सो करेक्ट एंट्रीज विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ टू विन द डबल पास. सो गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट चलिए आज का गाना सुनाते हैं और कौन सी लाइन मिसिंग है इस बात का ख्याल रखे आप थोड़ा नोटिस करें एंड सून एज यू गेट द आंसर कंप्लीट द लाइन ये याद रखे जैसे कि हमने कहा द की वर्ड इज RFK.
3: तो ये है आज का गाना, अच्छी तरह से सुने.

0: तो ये है एक लाइन. अब इससे आगे का लाइन जो है ये आपको हमारे पास टेक्स्ट करना है.
1: सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, सीरियसली. ऐसा दिल करता है कि जब ऐसे गाने प्ले हो तो रुकने नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. वी आर नॉट प्लेइंग सॉन्ग राइट नाउ. वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और दिस ब्यूटीफुल वॉइस. तो आपको तो 25th ऑफ जुलाई को ट्रस्टी एरिना में रहना है. एंड फॉर दैट टिकट्स dryTickets.com से लेने हैं. बट फिलहाल अगर पासेस जीतना है तो इस गाने के लाइन को कंप्लीट करें. RFK लिखें, बाकी आगे का जो वर्डिंग्स है कि लिखें टू कंप्लीट द लाइन. अपना नाम लिखें और भेज दे 5599 पर.
0: तो अच्छी तरह से सुन ले एक बार फिर आज का जो गाना है.

0: तो आरिफ कहें इसके बाद वाला लाइन और अपना नाम ये 5599 पर अब आप हमें भेज सकते हैं।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: यो हनी सिंह और उनके साथियों से ये गाना आपके लिए रहा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और अभी 23 मिनट रह गए हैं 10 बजने में। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म जो है एक दिन, ये बहुत ही क्वाइटली आई
1: अभी। आई थिंक इसके बारे में इनफेक्ट नहीं, पहले से काफ़ी बातें हो रही थी, बट उतना ग्रैंड कुछ नहीं हुआ। आई थिंक पीपल काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम द मूवी, बट डोंट रियली नो हाउ इट हैपेंड।
0: अभी उतनी अच्छी शुरुआत इस फिल्म को नहीं मिली है, एंड इसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है लार्जली अगर देखें तो अभी नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा मिले हैं। एंड आमिर खान प्रोडक्शंस जो हैं ये बैक भी कर रहे हैं इस फिल्म को, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन एक दिन को मिला है फ्रॉम रितेश देशमुख की राजा शिवाजी और अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी भूत बंगला ना
1: जी,
0: और हॉलीवुड से द डेविल वेयर्स प्राडा 2 ये आई है, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी टफ है। एंड एक दिन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेक इट थ्रू।
1: सो लेट्स सी, साई पल्लवी की आई थिंक ये पहली फिल्म थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक दिन, बिकॉज रामायण इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जिस पर ये काम कर रही है, एंड शी विल बी सीन ऑपोजिट रणबीर कपूर, बट उससे पहले ये रिलीज हुई है। सो हाउ इट वेंट, व्हाटएवर अप्रिसिएशन फार इज इनके कैरेक्टर, इनके इस फिल्म के स्टोरी लाइन को दिया गया है या नहीं, ये तो खैर बाद में चलकर जरूर पता चलेगा। बट राइट नाउ देयर सम अदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स इंस्टेंट जो आने वाली है बहुत ही जल्द, इनके बारे में भी बातें करेंगे आपसे।
0: और जो गाना हमने आपके लिए पेश किया था आज राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए, आप में से कई लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं
1: जी, तो आपने जो लाइन जहाँ तक बजाई थी पहले वो प्ले कर दी आप।
0: तो पहले हमने आपको सुनाई थी ये लाइन।

0: पूरा का पूरा ही सुना दिया मैंने,
1: कंप्लीट कर दिया आपने। तो मैंने बोला था वो लाइन सुनाओ जो आपने पहले बताया था, पर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। एनीवे सो या तो उसके बाद वाली मतलब उसके आगे वाली जो लाइन थी कभी तो किनारों पे किनारे पे, वहां से जो लाइन है
0: हाँ, उतर मेरे सपनों से आजा जमी पे
1: और मिल जा कहीं पे। ये सो आई मस्ट से कि ऑल ऑफ यू हैव सेंट इट करेक्ट। कुछ लोगों ने पूरा वो स्टांजा ही कंप्लीट कर दिया, पहला स्टांजा, कुछ लोगों ने फर्स्ट लाइन जो है वो कंप्लीट की हुई है, पर आपने सही सही भेजा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नवजोत सिंह जी ने तो पूरा ही लिखकर भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मीनल है क्राइस्टचर्च से, इन्होंने भी अपना जवाब जो ये भेजा है। सुनील है, सिड आपका भी आंसर मिल चुका है, साथ में विशाल है, दीपशिखा है, ज्योति थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए, धवल देसाई है, सलमा है, आपका भी जवाब हमें मिल चुका है, प्रशांत है, हरदीप है, सबके आंसर्स मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली करेक्ट तरीके से और करेक्ट लिरिक्स जो आपने भेजे हुए हैं, वी आर पुटिंग योर नेम इन द ड्रॉ।
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
3: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय,
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी ल्यूक वॉर्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए।
4: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
5: It's nesting season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas, including fabric and leather sofas, modulars and recliners. Enjoy more comfort for less this nesting season. Only at Freedom.
6: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
7: A damp home is harder to heat over winter. By letting fresh air in each day and reducing moisture from things like cooking and washing, you can keep dampness down. To find tips for keeping your home warm and dry, search EECA. That's EECA. Get winter ready.
8: Menakau Charitable Club in association with Bhakti Satsang Boys la rahe hain Bhakti Kirtan Santhya Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center 32 Glasgow F Papatoetoe mein, jisme kalakar rahenge Fiji ke Nitin Nilesh Prakash aur New Zealand ke Davin Nath. Do pahunche hue kalakaron ko ek saath dekhne ka anokha mauka. Tickets sirf $20 hain. Taiyar ho jaiye Bhakti Kirtan Santhya ke liye Friday 8 May ko raat 7 baje se Vedic Center Papatoetoe mein.
9: Tiger Bar and Restaurant in Soho Hotel Mount Roskill. आए और enjoy करें इनका sophisticated dining experience, जहां पर आपको तरह तरह के flavors मिलेंगे. Creative Asian fusion dishes से लेकर zesty seafood तक, साथ में refreshing cocktails, सब कुछ एक बहुत ही elegant और stylish अंदाज में. ये open है for breakfast, lunch and dinner. Close to Auckland CBD and minutes away from the airport. Tiger Restaurant Bar in Soho Hotel, Stodart Road, Mount Roskill. Visit Tiger at soho.co.nz.
10: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
11: Dash! Savior of the lunchbox!
10: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
11: Dash!
2: For show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: What's going on?
0: 17 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में, मत भूले आज एक और वोट है रोवर पर चैटल में जो आपको $100 कैश जो है ये दिला सकता है। तो अगर आपने अभी तक चैटल नहीं खेला है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू विन बिग। एंड रिमेंबर हर दिन बस सिंपल फ्रेजेस जो है ये आप जाकर आपको सॉल्व करने होते हैं एंड यू कुड बी द नेक्स्ट वन जिनके हाथ $100 लग सकता है।
1: ना मेरे पास एक और एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए और ये जो अपॉर्चुनिटी है इट इज इन रिगार्ड्स विद इंडियाज बोल्डेस्ट कॉमेडिक या स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले मुनावर फारूकी, इनके बारे में. इनको बोल्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत ही बोल्ड कॉमिक है ये, और बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं इनके स्किट्स. और जब भी ये परफॉर्म करते हैं तो लोग हंसते भी हैं और फिर सोचते भी हैं कि भाई ये क्या बोल दिया. तो एक ऐसा रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड कॉमेडी शो अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपको बता दें, यू आर गेटिंग अ चांस टू विटनेस वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कॉमेडियंस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, मुनावर फारूकी. क्योंकि ये आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड परफॉर्म करने ऑन द 23rd ऑफ मई एट ब्रूस मेसन सेंटर. और अपना कॉमेडी शो धंधो ये लेकर ये सुपर सिटी ऑकलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं. तो अगर आप इनके शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, टिकट्स आप ticketmaster.co.nz, रिमेंबर ticketmaster.co.nz से ले सकते हैं. पर आपके पास मौका है टू विन डबल पास एज वेल. हम आपको डबल पास जीतने का मौका दे रहे हैं, जिसके लिए एक छोटी सी चीज करनी है. आप अगर फेसबुक पर अभी जा सकते हैं, गुड ऑन यू, नॉट नाउ तो वेन एवर यू कैन, बट बिफोर द कॉम्पिटिशन फिनिशेज. हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM विद ब्लू टिक, ये हमारा वेरीफाइड पेज है. आप इसे विजिट करें, और इसे विजिट करने के बाद आपको बस उस पोस्ट, उस पेज पर फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट दिखेगा, और ये पोस्ट है इन रिगार्ड्स विद दिस कॉमेडी शो धंधो, जहां पर मुनावर फारूकी आ रहे परफॉर्म करने के लिए. तो बस उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको अपने किसी भी फ्रेंड को टैग करना है, जिनके साथ आप जाकर ये शो देखना पसंद करेंगे, या फिर यू जस्ट हैव अ फ्रेंड जिनके थ्रू आप ये पास जीतना चाहते हैं. जस्ट टैग दैट फ्रेंड, whoever comes to your mind instantly, जैसे ही वो आप वो रील देखोगे जो वहाँ पर डला हुआ है. So, and after that, you go in a row.
0: Yes, and make sure जब आप विजिट करें तो पोस्ट को लाइक भी कर लें, ये और भी बढ़िया रहेगा. अपने किसी एक फ्रेंड को जल्द से जल्द आप जाकर टैग करें.

0: दो बातों का वक्त है। सबसे पहले कहते हैं कि लोगों को तब भी सम्मान दें जब वो इसके लायक ना हो।
1: अच्छा, ऐसा क्यों?
0: क्योंकि सम्मान देना आपके चरित्र का प्रतिबिंब है, उनके चरित्र का नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर, नॉट देयर्स।
1: ओके, आई फर्स्ट टाइम आई थिंक आई माइट might just a
0: back
1: little
0: to differ.
1: Bit.
0: Yeah, obviously.
1: I personally feel give respect to those who give respect to you, not to everyone. क्योंकि हर कोई deserve ही नहीं करता वो।
0: दूसरी बात, ख्वाहिशें ये ना रखें कि हर कोई तारीफ करे।
1: बिल्कुल।
0: कोशिश ये करें कि कोई बुरा ना कहे।
1: अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल है आजकल के जमाने में, but yeah, we can try your luck. Anyways, चलिए इन बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे परमिशन आज आपसे विदा लेने की, ताकि बाकी का आपका दिन भी बढ़िया बीते और हम आपसे कल एक बार फिर मुलाकात कर सके ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: आइसोलेटेड शावर्स दोपहर के समय पड़ सकती है. फील्स लाइक 14 डिग्रीज. 5:34 पे सनसेट बताया गया है.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithi, kyunki aa rahi hai.
4: My Time with Kashika.
0: Namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Or how was your weekend? I hope so. Apne weekend par aapne इस कठिन समय में जो वीकेंड बोलते हैं ना, कैसे आपने आपको मैनेज किया होगा. वैसे अगर आप समझदार हैं तो आपने अपना एक रास्ता खोज लिया होगा और खोज भी लिया होगा. लेकिन जो लोग थोड़े बहुत भी लेजी होते हैं ना, उन्हें कोई ना कोई बहाना ज़रूर मिल जाता है. तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वैसे आप तो उस कैटेगरी में आते हैं जो मोस्ट लवेबल कैटेगरी है, स्पेशली फॉर ऑल अस अनाउंसर्स. जब हम आते हैं रेडियो पर आपके साथ बात करते हैं, सो यू आर द वन हु कीप्स अस मोटिवेटेड. तो कैसे रहा है आपका दिन और कैसे शुरुआत किया आपने अपने मंडे की? मैं कशिक आपका साथ निभाने के लिए आ चुकी हूँ स्टूडियोज में. 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा कशिश फूड्स के सौजन्य से. कशिश फूड्स जिनकी शॉपिंग आपने ज़रूर ओवर द वीकेंड ज़रूर की होगी, लेकिन एक साथ में बात और की होगी. आपने हमें अपने साथ रखा होगा अगर आप बाहर गए होंगे रोवा ऐप के ज़रिए. अब रोवा ऐप की जब मैं बात कर ही रही हूँ तो बता देती हूँ, आप कैश प्राइजेस जीत सकते हैं विद चर्ल. अब ये चर्ल जो है कीवी वर्ड है जहाँ पर हमारे पास $7,000 है और हम उन $7,000 को बांटना चाहते, खुद तक रखना नहीं चाहते. $100 कैश हम निकालते हैं, बस आपको सॉल्व करना है कोई ना कोई एक कीवी वर्ड सेइंग या कोई फ्रेज. अच्छा भाई, जब बात कर ही रहे हैं अबाउट रोवा ऐप, तो आपको बता देती हूँ कि रोवा ऐप के ज़रिए आप जीत सकते हैं एक रिटर्न टिकट टू फीजी. अगले घंटे पर मैं आपको वो कोड वर्ड दूंगी जिसके ज़रिए आप एंटर कर सकते हैं इन द ड्रॉ टू विन अ रिटर्न टिकट टू फीजी. चलो ये सब बातें तो आपके साथ लाइनअप कर दी हैं, लेकिन आज एक्सपर्ट अड्डा में मेरा साथ निभाने के लिए लीगल एसोसिएट से राज प्रदीप सिंह जी आने वाले हैं. कोई सवाल 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. हाँ, बहुत इवेंटफुल होने वाला है आज का माय टाइम, क्योंकि बहुत सारे प्राइज गिव अवे ये वो बहुत कुछ करने को है.
1: बचाओ क्या,

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: बिल्कुल, एक्सपर्ट्स अड्डा में मेरे पास आ चुके हैं नन अदर देन राज प्रदीप सिंह जी फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, द प्रिंसिपल फॉर लीगल एसोसिएट्स। एंड राज जी, नमस्कार एंड हाउ आर यू?
2: नमस्कार कशिका जी, एंड नमस्कार टू ऑल हम एफएम लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच सर। और मेरे पास एक सवाल आया है आज, एंड मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। दे सेड कैन यू आस्क राज जी दैट व्हाट आर द स्टूडेंट वीजा ऑप्शंस एंड व्हाट आर द गुड स्टडी ऑप्शंस?
2: या इन न्यूजीलैंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ ग्रेट स्टूडेंट वीजा ऑप्शंस, वेदर इट्स अ बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और ग्रीन लिस्ट कोर्सेज। This is what we require here in New Zealand. So if you are onshore applicants, उनके लिए भी कशिका जी बहुत सारी options हैं। Even though if you are international student, international means overseas, offshore students, या parents, या family, या उनके रिश्तेदार in New Zealand, उनके लिए भी बहुत अच्छी options available हैं। जैसे कि एक है अभी Bachelor of Applied Management, ये level 7 का course है, category 1 institute के साथ है, और इसकी जो फीस है 3 साल की, वो सिर्फ ऑनशोर के लिए 43,000 है 3 साल के लिए। तो अगेन आप इन्हें जैसे यहाँ पे हाँ कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो क्रॉस क्रेडिट भी ले सकता है। और इसके अंदर जो 3 साल का जो ये कोर्स करेंगे, इसके बाद जिसकी फीस है वो सिर्फ 43,000 तीनों साल की है, और उनको फिर 3 साल का पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा होगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड में बैचलर डिग्री की है तो 1 साल के बाद आप रेजिडेंस वीजा अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, अगर आप स्किल्ड पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने बताया, कोई भी, चाहे बैचलर डिग्री करनी है, मास्टर है, ग्रीन लिस्ट।
1: जी, वेरी नाइस। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इज दैट आपके साथ अगर कंसल्टेशन कर लेंगे तो दे विल बी एबल टू अप्लाई इट इन द राइट मैनर, ताकि जल्दी जल्दी ये सब हो सके। और जो कोई स्टूडेंट वीजा में आना चाहता है, वो भी प्रोबेबिलिटी आपको शायद पता चल जाएगी ना सर?
2: हाँ बिल्कुल, जैसे ऑनशोर हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन मीट अस इन ऑफिस ऑकलैंड में, हैमिल्टन में। अगर ऑफशोर भी हैं या ऑकलैंड के कहीं बाहर हैं, तो नेचुरल है वीडियो कॉल के थ्रू, अदर टीम्स है, व्हाट्सएप है, वी कैन कनेक्ट। मैं उनको सारे, जैसे ऑनशोर के बड़े अच्छे कोर्सेज है, टीचिंग के हैं, ईसी है, एनरोल्ड नर्स है, नर्सिंग है, हेल्थ केयर है, तो वो वाले कोर्सेज भी हम कर सकते हैं। और इतने सारे जो बैचलर है, अकाउंटिंग है, एमबीए है, फाइनेंस है, सो वी कैन गिव देम लॉट्स ऑफ ऑप्शंस व्हिच विल गिव एज, एक तो जो पोस्ट स्टडी ओपन वर्क वीजा है उनमें, और साथ में के रेजिडेंस पास में उनका बन जाएगा।
1: फैंटास्टिक। तो लीगल एसोसिएट्स का नंबर आपको पता ही है, वैसे बता देती हूँ 09279-9439। legalassociates.co.nz की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनकी एक्सपर्ट टीम से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, चाहे वो हैमिल्टन हो, चाहे वो पापा टोयोटा हो, आपका साथ देने के लिए लीगल एसोसिएट्स हमेशा रहते हैं, राज अनाशिमा और उनकी टीम। अ बिग थैंक यू टू यू राज जी, एंड अगले हफ्ते आपसे फिर बात होती है।
2: थैंक यू कशिका जी, सी यू लेटर, बाय बाय।
1: सी यू, बाय बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
1: थोड़ी देर बाद ऑफिस शाउट आउट लेकर मैं आने वाली हूँ। अगर किसी ऑफिस से आप मुझे सुन रहे हैं, गाड़ी से सुन रहे हैं, किसी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं आप, या फिर आप ऊबर ड्राइवर हैं, या फिर आप कुरियर ड्राइवर हैं, 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
4: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार।
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 Logic G. That's 0800-564-424. A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, and Abhishek Bachchan.
5: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
6: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TBC.
7: Jen didn't think she needed a DVS system.
8: Oh, I've got insulation in that.
7: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
8: Ah, yeah.
7: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
9: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, bina added chemicals, bina preservatives and vinegar-free. Sirf clean, natural taste, bilkul ghar jaisa. Ginger ho, garlic ho, ya perfect combo, har dish banegi full of flavor. Aur haan, buy any Kashish dosa batter, any size, aur pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
10: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz.
11: Beating pump prices is easy with Auckland Transport. Simply use your hop card, credit or debit card, smartphone or smartwatch to tag on and off buses, trains and most ferries. Search AT Journey Planner and save when you mix your go with AT.
0: Office shout out.
1: So, office shout out में भाई आपको मुझे बताना है कि आप इस समय मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। वैसे मेरे पास एक अभी टेक्स्ट आया है और वेब टाइगर से, मितेश जी आप मुझे सुन रहे हैं हैमिल्टन से इस समय वाया रोवा ऐप, क्या बात है। सो बिग शाउट आउट गोइंग आउट टू यू। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं, एक हफ्ता भी नहीं बचा एक्चुअली, आई कैन से आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पाँचवें दिन आपके लिए लैंड हो चुके होंगे। तब तक जावेद अली जी, जो बॉलीवुड के एक फेमस सिंगर हैं, और इनकी टिकट्स जो हैं ये आप बस बहुत ही कम बची हैं, यानी कि आप $59 में जाकर ये टिकट खरीद सकते हैं और आप उनको सामने से एकदम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनके गानों को। फ्राइडे 8th of May के दिन विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आपके लिए स्टार अलायंस लेकर आ रहे हैं रफ़ी और मैं और साथ साथ पैसिफिक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भी। अब ये टाइमलेस क्लासिक्स जो हैं ये मोहम्मद रफ़ी साहब को एक ट्रिब्यूट देंगे, अलॉन्ग विद दिस ये अपने खुद के भी गाने गाएंगे, और इनके गाने तो हमें पता है कि एक से बढ़कर एक सुपरहिट थे। तो पहला सॉन्ग जो मुझे इनका बहुत पसंद आया था वो फ्रॉम द मूवी गजनी था, और उसके बाद जोधा अकबर में जश्न बहारा वाकई कमाल का गाया था। एंड साथ साथ अभी कल, आई थिंक कल की बात है, इन्होंने फिजी में भी एक परफॉर्मेंस करी है, वो भी सोल्ड आउट थी, और ऑकलैंड नहीं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी इन्होंने परफॉर्मेंस की, वो भी सोल्ड आउट थी। आई डोंट थिंक वी शुड मिस सच अ ब्यूटिफुल स्टार, अ बॉलीवुड सिंगर कमिंग टू परफॉर्म। इनको अपने आप में हम स्टार भी कह सकते हैं।

0: एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार आ रहे हैं एंड दोबारा हमारा दिल मोहने के लिए, और ये कह सकती हूँ लाइव ये परफॉर्म करने वाले हैं ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई के दिन, और दुनिया ने इन्हें एक्सपीरियंस किया है। वैसे ये जेके स्टार, गोट लाइव, ड्रीम एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन, शहजादा प्रोडक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं राहत फतेह अली खान साहब वंस अगेन, और इनका अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं ड्राई टिकट्स के जरिए जाइए, टिकट आप जीत सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक डबल पास आपको जीतने के लिए मैं एक गाना बजाने वाली हूँ और आपको उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। करेक्ट एंट्रीज विल गेट इनटू द ड्रॉ टू विन अ डबल पास। मैं ये लाइन प्ले कर रही हूँ एंड आई होप आप इस लाइन को कैच कर सकें और ये टिकट जाकर आप फटाफट जीत सकें, ठीक है। 5599 पे आपको खाली जो है कीवर्ड जो है वो लिखना है राहत फतेह अली खान के लिए RFK, राहत फतेह अली खान RFK लिखना है, और ये लिरिक्स को कंप्लीट करना है। अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना।
0: टाइम स्टार्ट्स नाउ, चलिए।
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
5: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
4: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
2: है। 6 to 10 AM.
6: A legacy that built Swaraj. A story that shaped history, based on the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Raja Shivaji, starring Ritesh Deshmukh, Sanjay Dutt, and Abhishek Bachchan.
7: Kabhi Mughal, kabhi Adil Shahi, inhi saltanaton ki chhati rond kar Hindavi Swaraj ka sapna dekha hai humne.
6: Raja Shivaji, now showing in cinemas. Distribution partner, Real Star Entertainment. Rating TPC.
8: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
2: We gotta go to the boat show. Dream Diary.
0: सुरजीत आपका आंसर भी सही है, अहफाज आपका आंसर भी सही है, एंड नीलम RFK, इंद्रजीत ओके परफेक्ट। आई थिंक आप सबको ये गाना तो पसंद ही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड साथ साथ टका नैनी से ऐश आपने भी अभी रिप्लाई किया है। ऑलराइट, अब जब ड्रीम डायरी की मैं बात करती हूँ आपको बता देती हूँ, कई बार हमारे सपने जो होते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अच्छे सपने, बुरे सपने, नॉर्मल सपने, नाइटमेयर्स। अब ये नाइटमेयर्स जो एक सब कैटेगरी होती है जहाँ आप डर जाते हैं या आपका कुछ एक इमोशनल कंटेंट जो होता है उसकी वजह से आप रात में डर आपको आ जाता है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके माइंड में उसमें आ जाता है जिसकी वजह से फिर आप सो नहीं पाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं, एंड एक रीज़न हो सकता है नाइटमेयर के लिए, अनकॉन्शियसली आप कभी किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं और इट्स टाइम दैट यू नोटिस इट, कन्फ्रंट इट एंड उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स नाइटमेयर्स जो होते हैं जब बुरे सपने आते हैं, इट्स अ वार्निंग आपकी हेल्थ के लिए या कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ये एक ट्रबल जो होती है सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चल रही होती है, तो ठीक है आप अपनी इस चीज़ को, ड्रीम को एनालाइज कीजिए एंड देन Go ahead and plan something. I think you will be coming out and in a more better way. किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तलविंदर आपका आंसर करेक्ट है, प्रणीता पटेल आपका आंसर भी करेक्ट है, मैंने आप लोगों का नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया है।

अरे जावेद अली जी की बात करी थी, देखिए गाना अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ गया है एंड आई थिंक वी विल बी लविंग टू वॉच हिम परफॉर्म दिस फ्राइडे।

बैक। मैं पहुंचने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, होमवेयर एंड फर्नीचर की शॉप ऑकलैंड और इनके आसपास में कुछ ट्रैफिक खो रहे हैं टू नन अदर देन द स्वीडिश रिटेल जायंट आईकिया। और एक डिटेल के जरिए पता चलता है कि इट्स ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। लोग ट्रैवल करें ऑल द वे टू ऑकलैंड टू बाय थिंग्स, और इनकी जो कैटेगरीज हैं जहाँ पे ये स्पेंड करते हैं 72% इट्स लाइक डोमेस्टिक विजिटर्स हैं और द रेस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आउटसाइड ऑकलैंड। और ये अभी कुछ ही दिन पहले जब ये खुली थी, और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू होता चला जा रहा है और ये की रिटेल हब बन चुका है। वेल, एक चीज़ जो है, पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड व्हाट्स गोइंग ऑन इन आईकिया एंड पीपल आर सेइंग कि ठीक है, अब ये इनक्रेडिबली एक रीजनेबली प्राइस्ड जगह बन चुकी है और लोग कहते हैं यस दे कैन सेलेक्ट इट वेरी वेरी वेल। अब ये लोगों को इनकरेज करती है कि अपनी चीज़ें जो हाँ एक साथ ले लें और इंजॉय करें पूरी की पूरी आफ्टरनून। कुछ लोग जो हैं इस बात को शायद माइंडसेट है शायद लोगों का कि उनको लगता है इतना ज़्यादा ये यहाँ स्पेंड करने को मिलेगा, बट लेट मी टेल यू, इनके काम, इनका जो एक तरीका है, एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है इन न्यूजीलैंड। तो अगर आप नहीं गए हो तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं। दे हैव सम ग्रेट थिंग्स विच कीप हैपनिंग, बट इन्होंने एक ऑकलैंड की शॉपिंग का पैटर्न बदल डाला है।

0: मेरा फोन किधर है?
1: अभी बताया तो स्लाइड चप्पल कंफर्म है।
2: इस मदर्स डे क्या आप जानते हैं अपनी मम्मी का रियल रिएक्शन? From broken flower vases to लौकी की सब्जी experiments, guess कीजिए मम्मी का मूड और जीतिए ढेर सारा कैश। हम पेश करेंगे quirky scenarios on air और आपको बताना होगा मम्मी चिल करेगी या किल करेगी। Guess and enter the lucky draw

0: निवासी और एस्को मोटर्स के सर्विस मैनेजर अप्पल राजू की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार इसी बुधवार के दिन सुबह 10 बजे यानी 6 मई को एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-552-677 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 19, overnight temperature of 11. आज का forecast बताया जा रहा है. कुछ fine spells develop हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े बहुत बादल भी आने वाले हैं कल. Of course, बारिश जरूर पड़ने वाली है. It feels like 15 degrees right now. 5:34 पर sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:04 हो चुके हैं. 4 मई का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी. वैसे इस घंटे पे आपके साथ रेस्क्यू मी रिसाइकल मी, मेरे पास एक सजेशन आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अलॉन्ग विद दिस 6 वर्ड की स्टोरी जो है आपके साथ. आपके पास कोई है तो 5599 पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. इनाम जीतने का और भी एक नहीं दो मौके और मैं देने वाली हूँ, ठीक है. अच्छा, ये तो आपके साथ शेयर कर ही लिया है मैंने, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इस आने वाले संडे के दिन मदर्स डे है, और इस मदर्स डे के मौके पर मैं आपकी एंट्री लेना चाहती हूँ. बस एक छोटी सी सिचुएशन दूंगी आपको, एक मूड आपका पूछना चाहूँगी कि मम के साथ क्या हुआ, एंड दैट्स अबाउट इट. और आपका नाम मैं ड्रॉ में एंटर कर लूँगी. ओहो, ड्रॉ के नाम से मुझे याद आया, मुझे इस घंटे पे आपको हम फ्लाई वे फ्रेंजी के लिए कोड वर्ड भी देना है. अच्छा चलो कोड वर्ड दे ही देते हैं आपको. और आप अगर हमें सुन रहे हैं इस समय, तो आपके लिए आज का कोड वर्ड है राखी. राखी, इस जगह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा. हम पर आपको रोवा पे जाना है, और रोवा पे जाते ही आपको कोड डालना है राखी राखी, RAKI. और दैट्स इट. अब ये आपके लिए कोड लगभग एक घंटे तक खुला रहेगा, तो आप अपनी एंट्री डाल दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनकी एंट्री डाल दीजिए. उसके बाद लंच बॉक्स में आपके लिए दोबारा से एक नया कोड रेडी हो जाएगा. अभी के लिए चलिए मैं आपको एक गाने की तरफ लेके चलती हूँ, सलीम मर्चेंट के. लेकिन इसके ठीक बाद शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में एक गाना है जिसमें मम के साथ हमने क्या क्या, हमने माँ ने ये बोला था बात करते हैं. लेकिन कभी कभी आप उन बातों को भूल जाते हैं, तब आपकी माँ का मूड क्या होता है. चलो इसी बारे में आपसे एंटर लेंगे, कॉल्स एंटर करेंगे और एंट्री लेंगे आपकी फॉर द ड्रॉ.
1: बचाओ क्या,

0: बिल्कुल माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ की चीज, माँ ने ये कहा था, माँ ने वो कहा था। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सडनली स्लिप हो जाता है माइंड से, और उसके बाद जब माँ ने कुछ बताया और आप भूल गए हैं या भूल गई हैं, फिर क्या होता है, अरे भैया उनका मूड कहाँ चला जाता है। चलो कुछ ऐसा इंसिडेंट है तो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए 0800 00 हम पर, 0800 00 4866 पर, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं फॉर द प्राइज मनी। फर्स्ट प्राइज $300, सेकेंड $200, थर्ड इज $100। तो बस जल्दी कीजिए क्योंकि इस आने वाले फ्राइडे के दिन सुबह ब्रेकफास्ट शो में विनर अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है आप वो लकी पर्सन रहें। अब ये सिनेरियो क्या था आपका जब आपको मम्मी ने कुछ बताया और आप भूल गए? ऐसा एक बार नहीं होता, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। ओके, हुआ करता था, एस वॉट आई कैन से। यस, अगर आप के पास कोई ऐसी बात है, आप 0800 00 हाँ पर मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका नाम ड्रॉ में ज़रूर ऐड करूँगी। इसके साथ साथ आपका नाम ड्रॉ में ऐड और एक जगह से हो सकता है, और वो है हमारे आप फेसबुक के पेज पर। आप आ जाइए, एक पर्सनलाइज वाउचर आप अपनी मम के लिए तैयार कीजिए। शी डिज़र्व्स द बेस्ट, इज़न्ट इट? कभी उन्हें फूल पसंद है, प्लांट्स पसंद है, या एक हॉलीडे ट्रिप पसंद है, या फिर सम क्वालिटी टाइम विद हर अलोन एंड यू टुगेदर, कहीं ऐसा एक लंच डिनर पे जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको बस यही बताना है। अपने एक वाउचर को आप क्रिएट कीजिए, आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा टू विन $200 कैश। याद रहे, अपने फैमिली मेम्बर्स को आपको टैग ज़रूर करना है। हमारे पेज पर पहुँच जाएँ, अच्छा से एक डिज़ाइन कर लीजिए खुद, या ड्रॉ कर लीजिए अगर आप चाहें तो, ठीक है। और ये 8th of May के दिन आपको ड्राइव शो में इसका विनर का भी पता चल जाएगा। लेट्स सी हाउ यू कैन मेक योर मॉम फील बेटर। ये बात जब मैं कर ही रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेकफास्ट का कैचअप अगर आपको चाहिए, या फिर ड्राइव शो का कैचअप चाहिए, तो 5599 पे आप ड्राइव या ब्रेकफास्ट शो भी लिखकर भेज सकते हैं। चलो, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो ऐसा है जो कॉल करे और बताए। बाय द वे, मैंने अभी अभी देखा 0186, मैंने फ्लाई वे फ्रेंजी का कोड तो दिया है जो आप पहुँच सकते हैं फीजी के। राखी वॉज द कोड वर्ड, राइट, इज़ द कोड वर्ड, अभी भी ये कोड चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट नहीं करना था। इनफैक्ट आपको रोवा ऐप के ज़रिए जाकर वहाँ पर ये कोड एंटर करना था, राखी, और उसके बाद आपका नाम ड्रॉ में ऐड हो जाता, ठीक है। अब आप रोवा ऐप पर जाएंगे कि नहीं? कॉल नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, ये शायद चांस आपने मिस कर दिया। देखा जाए तो लगभग आपके पास अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 चांसेस और हैं, अगर आज का चांस आपने मिस कर दिया।
1: ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा, और ये कॉफी ल्यूक वार्म, अ टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा। प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तो बीच के लिए बनाए,
2: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way, or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे, बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हों या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हों, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: एक सपना है, सपना कुछ अपना करने का, सपना एक अपने बिजनेस का।
7: हम है क्रू केयर, सिर्फ $15,000 ऑनवर्ड्स की इन्वेस्टमेंट में हम बनाएंगे आपके सपने को एक हकीकत।
8: Crew Care offers commercial cleaning franchise, which caters to after and before hours cleaning services for offices and schools. Crew Care also has tie-ups with many cleaning sites like offices, schools, gyms, medical centres and hospitality sites. Finance options available for approved purchases. Call Crew Care on 0800 800 209.
9: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz.
10: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
0: देखो एक गुड गर्ल हमारे साथ देने के लिए टेलीफोन लाइन पर आ गई है। इन्होंने क्या किया है, मम्मी का मूड क्या किया, बताओ बताओ। गुड मॉर्निंग, कैसी है?
12: ठीक हूँ, आप कैसे हो कशिका?
0: मैं ठीक हूँ। आपका नाम जैकी, राइट?
12: जैकी, या राइट।
0: ओके, बताइए।
12: Darling, I wanted to say, because हम three sisters थे हैं, उसमें से मेरा turn आता था हमेशा बर्तन धोने के लिए, but मैं जान मुझ के भूल जाती थी कि मेरे को धोना नहीं। So every time she used to say, Jackie, today your turn to wash the dishes. So मैं कहती हूँ okay, but मैं हमेशा भूल जाती हूँ, because I don't want to wash. And then after that she used to get very angry. But they, okay, no food for you today.
0: Oh,
12: so
0: my God.
12: Chalta, but she's not with us anymore now. She passed away. But we still love her.
0: Oh, yeah. Sweet. I know. These memories are our, you know, जो हम अब कैरी करते हैं. And we try and pass this legacy on to our children as well.
12: Yeah, that's true. That's
0: है
12: true.
0: Haan.
12: Yeah.
0: But,
12: yeah.
0: Thank you so much.
12: I'm a little emotional though.
0: I know.
12: Yeah, so I'm a little emotional, but it's okay. So I got a chance to speak about it.
0: Oh,
12: thank you, Kashika.
0: Virtual hug to you.
12: Thank you, darling. Thank you so much.
0: God bless your mom. Thank you. Thanks
12: thank
0: for your
12: you.
0: Call. Bye.
12: Bye-bye. See you.
0: See you.
11: Six-word story.
0: All right, ये सिक्स वर्ड की जो स्टोरी है आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आपका टेक्स्ट आ गया था, कहाँ गया आपका टेक्स्ट? ओके, आपने टेक्स्ट बताया और आपने कहा अ लवर ऑफ ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स, अ लवर ऑफ ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स। थैंक यू सो मच मधु, आपका टेक्स्ट आया था। एंड इट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस एंड मेक्स सेंस, डजंट इट? अ लवर ऑफ ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स, अच्छा था। चलो कल की स्टोरी के लिए आप तैयार रहना, अगर आपसे हो सका तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा कि आप ये करें, लेकिन अभी तैयारी 8 मई के लिए। देवेनाथ नितिन निलेश जो हैं ये पहुंच रहे हैं भक्ति कीर्तन संध्या लेकर, मैनका चैरिटेबल क्लब, भक्ति सत्संग बॉयज आपके लिए लेकर आ रहे हैं अमेजिंग सी शाम वैदिक सेंटर में 7 बजे से रात 12 बजे तक। सो आप बिल्कुल यहां टिकट जाके खरीद सकते हैं। वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए भोजन मेला 17 मई को लेकर आने, सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक, एंड 378 आरारीमो रोड रामारामा में ये होने वाला है, जहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्री है, फ्री खाना पीना है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन ज्वेलरी के स्टॉल्स और शॉपिंग के स्टॉल्स, क्लोथिंग के स्टॉल्स है ना, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल, नेम इट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लवली मेला, अ भोजन मेला। डेफिनेटली आप आइए, क्योंकि ये एक सपोर्ट होगा इन द प्रोजेक्ट ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल। इसके साथ साथ 16 मई के दिन होने वाला वाला है मलाई ओला कम्युनिटी सेंटर में 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे. तो यहाँ 4 बजे से दरवाजे खुल जाएंगे और 4:30 से नेटवर्किंग, चाय, स्नैक्स वगैरह का आयोजन किया गया है. एक रंगारंग कार्यक्रम है, फ्री एंट्री है, आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं. आप इनके फेसबुक के पेज पे फिजी किरमिट फाउंडेशन के पेज पर आप चले जाइए और वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी.
11: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Backyard Beats.
1: So as promised, हमने बताया था कि मई का महीना हम शुरू कर रहे हैं जहां हम अपने लोकल टैलेंट को बिल्कुल एक मौका, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. ये खाली आप गाना नहीं सुनिए, आपको बता देते हैं ये गाना आपको अच्छा लगा और डू यू वॉन्ट इट रिपीट या चाहते हैं आप इसको स्किप करना. आपके वोट्स डिसाइड करेंगे कि इनको हम वोट करें या ना करें. 5599 पे म्यूजिक मंथ यानी MM आपको लिखना है. आपका हर इंटरेक्शन आपके फेवरेट आर्टिस्ट को हेल्प करेगा टॉप 3 में पहुंचने के लिए. और साथ साथ ये आपको क्या करना है, हमारे सोशल्स पे पहुंचना है जहां पे अपने ये फेवरेट आर्टिस्ट का वीडियो आपको लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है. ये विनर की टोटल इंगेजमेंट पर डिसाइड किया जाएगा आपकी रेडियो के वोट्स और सोशल लव पर कि ये जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं. आज के जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है केतन, जो हमारे साथ लंच बॉक्स भी करते हैं. जल्दी कीजिए, आप फटाफट हमें टेक्स्ट भेजिए. मैं ये गाना जब तक प्ले करती हूँ सुनिए इनकी खूबसूरत सी आवाज़. और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप एक सिंगर हैं, इट्स नेवर टू लेट to take part in this amazing music month. आप अपने गाने को, best track को अपने bio के साथ buzz@hamfm.com पे हमें email भी कर सकते हैं. तो चलिए सुनते हैं केतन कुमावत को.

0: My time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: जब न्यूजीलैंड की खबर आती है ना तो मैं आपको बता देती हूँ कि फांगरे का एक 32 मिलियन का ब्रिज इट इज़ टू बी क्लोज डाउन फॉर रिपेयर्स. डिस्कवर किया गया कि उसके अंदर कुछ क्रैक्स आ गए हैं और फिश हुक की शेप में वो स्ट्रक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है. आई मीन यू कांट मिस इट. आई थिंक लेट मी प्रोनाउंस इट, ते माताओ ओ आपोहे शायद इसी को कहते हैं. और ये न्यूजीलैंड का ओनली रोलिंग बैस्क्यूल ब्रिज है जो कि आप कभी मिस नहीं कर सकते जब अगर आप फांगरे जाते हैं. 2013 जुलाई में ये ब्रिज खुला था लेकिन उसके बाद इसमें करीब इसको लिफ्ट किया जाता था 25,000 टाइम्स. इसको से भी ऊपर इसको लिफ्ट किया गया ऑन द रिवर ऑफ हाइटिया और जब ये फांगरे हार्बर के साथ मिलता था लगभग 50,000 बोट्स जो हैं यहाँ से क्रॉस कर चुकी हैं और भी ज़्यादा हो सकता है. लेकिन ये क्रैक्स जो हैं इन्हें पाया गया और कहा जा रहा था कि इसके स्टील के जो हुक्स हैं उस पे भी क्रैक्स आ रहे हैं. अब फांगरे के जो रेट प्रेयर्स हैं उनको करीब कंस्ट्रक्शन के लिए 17 मिलियन इस ब्रिज के लिए देना पड़ा. लेकिन ये ब्रिज के बहुत ही खूबसूरत जो कर्व शेप है ना 20 मीटर्स टॉल है और माउरी फिश हुक से रिप्रेजेंट भी करता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है एक हर मूवमेंट यहाँ पे करीब 4 मिलियन लोग इसे हर साल क्रॉस करते हैं. लगभग 11,000 लोग रोज़ निकलते हैं. सो ये ब्रिज जो है अपने रिपेयर्स के लिए ये बंद किया जाएगा फ्रॉम 6 AM 10th ऑफ मे अंटिल मंडे 11th ऑफ मे.
0: Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
4: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
5: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
6: IKEA.
7: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron. Inspiration starts here.
8: Sona Sansar Papa Toto ke gehno ke saath aap bhi chamak jayenge.
9: Churi, kangan, payal, bali, jhumke aur chokar. Ye sona wahi Sona Sansar hai jahan Delhi se lekar Dubai tak ke sabhi gold jewelry designs milte hain, samjhe?
8: Sona Sansar Papa Toto, jahan tha wahan abhi bhi hai. Shop inside with Aza Design Studio, corner of Great South Road and East Tamaki Lights, Papa Toto.
10: Sona Sansar, 138 Great South Road, Papa Toto. Sona Sansar, you are never too old for gold.
0: Rescue me, recycle me.
3: वैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं या रेस्क्यू कर सकते हैं. जैसे कि अंडे के जो कार्टन्स होते हैं, एग्स के कार्टन्स होते हैं, दरअसल उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कभी कभी कुछ वैक्स डाल सकते हैं और उसके बाद उसमें आप फायर को क्रैक करने के लिए, आप फायर स्टार्ट करने के लिए उसमें आप थोड़े से वैक्स डालने के बाद उसमें थोड़ी सी कोई भी सुतली बना के उसकी आप पत्ती बना सकते हैं और दिए भी बना सकते हैं. इट लुक नाइस डेफिनेटली. साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने उस जो अंडे की ट्रेज हैं, मैंने देखा है कि उसमें थोड़े छोटे मिट्टी डालने के बाद उसमें आप लोग छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करते हैं जब तक अपनी रूट्स नहीं पकड़ लेता. सो समथिंग लाइक दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की बोल्डेस्ट कॉमेडी मुनव्वर फारूकी जो हैं वो लेकर आ रहे हैं. अब ये धंधो जो है ब्रूस मेसन में 23rd ऑफ मे के दिन होने वाला है जहाँ अनफिल्टर्ड कॉमेडी का आप बिल्कुल जबरदस्त तरीका पा सकते हैं यू नो एक्सपीरियंस करने का. ticketmaster.co.nz के जरिए ये टिकट आप परचेज कर सकते हैं. हाँ, हमारे फेसबुक के पेज पे आप चले जाए, आप एक फ्रेंड को टैग कीजिए, और अगर आपको लगता है वो रील जो हमने पोस्ट की है आप अगर उसको लाइक करते हैं, आप उसमें टैग करते हैं, तो आपका नाम ड्रॉ में चला जाता है फॉर अ डबल पास. तो ये ड्रॉ 11th ऑफ मे के दिन होने वाला है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी दमदार, शानदार और खूबसूरत बना रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। और अभी जाने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, आपको मैंने बताया है कि अगर आपको फिजी जाना है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका है आपके लिए। अब ये फिजी जाने का तरीका मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप बिल्कुल भाग ले सकते हैं हमारे कॉन्टेस्ट में, अब फ्लाई अवे फ्रेंजी में। मैंने आपको आज का कोड तो दे ही दिया है, थोड़ी देर बाद ये कोड जो है मैं ख़त्म भी करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो बता देती हूँ, आज का कोड है राखी राखी, एक जगह का नाम है राखी राखी, और जल्दी जाइएगा कोड से आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ, दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ, टाटा।